उसका भी उदय तुमने ही किया, उसको भी तुमने ही उत्पन्न किया। और जो बल देने वाली गौ है, अमृत देने वाली जो गौ है, उसे भी तुमने ही उत्पन्न किया, उसमें भी तुम हो। सीधा सा तात्पर्य, सोम रूप से उसमें भी तुम हो, जल में भी सोम रूप से तुम हो, और औषधियों में भी सोम रूप से तुम हो। भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि कहते ही हो सर्वोपनिषदो गावो, भगवान ने क्या कहा 15वें अध्याय में, पुष्णामिच्चौषधि है सर्वा सोमो भूत्वा रसा, रस रूप होकर के सोम रूप से मैं ही समस्त औषधियों को पुष्ट करता। और इतना ही नहीं कहा, कहा उन्हें पुष्ट भी करता, रस भी देता हूं, और उस रस को जो ग्रहण करने वाला है उसमें उस रस का परिपाक कौन करता, तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, है ना, संकेत कर दिया, प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम, सारे जो चार प्रकार के अन्नों की जो चर्चा है उन सबको पचाने वाला भी मैं हूं। तो अभी क्या है, कहीं उसे वैश्वानर भी कह दिया, कहीं सोम कह दिया, कहीं विष्णु कह दिया, इसका मतलब उसकी सर्वव्यापकता को बतला रहे। तो यहां पर संकेत कर रहे हैं कि गौ में भी जो है वो तुम्हें सोम रूप से उसके दुग्ध में विद्यमान हो, जल में भी तुम विद्यमान हो, वनस्पतियों में भी तुम विद्यमान हो, अर्थात तुम्हारी सत्ता है, ये संकेत किया। और आगे और संकेत किया, तुम आतंथ उरु अंतरिक्षम, तुम आतंथोर अंतरिक्षम, ऐसा शब्द है, वहां संधि तोड़ देंगे तो वहां हो जाएगा तुम आतंथ उरु अंतरिक्षम। ये जो व्यापक विस्तीर्ण अंतरिक्ष है उसका भी विस्तार करने वाले आप, उस अंतरिक्ष का भी विस्तार करने वाले आप कैसे हो, तो सोम रूप से, ध्यान रखना, सोम रूप से इस अंतरिक्ष का भी विस्तार करने वाले आप। और आगे संकेत कर दिया, तुम ज्योतिषा वितमो ववर्थ, तो तुम ज्योतिषा सोम रूपी ज्योति के द्वारा तुम क्या करते हो, विशेषेण तमाह ववर्थ, जो अंधकार है अज्ञान है उसकी निवृत्ति करने वाले भी आप, ये संकेत। तो ऐसा विष्णु, ऐसा वह सोम, ऐसी वह सर्वव्यापक शक्ति, अब उससे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि भाई तुम ही जो है मुझे सुख प्रदान कर सकते, तुम्हारे अंदर ही वह सामर्थ्य है, इसलिए तुम क्या है, तो कहने लगे शनो विष्णु क्रम अस्माकम न अस्माकम, हमारे लिए है शमन करो, दुख का शमन करो और कल्याण का है प्रदान करो, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप महान शक्तिशाली हैं, आप व्यापक हैं, आपकी सर्वत्र सत्ता विद्यमान, ऐसे सोम रूप से आप सर्वत्र विद्यमान। अब थोड़ा सा विचार कर, ये सोम रूप कहने का ऋग्वेद के अंतर्गत तात्पर्य क्या, सोम रूप से सर्वव्यापकता बतला रहे हैं। देखो आप गीता में भी पढ़ते हो, श्रुति भी कहते, इदा दीप्तिगतम तेजो, क्या कहा, इदा दीप्तिगतम तेजो, तो वो जो आदित्य के अंदर रहने वाला जो तेज है वो तेज कौन हो, तो मामकम विद्धि, वो मेरे को जाने, संकेत किया। और वही सुती में कहा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो एम अग्नि, ये सब क्या, और तमेव भांतम, उसके प्रकाशित होने पर ये प्रकाशित होते। और आज के वैज्ञानिकों ने भी ये बात सिद्ध कर दी, इसलिए चर्चा की थी कि ऋषि और वैज्ञानिक शोध करता, वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध कर दिया, कहा जैसे पृथ्वी ग्रह है वैसे ही चंद्रमा भी क्या है, ग्रह है। लेकिन यहां से आप लोग देखते हो प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या देखते हो कि वो अग्नि का गोला रूप है, प्रकाश कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा सिद्ध किया, कहा उस चंद्रमा में प्रकाश नहीं, जब चंद्रमा में प्रकाश नहीं है तो प्रकाश प्रतीत हो रहा, ध्यान देना, बहुत समझने लायक बातें हैं ये।
तो चंद्रमा में जो प्रकाश प्रतीत हो रहा है वो प्रकाश फिर कहां से आया, उसकी प्रतीति फिर कैसे, प्रत्यक्ष प्रमाण का वाद हो रहा इन शब्दों के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा, वैज्ञानिकों के शोध के द्वारा उन्होंने सिद्ध कर दिया वहां तो जैसे पृथ्वी ग्रह पर जमीन है वैसे वहां भी जमीन है, और लोगों ने फ्लैटों की भी तैयारी कर दी वहां, है ना। तो ऐसे ही फिर कहा सूर्य भी ग्रह है, और सूर्य में भी जो प्रकाश है कहा वो प्रकाश नहीं लेकिन सूर्य तो हमको तपाता, और सारे के सारे वनस्पति आदि भी उससे जो है प्रपाक आदि को प्राप्त करते, उसके पाकज अपाकज तेज विलक्षण संयोग के द्वारा जो है वनस्पतियां औषधियां पकती हुई। तो फिर कैसे माना जाए, श्रुति का वाक्य भी इस बात को कहता और आज कुछ अंश तक वैज्ञानिक भी पहुंचने, तो क्या माना जाए, कैसे समझा जाए। तो संकेत किया जो भगवान ने कहा कि वह जो है तेज जो है वो मेरे को जान, और श्रुति ने भी कह दिया कि तमेव वांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित तो हो रहे, कैसे स्वीकार किया जाए। इसलिए ही सोम शब्द का, सोम वह गुण विशेष है जो जल के अंदर भी विद्यमान है, पृथ्वी के अंदर भी विद्यमान है, कहीं पर विशिष्ट रूप से है और कहीं पर सामान्य रूप से है। तो वह सर्वत्र यद्यपि सोम की सत्ता है लेकिन उस पदार्थ विशेष को लेकर के वैशिष्ट्य और न्यूनता आदि उसमें देखी जाती, जैसे तेल में सोम विशिष्ट है, इसलिए तेल में जब आप बत्ती डाल देते हो तो तेल क्या होता, प्रकाश देने लगता, क्यों देता है, उसके अंदर सोम सत्ता विद्यमान, उस सोम को लेकर के ही वह। और इसी प्रकार से हम जिन औषधियों आदि को ग्रहण करते हैं उसमें भी सोम विद्यमान है, उनके खाने से जो हमारे अंदर ओज आता है वो भी उसी की सत्ता से आता। लेकिन कहा ये तो ठीक है चलो मान लेते, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की जो बात है वो समझ में नहीं आती, तब इसके लिए संकेत किया पृथ्वी के अंदर भी सोम है, अंतरिक्ष का भी वितान उसने किया तो उसमें भी वही सोम है क्योंकि उसकी व्यापकता, और सूर्य में भी वही सोम है, चंद्रमा में भी वही सोम है, और अंतरिक्ष में भी वही सोम, और देवलोक में भी वही सोम है, और पृथ्वी लोक में भी वही सोम। अब वैज्ञानिक क्या मानते हैं, वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं पृथ्वी रूपी ग्रह से रेजों का प्रस्फुरण होता है, ये स्वीकार करते हैं, जिसे साइंस से आप कहते, साइंस के माध्यम से भी लोग शोध करते कि उससे रेजों का प्रस्फुरण होता, अत्यंत सूक्ष्म कणों का प्रस्फुरण होता, और अंतरिक्ष में भी वो सोम विद्यमान तो उसमें भी वो सोम विद्यमान, और सूर्य जो है उसमें भी वो सोम विद्यमान, तो वहां पर जिन रेजों का प्रस्फुरण होता है, और आप ये भी समझ लो ये प्रस्फुरण वगैरह स्पंदनात्मिका शक्ति के संभव नहीं, कोई भी क्रिया जो होती है वो बगैर वायु के बगैर स्पंदन के नहीं, इसलिए आगे प्रत्यक्ष ब्रह्म उसी का, लेकिन वायु भी स्वतंत्र नहीं, इसलिए श्रुति क्या कहती, तद भयात बातो पवते, उसके भय से ही क्या है वायु प्रवाहित होती। अब यहां संकेत किया तो इसका मतलब है वो सोम है और सोम ही वायु को भी प्रेरित करता है, और वायु में स्पंदनात्मिका शक्ति दे करके वो क्या करता है, और रेजों का प्रस्फुरण करता। अब जब रेजों का प्रस्फुरण होता उधर सूर्य से प्रस्फुरण हुआ, इधर पृथ्वी से प्रस्फुरण हुआ, और पृथ्वी की रेजें ऊपर की तरफ गईं, सूर्य की रेजें नीचे की तरफ आईं, और दोनों का अंतरिक्ष में मिलान हो गया, और जब रेजें परस्पर टकराई तो क्या हुआ, ज्योति प्रकट हो गई, प्रकाश प्रकट हो गया, वही प्रकाश जो है सूर्य में प्रतीत होता है, वही प्रकाश जो है चंद्रमा में प्रतीत होता है, और वही प्रकाश नक्षत्र आदियों में भी प्रकाशित होता है, दीपक आदि में तो आप जानते हैं अग्नि आदि उसी सोम की सत्ता से होने वाला, तो इस प्रकार से ये होता। और एक मोटी बात समझ लो, पृथ्वी के अंतर्गत सोम विद्यमान है, और आप ये भी सुन चुके हो, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया, रेजों से कहा कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण आदि की बात भी सुन चुके हो, सूर्य के अंतर्गत भी अपनी स्थिति है,
तो सूर्य अपनी

0: भूत माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, और वो श्रेष्ठता की तरफ ही जाता है। तो अब किसान क्या करते, पृथ्वी में भी शोभ, पृथ्वी को चीर देते, पलट देते। तो ऊपर जो उसका सोम से न्यून भाग होता है वो पलट गया, और उसके नीचे जो सोम विद्यमान है वो प्रकट हो गया। वीज के अंतर्गत भी सोम है, फिर उसमें बीज का वपन होता है, तो उस सोम के संयोग से ही बीज अंकुरित होता है, बगैर सोम शक्ति के नहीं हो सकता। और जब अंकुरित होता है तो अंकुरित होकर के बीज क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ऊपर की तरफ क्यों जा रहा, नियम है, वह सोम जो है उस सोम की तरफ ऊर्ध्व गति की तरफ खिंचता है, और जब खिंचता है तो सोम तो ऊपर जाता है लेकिन पार्थिव अंश वहीं ठहरता जाता है, तो हमें लगता है कि पौधा बढ़ रहा है, पार्थिव अंश उसमें रुकता जाता है तो क्या लगता है, पौधा बढ़ रहा है। तो ये सब क्रिया किससे हो रही, उसी सोम शक्ति से। इसलिए ज्यों ज्यों सोम खिंचता जाता है तो वहीं पर देखते हो जहां सोम अधिक खिंच जाता है तो वहां पर सोम के खिंच जाने पर पृथ्वी में कठोरता आ जाती, और अधिक खिंचता है तो उसी से प्रस्तर आदि की रूपता आ जाती, ये सब बन जाता। सोम है वहां न्यून रूप होता जाता है और वो ऊर्ध्व की तरफ जो है जाने लगता, तो ये सारी स्थिति होती है। तो इस प्रकार से सारी फसल आदि भी उत्पन्न होती है, ये संकेत किया। और जो है सूर्य को लेकर के भी बतलाया कि उसमें प्रकाश कहां से आया, तो उसकी सोम की सत्ता से ही उसमें जो है प्रकाश आदि होता। इस प्रकार से आप देखें, और आपने देखा होगा कि कभी कभी लोहा जो है वो भी सोम की न्यूनता है लेकिन फिर भी वहां सोम, कभी कभी लोहा गलने लगता है, विशीर्ण होने लगता है, और जब लोहा गलने लगता है तो क्या होता, जो लोहा गल जाता है कचड़ा रूप बन जाता है, तो ऐसे उस गले हुए लोहे से कीड़े पैदा हो जाते। कौन पैदा हो जाते, कीड़े पैदा हो जाते। आपके शरीर में पसीना आता है, और पसीना आता है, और पसीना जब जम जाता है तो उसको कुछ दिनों तक स्नान नहीं करो, वस्त्र नहीं धो, तो क्या हो जाते, जू पैदा हो जाते। तो ये सारी सृष्टि का क्रम, तो ये सब किससे हो रहा, तो कहने लगे वो सोम सत्ता ही सर्वत्र व्यापक।
1: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Shaivam.org in Anbandha Neergale, Ningal Ketkavirpadu Shiva Keetanegal. Idil Ningal Ketkavirpadu Deekshithar Kruthi Paadal மரகதலிங்கம். பாடியிருப்பவர் லக்ஷ்மி பொதுவாள் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

नमः ॐ उच्चैर्घोषाय नमः ॐ मुच्छाय नमः ॐ उज्ज्वलाय नमः ॐ उज्जयिन्यां महाकालाय नमः ॐ उत्पत्तिस्थितिलगालगाय नमः ॐ उत्पत्तिसंसारविनाशहेतवे नमः ॐ उत्पलैर्मिश्रिताय नमः

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஆர் சார் கீல் ஹே வா கீதா. முஜே ஸ்லோக் பூரி யாத் நீ ஹோ ரஹி ஹே. ந ச மாம் யோ அப்யசூயதி ந ச வாச்யம் ந ச சுஸ்ருஸவே வாச்யம் ந ச மாம் யோ அப்யசூயதி. तो वो चार कीलक के बाद गीता पढ़ोगे तभी वह रहस्य प्रकट होगा. तो श्रुति में कभी भी आलस्यता नहीं. तीसरी बात, ईश्वर अनुग्रहणा भी, ईश्वर का अनुग्रह होनी चाहिए. और हम तो जो भी शुभ कर्म करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, नित्य निमित्त आदि कर्म करते हैं, उसमें ईश्वर प्रसन्नता की बात ही नहीं रहती है. ईश्वर प्रसन्नता की बात नहीं आती है. वहां पर भी वही विषय की ही कामना आती है, विषय मन में विषय की ही भावना, कोई संसार और सांसारिक पदार्थों की ही चाहना होती है. भगवान का दर्शन किया, हे ईश्वर हे परमात्मा मने सुखी राख जो, फलाने ने सुखी राख जो, एम कर दो तेम कर जो, ले जी ये संसार की है. अब तुम सुखी कैसे रहना चाहते हो? कोई ये नहीं कहता कि तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं जो हूं जैसा हूं प्रसन्न हो जाओ, ये नहीं कहता है. तो ये जो ईश्वर श्रुति और आचार्य की कृपा जब होती है, तब उस सोए हुए व्यक्ति को ये तीन मिलकर जगा देते हैं. और चौथी बात तो बता दिया, योगाभ्यास. ये चार व्यक्ति उठाते हो हमको, एक आदमी से उठाने से नहीं उठने वाले हैं हम. इतनी जबरे हैं, मुर्दा तो नहीं उठता है, हम जिंदे कैसे उठेंगे भाई? मुर्दा उठता है एक आदमी से? एक आदमी से उठाने पर, एक आदमी उठाने पर मुर्दा उठेगा? मुर्दा तो नहीं उठता एक आदमी से, हम जिंदे कैसे उठेंगे एक आदमी से? हम इतनी जबरे हैं कि चार आदमी उठाना पड़ता है. मुर्दे को भी चार आदमी उठाना पड़ता है, तभी वो मुर्दा उठता है. श्रुति, आचार्य, ईश्वर और योग अभ्यास. तो हमने योग का कल संकेत किया ही था, निधिध्यासन ही योग है. निधिध्यासन, ध्येय चित्ता, जो श्रवण किया हुआ है उसमें एक चित्तता, ये अभ्यास, यही योग है यहां राजयोग. और वो तुम्हें उठाने में, जगाने में समर्थ है. तब तुम जगते हो तो तब क्या होता है, जैसे खाने से पहले का भोजन सबको इदम इदम इदम, नाहम नाहम नाहम, कटोरी के सब्जी को पूछो ये तुम हो, तो तुम कहोगे स्पष्ट कि नहीं, ये तो सब्जी है, हूं क्या छू, हूं तो अहिया छू, आ कटोरी में हूं क्या मैं, तो ये कटोरी है सब्जी है, मैं नहीं हूं. रोटी को पूछो कि ये तुम हो, तो बोले नहीं नहीं ये रोटी है, मैं कहां हूं ये. और जब खा लेता है तब क्या कहता है, जो खाया उस रोटी को छोड़कर मैं, ऐसा कोई नहीं कहता, सबको लेकर मैं गया था, मैं आया था, मैं उठा, मैं बैठा, मैं. सब कुछ कवलित हो जाने के बाद आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, आत्मा भिन्न उसका अस्तित्व नहीं रहता. इसी प्रकार से जगा हुआ व्यक्ति, ये सारा का सारा प्रपंच, इदम रूप में भाषित प्रपंच, वह आत्मभाव को होता है, वो कवलित हो जाता है. इस बात को और आगे स्पष्ट करते हैं। अब कोई प्रश्न करे कि आप इतने लंबे समय का ये स्वप्न कह रहे हो, कैसे माना जाए ये स्वप्न? बोले, अरे भाई, ये जो तुम्हारी दृष्टि से जो लंबा समय बता रहे हो, ये समय तो कुछ भी नहीं है बाबा। ये तो रात्रि के समय जिस समय तुम स्वप्न देखते हो, उस समय के भी कम समय है ये। तुम्हारे 100 वर्ष का जो जीवन है, समय है, वो तो रात्रि का जो स्वप्न देख रहे हो वो स्वप्न के समय से भी कम समय है। दृष्टांत दे रहे हैं, बड़ा सुंदर ही मनन करने योग्य दृष्टांत है। ये दिन को दिवा स्वप्न सिद्ध करने के लिए, रात्रि स्वप्न से ये भिन्न नहीं है ये निश्चय करने के लिए दृष्टांत दिया। पहले वही स्वप्न कहीं देख लो। यथा स्वप्ने निरपो भूतवा, कोई व्यक्ति था रात को जब सोया खाना पीना खाकर, तो उसके इंद्रियां सब उपराम को प्राप्त हो गई, विश्रांति को प्राप्त हो गई, उपरत हो गए। तब तुरंत उसके मन यानी अंतकरण अपना काम करने लग गया, तो स्वप्न देखने लग गया। तो स्वप्न क्या देखता है? कहीं राजकुमारों का स्वयंवर का प्रसंग था। महात्मा लोग बहुत दृष्टांत देते हैं। कोई राजकुमारी थी, उसका स्वयंवर का प्रसंग था। यह है कि राजकुमारी जिसके गले में माला पहना दे तो वह राजा बन जाएगा, उसका पति होगा और उसके बाद वह राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो जाएगा। या दूसरी बात समझ लो कि शास्त्रों में ऐसा दृष्टांत है कई बार कि यदि कोई राजा के पुत्र आदि युवराज नहीं है, तब उस राजा के उत्तराधिकारी का छनोट करना हो, चयन करना हो, तो एक हाथी को माला दी जाती थी और हाथी को कह दिया जाता था कि इस गद्दी के योग्य कोई उत्तराधिकारी खोज कर लाओ। तो वह हाथी जिसके गले में माला पहना देता था उसको उस राज्य का राजा माना जाता था। राजगद्दी खाली होने पर दूसरे राजा चयन के लिए प्रक्रिया थी। ऐसे कई उदाहरण आ गए हैं शास्त्रों में, हैं हमारे शास्त्रों में। रात्रि को वो स्वप्न देख रहा था, कौन? आत्मानंद गिरी। और संयोग से वह स्वप्न में उस राज्य में पैदा हुआ है वह आत्मानंद गिरी, जहां सिंहासन खाली था और मंत्रियों ने निश्चय कर दिया कि उस राजा चयन करने के लिए हाथी को माला देकर भेज देना है और जिसके गले में माला पहना देगा हाथी, वही राजा हो जाएगा। राजा होने की वासना तो आत्मानंद गिरी की भी थी। स्वप्न देख रहा था कि यदि मेरे गले में माला पहना देता हाथी तो क्या मजा आता है। मन में वही वासना लेकर स्वप्न देख रहा है, स्वप्न जैसे अभी आपके

शेयर बराबर चार शेयर बोनस तो आज तक कहीं दिया है किसी कंपनी ने? हैं? दिया है, शाबाश, दस तक दिया है बोनस, वेरी गुड। हम ही दुर्भाग्य हैं, एक भी शेयर नहीं खरीदे। देख लो प्रमाण है। अब भी आपके 100 शेयर थे, 1000 शेयर थे और एक के 10 कर दिया उसने, बोनस दिया, कितने हो गए? 10,000। और एक शेयर बराबर 1,00,000 का था। अरे कल्पना ही तो है क्या, क्यों दरिद्रता करना है? 100 में क्यों लाना है एक शेयर को? 1,00,000 का था, करोड़ के हो गए कि नहीं अब मलिक? तो आपके मन में क्या होती है, यदि ऐसा हो जाए तो आहा, मैं नरीमठ पॉइंट में एक फ्लैट खरीद लिया 10,00,000 में, 1 करोड़ में क्या मिलने वाला नरीमठ पॉइंट में फ्लैट? कल्पना तो है और क्या, सभी कितने कल्पना करते हैं। ओहो, मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा होता था पहले, अभी भी होता है, कोई बढ़िया घर बन रहा हो कहीं, फ्लैट हो, इसके टॉप फ्लोर में एक फ्लैट रखने है। लेकिन करें क्या, कल्पना करने से तो होने वाला नहीं था। सभी की जीव का ये अवस्था है, जीव भाव का ये लक्षण है, ये कल्पना करता है। वो सोया हुआ था, स्वप्न देखा, और स्वप्न में वो तो स्वप्न में तो सोएगा नहीं, स्वप्न जो देख रहा है वह स्वप्न में सोएगा नहीं, सोएगा, स्वप्न में तो जाग रहा था। तो वह हाथी जब राजमहल से माला लेकर निकला, मन में तो इच्छा हुई कि हाथी मेरे गले में माला पहना देवे, और हाथी जिस गली से निकल रहा था, जिस रास्ते से, तो आत्मानंद उसी में खड़ा होकर गर्दन लंबा कर रहा था। स्वप्न देख रहा है, गर्दन लंबा कर रहा था, तो उस हाथी ने डाल ही दिया माला, ये जन्म का प्रारब्ध था। स्वप्न में हाथी ने आपको राजा बनाने के लिए माला डाल दिया, वो किसी जन्म का प्रारब्ध था कि नहीं, बोलो? है ये प्रारब्ध, प्रारब्ध कुछ नहीं था, ये वासना है। वो प्रारब्ध से कोई स्वप्न में कोई राजा नहीं बनता है, प्रारब्ध से, प्रारब्ध से राजा बनना तो ये जागृत में ही है, ये दिवा स्वप्न में है, रात्रि स्वप्न में नहीं। मैं जागृत शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूंगा इस प्रसंग में, क्योंकि शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं ये भी स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है, इसलिए दूसरी शब्द से मैंने कहा ये दिवा स्वप्न है। तो ये भले ही प्रारब्ध से ये प्राप्ति हो, यहां जो कुछ भी प्राप्त हो प्रारब्ध से, लेकिन आपके रात्रि स्वप्न में जो कुछ प्राप्त होगा वो आपके प्रारब्धों से प्राप्त नहीं होगा। फिर भी उस हाथी ने आपके गले में माला डाल दी, आपके साथ और भी तो थे वहां बहुत से स्वप्न में गर्दन लंबे करने वाले, तो आपके गर्दन में डाल दिया, तो राजा बन गया, सब ने घेर लिया, जय जयकार, मंत्री आ गए, घेर गए, आत्मानंद जी महाराज की जय, ले गए सिंहासन में रख लिया। अब वो तो सिंहासन में बैठा हुआ है, राजा बना हुआ है, शासन कर रहा है, सेना है, सब सेवक हैं, परिचारक हैं, जयकार हो रहा है। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन, पूरे राजपाट भोग वैभव का अनुभव कर रहा है। कुछ दिन के बाद शत्रु राजा बलवान हो गया और उसने आक्रमण कर ली, तो युद्ध करने के लिए चला गया वो। यथा स्वप्ने निरपो भूत्वा, सुरेश्वराचार्य जी ने इस प्रसंग का संकेत कर दिया है, यथा स्वप्ने निरपो भूत्वा भोंगता भोगान यथेप्सितान। अब उसको तो भोग की कोई कमी होगी राजा को, यथा इप्सितम भोगान भुंक्त्वा, भोगा खूब भोग रहा है, चतुरंग बलोपेतः शत्रुं जित्वा रणांगणे। उसको तो अब कोई परास्त करने वाला ही नहीं है, चतुरंग सेना है, जिधर जाता है उधर ही सेना का प्रभाव यह है कि वो जीत लेता है। परंतु एक बार की बात है कि वह

0: युद्ध में दूसरे राजा ने उसको परास्त कर दिया, परास्त कर दिया तो राजसत्ता खत्म हो गई उसकी। वनम प्राप्य तपश्चरण, वो चला गया जंगल में तपस्या करने के लिए। अब क्या करेंगे? सत्यवान के माता पिता की कहानी महाभारत में सुने है ना, चले गए जंगल में। और सत्यवान उन्हीं को पालन पोषण के लिए क्या करता था? सत्यवान राजपुत्र था, राजकुमार था, और उनके माता पिता राजा थे। लेकिन प्रारब्ध की बात है, एक राज्य भ्रष्ट हो गया तो जंगल में चले गए। सत्यवान जंगल में जा रहा है अपने माता पिता की सेवा करने के, लकड़ी काटता है, बेचता है, उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसी से अपने माता पिता का भरण पोषण करता है राजा का। तो देख लो सत्यवान सावित्री का प्रसंग में ये आता है कि नहीं। तो पराजभूत पराजितो भूत्वा वनम प्राप्य तपश्चरण मुहूर्त मात्रम आत्मानम। और ये स्वप्न कितना लंबा है, वो स्वप्न देखने वाला कितने समय में ये सारा स्वप्न देख रहा है, मुहूर्त मात्र, एक मुहूर्त के अंदर का ये सब देख रहा है। राजा भी हो गया, राज वैभव की भोग रहा है, कई बार युद्ध किया, कई बार विजयश्री प्राप्त किया, और एक बार परास्त हो गया और जंगल में गया तपस्या करने लग गया। कितना समय उसके लिए, तो पूरी लाइफ है कि नहीं बोलो है। और वो जो स्वप्न क्या इतना दीर्घ समय, इतना लंबा समय तुम्हारे जागृत की अवस्था के हिसाब से करो तो कितना है? तो बोले एक मुहूर्त है। जागृत के सामने वह एक मुहूर्त है। वो एक मुहूर्त का अर्थ बराबर आचार्यों ने 42 मिनट बराबर माना है। एक मुहूर्त बराबर 42 मिनट्स, इतने में हो गया वो। 42 मिनट्स में क्या राजा बन सकता है कोई? मुहूर्त मात्रम आत्मानम मन्यते कल्पजीविना, वो स्वप्न दृष्टा क्या मानता है? कल्पजीविना। तथैव जागृत काले अपि, तुम्हें इस समय क्या लग रहा है? है इतना लंबा कोई स्वप्न होता है? यही लग रहा है कि नहीं? इस समय यही तो लग रहा है। स्वप्न होता तो एक मुहूर्त का होता है, ये तो कितना हो गया, 80 वर्ष हो गया। 87 वर्ष के एक वृद्ध आए थे कल हमसे मिलने, और 87 वर्ष का कोई स्वप्न होता है? ये तो जागृत है। अरे बाबा, इस समय तुम्हारी जो 87 वर्ष क्या 100 वर्ष, इसी तरह की भ्रांति उस स्वप्न देखने वाले को भी हुई थी कि स्वप्न में वह अपने सेंचुरी मना रहा था। समझ गए कि नहीं? एक बच्चा सोया, 16-17 साल का युवा है, वो सोया और वो एक मुहूर्त के अंतर्गत स्वप्न क्या देख रहा है? मैंने शादी की, मेरा बच्चा हो गया, मैंने बिजनेस किया, घर है, दुकान है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर ली, बहू आ गई, उसके भी बच्चे हो गए, तो क्या हो गया? पोता हो गया कि नहीं? और ऐसा वो योग करता रहा कपाल भांति रामदेव जी का। क्या कपाल भांति करता रहा, उसके पोते का भी शादी हो गई, उसका प्रपोता भी हो गया। कपाल भांति का फल है वो। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? वो 100 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया। तो सब नाती पोते प्रपोते सब लोगों ने क्या किया कि पिताजी की सेंचुरी मनानी है, सेंचुरी की तैयारी हो गई है, शताब्दी मनाने की तैयारी हो गई। आप लोग तो षष्ठी पूर्ति में क्या फंक्शन करते हो, करते हो कि नहीं? 60 वर्ष के हो गए तो षष्ठी पूर्ति का फंक्शन करते हो कि नहीं? आप लोग है करते हैं, और 75 वर्ष के हो गए तो क्या करते हो? डायमंड सिल्वर के जुबली, डायमंड जुबली, और 100 वर्ष के हो गए तो गोल्डन तो 50 में होता है भाई, प्लेटिनम जुबली। हाँ, क्या प्लेटिनम जुबली की तैयारी हो रही थी, शताब्दी समारोह भव्यता के साथ, और संयोग से वो पैसे वाला भी था, सीसीआई क्लब ही रिजर्व कर लिया उसने। कोई साधारण प्रेमपुरी आश्रम में मनाएगा वो? पैसे वाला होगा तो क्लब या भाईदास हॉल। क्या भव्य समारोह हो रहा था, आहा। उसी समय में एक प्रपोता आया और जोर से पटका, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए दादा प्रदादा की सेंचुरी मना रहा था और जोर से पटाखा, तो उसकी निद्रा खुल गई। पटाखा तो क्या था, कहां से, उसके पटाखा से तो क्या निद्रा खुलती उसकी। अब जैसे खुल गए, एक मुहूर्त के अंतर उसने शताब्दी मना रहा है कि नहीं, बोलिए। वो स्वप्न दृष्टा एक मुहूर्त के अंदर शताब्दी मना रहा है, पोते प्रपोतों का अनुभव कर रहा है। आप भी कर रहे हो कि नहीं, बोलो है? आप लोग तो शताब्दी नहीं मना रहे हो, षष्ठी पूर्ति तो मना चुके होंगे। ये कोई लंबा समय मान रहे हो इसको? एक मुहूर्त के अंदर ही हो रहा है सब, है? अनंत काल के गर्भ में ये तुम्हारा शताब्दी का क्या मूल्य है? अनादि अनंत काल जो है, काल प्रवाह में ये तुम्हारी शताब्दी का मूल्य क्या है? उस स्वप्न के एक मुहूर्त भी लंबा हो सकता है, ये इतना भी लंबा नहीं होगा उस काल गणना में, उसके गर्भ में। ये तो स्वप्न ही है। यथा स्वप्ने नृपो भूत्वा भुक्त्वा भोगान यथेप्सितान् चतुरंग बलोपेत शत्रुंजित्वा रथांग रणांगणे परात पराजितो भूत्वा वनम प्राप्य तपश्चरन मुहूर्त मात्रम आत्मानम मन्यते कल्पजीविनम तथैव जागृत कालेपि दृष्टांत। ये जैसा ये दृष्टांत वैसे ये जागृत काल भी। तथैव जागृत कालेपि मनोराज्यं करोत्यसौ। इस समय भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वे सब मनोराज्य होने के कारण स्वप्न है, क्योंकि व्यक्ति इसी कल्पना जगत में ही जी रहा है, यथार्थ जगत में नहीं जी रहा है। ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ये कल्पना मनोराज्य है और ये मनोराज्य ही स्वप्न है। मनोराज्यं करोत्यसौ काल नध्योग योगेन। काल नदी, काल रूपी नदी के वेग में पड़ा हुआ यह जीव इस तरह प्रवाह में बहता जा रहा है। क्षीण मायूर न पश्यति। अपने 100 वर्ष के जो समय को वह देखता ही नहीं, कहता है कि मैं तो बहुत जी गया। ये 100 वर्ष के आयु काल नदी के सामने एक बूंद है, जैसे नदी के जल के सामने तुम्हारे लोटे का और गिलास का पानी का क्या महत्व है। इसी तरह काल नदी के सामने ये तुम्हारा 100 वर्ष का तो एक बूंद भी नहीं है, और उसको ही तुम बहुत मानकर कह रहे हो। तो ये काल प्रवाह नपश्यति, देखता नहीं है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति चयम यौवनम, शंकराचार्य जी ने कहा है। आयुर्नश्यति पश्यति प्रतिदिनम याति चयम यौवनम, प्रतिदिन अपनी यौवन घटता जा रहा है, आयु नष्ट होता जा रहा है। प्रत्यायांति गता पुनर्न जीवनम, कालो जगत भक्षक, जो निकल के चला गया है काल समय वो चला गया, वापस नहीं आने वाला है। जो जवानी चली गई है चली गई है। हिंदी में सही शब्द प्रयोग किया है जवानी, अब गुजराती में इसका अनुवाद करो तो सही होता है, गुजराती लोग जवानी, जाने वाले को ही क्या कहते हैं जवानी, गुजराती में सही शब्द कह रहे हैं जवानी, जाने वाला, जाना निश्चित है, रुकने वाला नहीं है, रोकने का कोई उपाय नहीं है, जवानी। प्रत्ययांति गतः पुनर्न दिवस कालो जगत भक्षक लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला। जिस लक्ष्मी की हिसाब करते करते रात भर निद्रा नहीं आती वो तो क्या है, चपला है, बिजली की तरह। बिजली बने ये बिजली नहीं, मेघ गर्जना की बिजली की तरह है, विद्युत तरंग है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम। तो जब ये अनुभव होता है तब वो प्रार्थना करता है ईश्वर से, तस्मात माम शरणागतम शरणतः त्वम रक्ष रक्षा अधुना। तो ये जो दक्षिणामूर्ति का है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतम, जैसे स्वप्न अपने ही अंदर है इसी तरह ये विश्व भी अपने ही अंदर है। पश्यन मायया बहिव, जैसे स्वप्न के कारण स्वप्न के अपने ही अंदर का दृश्य, स्वप्न दृश्य अपने से बाहर की तरह देखता है, इसी तरह माया के चलते, अनादि माया निद्रा के चलते अपने ही अंदर विद्यमान ये सारा प्रपंच वो बाहर की तरह देखता है, लेकिन बाहर नहीं है, सत्यता यह है, क्योंकि वो अनादि माया सुप्तो। तो जीवो यदा प्रबुद्धते, तब जब जाता है, जब संत जगाते हैं, श्रुति जगाती है, ईश्वर जगाता है, योग साधना अभ्यास तुम्हें जगाता है, तब तुम्हें ये लगेगा कि अरे जिसको मैं इतने वर्षों से सत्य मानता रहा ये तो केवल प्रातिभाषिक मात्र है, प्रतीति मात्र है, और सत्य क्या है तो इसमें, तो बोले उसका साक्षी जो मैं हूं वो सत्य हूं। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Muruga Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi main jo kahani aapko sunane ja raha hu, wo ek aise sant ki kahani hai जो कि भगवान के नंदनवन या बगीचे की रक्षा और उनकी देखभाल करते थे। इस कहानी के पूर्व कुछ बातें समझना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने जिन संभावनाओं पर विचार करके मंदिर को सभी सेवाओं का केंद्र बनाया था, उनमें से एक प्रमुख था भगवान के समीक्ष नंदनवन या बगीचों की स्थापना करना। इसके लिए मंदिर के निकट का एक भाग नंदनवन बनाने के लिए अलग रखा जाता था। उसमें फूलों के पौधे लगाए जाते थे, खाद डालने और सिंचाई करने की व्यवस्था होती थी। फूलों की रक्षा भी आवश्यक है। विचार करें तो यह नंदनवन कितने परिवारों की आजीविका का साधन बनता है। भगवान तो मामूली आंख का फूल और धूप चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर फूल मालाएं गूंथ कर उनको अर्पित करने में भावना मात्र से अधिक भी कुछ रहा होगा। भगवान तो किसी विशेष प्रकार की फूलमाला या वस्तु की मांग नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने मंदिर के निकट नंदनवन की व्यवस्था समाज का एक अंग को आजीविका प्रदान करने के लिए ही किया था। इसके साथ ही उनका लक्ष्य प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण, पेड़ पौधे, पुष्पों, जड़ी बूटियों आदि की रक्षा करना भी था। यदि मंदिर सेवा से मिलने वाला काम व्यापारिक बुद्धि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्तिगत लाभ हानि की बात सोच सकता है। 10-12 परिवारों को काम पर लगाने, मजदूरी देने के बाद लाभ न होने पर व्यापारी स्वयं को ऐसी समाज सेवा से अलग भी कर सकता है। इसी कारण हमारे समाज ने इस व्यवस्था को मंदिर सेवा का नाम दिया है। पुष्पों की क्यारियां लगाना, फूलों को चुनकर एकत्र करना, माला गूंथना आदि मंदिर सेवा के माध्यम से कई लोगों की आजीविका का साधन है। अभी मैं कहने जा रहा हूँ मुरुगर नायनार की कहानी। मुरुगर नायनार या मुरुगर संत का जन्म तमिलनाडु के चोल राज्य के पूंकुवलूर नामक शहर में हुआ था। नियमित रूप से उपवनों से ताजे पुष्प चयन करना, उन्हें रंग बिरंगी मालाओं में गूंथकर भगवान को चढ़ाना ही उनकी भक्ति का रूप था। पुष्प चयन करते हुए, माला गूंथते हुए और प्रभु को ये मालाएं अर्पित करते हुए हर क्षण उनके मुख से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण चलता रहता था। अन्य समय भी अनाहत उनके मुख से नमः शिवाय से सजी हुई रहती थी। तामिल के प्रख्यात शिव भक्त तिरुज्ञान संबंधर के विवाह के अवसर पर ज्योति में लीन होकर शिव सायुज्य प्राप्त करने वाले कई लोगों में से एक थे मुरुगर। सेवा के अनेक रूप हैं। प्रायः हर सेवा जनता के लाभ के लिए होती है। कुछ का लाभ प्रत्यक्ष और कुछ का परोक्ष होता है। सेवा करने वाले व्यक्ति का कभी मन दुखित नहीं होता, वो समाज सेवा में प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रभु को पुष्प आदि समारोह सजाने पर भक्तों को उस शिवलिंग को देखकर जो आनंद मिलता है, इसी से जो सेवा करता है उसका मन भी आनंद प्राप्त करता है। इसी उद्देश्य से मुरुगर ने सदा शिवलिंग या शिव की प्रतिमा को पुष्प या फूलों से हमेशा सज्जित करने की कोशिश की है। मुरुगर नायनार उस समय विलीन हो गए या फिर अदृश्य हो गए जब तिरुज्ञान संबंधर, जो कि और एक संत थे, उनके विवाह के समय भगवान ने तिरुज्ञान संबंधर संत और उनके सभी भक्तों, जिनमें मुरुगर भी थे, उन सबको अपने साथ उस शिवलिंग में ही विलीन कर लिया। उन्होंने एक ज्योति के रूप में आए और सारे भक्तों और तिरुज्ञान संबंधर और मुरुगर इन सभी संतों को देखकर एक साथ विलीन हो गए और अपने अंदर समा लिया।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ஓம் நமசிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org. The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ब्रह्मार्पणम मंत्र न पढ़े बिना खाने लग जाए वो असुर होता है। हाँ, इसने ये किया, विष्णु के तरफ इशारा किया कि ये कोई छद्म व्यक्ति है, प्रच्छन्न देवता है ये, है? इसने पी लिया तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया विष्णु ने, क्योंकि गले से नीचे उतर चुका था, मरा नहीं, तो दो हो गए, तो सिर राहु हो गया, धड़ केतु। अब जब उधर से असुर लोग सब नहा धो के आए, अमृत पिलाओ, बोले घड़ा तो खाली हो गया। क्या हुआ? बोले पी गए सब देवता। हाँ, तो ये बात भगवान शिव के यहां पहुंच गई, शिव तक पहुंच गई ये बात। भगवान विष्णु ने इस तरह असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाई, मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिव को लगा कि ये मोहिनी रूप कैसा होता है, जरा देखना चाहिए, तो भगवान विष्णु को बुला लिया। तो आपने सुना है मोहिनी रूप धारण करके असुरों को ठक्कर हम देवताओं को अमृत पिलाया, बोले हां महाराज वही किया है, कृपा करके मुझे दिखाओ न मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं महाराज, आप इस रूप को दर्शन न करो, ये आपके लायक नहीं है वो रूप। शिवजी ने हट किया, नहीं नहीं भाई दिखाओ, एक बार दिखा दो, देखने में क्या हर्जा है। अब जब शिव ने जब आग्रह की तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा भाई दिखा देंगे। प्रसंग बनाकर भगवान विष्णु ने वो रूप दिखा दिया शिव जी को, क्योंकि मोहिनी थी, मोहिनी रूप था तो मोहित तो होना ही जरूरी था, यदि शिव मोहित न होते तो रूप की सार्थकता न होती, मोहिनी ये सार्थक न होता। तो मोहिनी इस रूप को सार्थक करने के लिए भी भगवान शिव को सम्मोहित तो होना ही पड़ा, ऐसे सम्मोहित होगा कि जब पकड़ने के लिए उठ खड़े हो गए। पुराण में सब प्रसंग है, बड़ा विभत्स अवस्था है भाई, दौड़े आगे आगे मोहिनी भगवान विष्णु मोहिनी, पीछे पीछे भगवान शिव, दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे, पकड़ लिया शिव जी ने, पकड़ लिया। हरी इच्छा थी तो एक बेटा पैदा हुआ, मैंने परसों भी संकेत किया था ना, उस बेटे का नाम है अय्यप्पा, वेद में उसका नाम है शास्ता पुरुष, दक्षिण में उसको अय्यप्पा, दक्षिण भारतीय नाम में अय्यप्पा बोलते हैं, वेद ने उसका नाम रखा शास्ता पुरुष। हम लोग बोलते हैं स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, पूजा करते समय बोलते हैं ना ये, उनमें से जो ग्राम देवताभ्यो नमः है वह शास्ता पुरुष है, वही है हरिहर पुत्र। तो उस समय में मोहिनी रूप फिर शिवजी को दिखाकर भगवान शिव की पत्नी बन गए, यही भार्यात्व। भगवान शिव की इच्छा से ही ना मोहिनी रूप दिखाकर पुत्र पैदा किया, यही तो भार्यात्व है। विष्णु ने बाणत्वम वृषभत्वम अर्ध बपुषा भार्यात्वम आर्यापते, आर्यापते संबोधन है, आर्य माने पार्वती, उनके पति आर्यपति, आर्या आर्य आर्या पार्वती। घोड़ी तुम बराह रूप धारण किया, अभी भगवान विष्णु ने शिव की आज्ञा से पृथ्वी को लाने के लिए बराह का रूप धारण किया। या ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता लगाते समय में बराह रूप धारण करके नीचे चले गए थे, तो वही घोड़ित्वम। सखीता, भगवान शिव सखी बनकर, नहीं विष्णु सखी बनकर शिव के सान्निध्य में रहे, ये सब पुराण में अलग अलग प्रसंग हैं। मृदंग बहता तांडव नृत्य के समय में मृदंग बजाने वाले भगवान विष्णु थे। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे तो वाद्य था नहीं, तो मृदंग बजाया विष्णु ने, तब भगवान शिव नाचने लगे। च इत्यादि रूपम ददौ, ऐसे और भी रूप भगवान विष्णु ने शिव जी के प्रसन्नता के लिए धारण किया है। कितने रूपों का वर्णन करें? तोत्पादे नयनार्पणम च हरिस्ते साहस्रम कमलवलिमाधाय पदयोर यदे कोने तस्मिन् निज मुदाहरण नेत्र कमलम। मैंने स्तोत्र में ये प्रसंग आप लोगों ने बहुत सुना है। उनका नियम था, भगवान शिव का नियमित रूप में अर्चना करना, अर्चना में प्रतिदिन सहस्र कमल की अर्चना भगवान विष्णु करते थे। एक दिन भगवान शिव की इच्छा से एक कमल कम हो गए, तो भगवान विष्णु ने तुरंत अपने नाम का स्मरण किया कि मुझे कमल नयन कहते हैं, इसका मतलब मेरा नयन कमल है, इसलिए तो मुझे कमल नयन बोलते हैं। मेरे आंख गोबर के होते तो मुझे क्या बोलते हैं? गोबर नयन। मेरे आंख वास्तव में कमल है, इसलिए मुझे कमल नयन बोलते हैं। तो एक कमल की कमी है, और मेरे पास तो दो कमल हैं, है? दो नेत्र हैं, एक चढ़ा देता हूं, अर्जा क्या है? मेरी पूजा तो निर्विघ्न होगी ना, पूजा में खंडित नहीं होगी। तो निकाला और वही चढ़ाने लग गए, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए कि तुमको नेत्र निकालने की जरूरत नहीं, पर संकल्प किया कि मुझे प्राप्त हो गया, समझे नहीं? मैं नेत्र भगवान शिव को अर्पण करूं, ये संकल्प किया कि मुझे प्राप्त हो गया। मानस पूजा में यही तो है, पुष्पाणि संतु मम इंद्रियाणि अक्षतान हृदय दीप आदि भावना, शरीर अगरबत्ती, ये तो भावना है। त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान्, त्वद्देह भागो हरि, पूज्यात् पूज्यतरः। आप कैसे हैं? ये सब कर्म करने के कारण भगवान विष्णु सारे संसार में पूज्य हुए, आज सारे संसार के लोग विष्णु की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि विष्णु ने आपकी पूजा की, इसीलिए भगवान विष्णु का महत्व बढ़ा, इसलिए सारे संसार के लोग विष्णु की पूजा करते हैं। तो आप क्या हो गए? पूज्यात् पूज्यतर, पूज्यों के द्वारा भी पूज्य। बोलो, पूज्यों का भी पूज्य हो गया कि नहीं? इसलिए तो रामेश्वर, राम का भी ईश्वर रामेश्वर। सारे दुनिया राम की पूजा करते और राम भगवान शिव की पूजा करते, तो शिव क्या हो गए? पूज्यात पूज्य तरह।

0: और आगे कहते हैं, यह श्लोक बड़ा मार्मिक था। यह 83वां श्लोक बड़ा मार्मिक है। श्लोक है सामान्य लेकिन बड़ा गंभीर है। जनन मृति युतानां सेवया देवतानां नववति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनीमं अमृतरूपं सांबमीशं भजन्ति यहि अपरम सौख्यम तेहि धन्या लवन्ति। इसका सामान्य अर्थ है जनन मृति युतानाम देवतानाम सेवया जनन मृति युतानाम देवतानाम सेवया सुख लेसा न भवति। जन्मने वाले और मरने वालों के जनन मृति युतानाम, हमेशा जन्मने वाले और मरने वाले, जन्मने वाले मरने वाले, ऐसे स्वभाव वालों का सेवा करके लेस मात्र भी सुख नहीं हो सकता। जनन मृति युतानाम सेवया देवतानाम। बोले ठीक है, जन्मने वाले मरने वाले तो मनुष्य हैं, उनकी सेवा करके रंच मात्र भी सुख नहीं हो सकता, लेस मात्र भी सुख नहीं होता, लेकिन देवता तो जनन मृत्यु वाले नहीं है। बोले देवता नाम वो भी जनन मृत्यु वाले हैं, वो भी सृष्टि के आदम में पैदा होते हैं और सृष्टि के अंत में मरते हैं। ये हमारे तरह सृष्टि के बीच में हजार बार पैदा और हजार बार मरते नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन पैदा तो होते और मरते भी। पंचदशी में पढ़ा ना, जागृत के पदार्थ और स्वप्न के पदार्थ में अंत क्या है, तो विद्यारण्य मुनि जी ने बता दिया। स्वप्न के क्षणिक हैं, जागृत के थोड़ा नित्य हैं, नित्य माने लंबा समय के हैं। देवता एक बार जब पैदा होते हैं तो और मरते हैं, उस बीच में हम लाखों करोड़ों बार पैदा होते हैं और करोड़ों बार मरते हैं, ये फर्क इतना ही है। लेकिन देवता अमर नहीं है, कभी पैदा नहीं होने वाले अज नहीं है, कभी न मरने वाले अमर नहीं है। इसलिए इस प्रसंग में वो भी जनन मृत ही है। तो इस संसार में मनुष्यों की सेवा करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता, देवताओं की सेवा करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसकी सेवा तुम करोगे वो खुद अनित्य है, तो तुम्हें नित्य सुख कैसे दे सकता है। जनन मृति युतानाम सेवया देवतानाम न भवति सुख लेश, उनकी सेवा करने वालों को रंच मात्र भी सुख नहीं हो सकता। संशयो नास्ति तत्र, और तुम्हें यदि शंका हो तो अनेक प्रमाण हम देंगे, इसमें शंका नहीं करना। संशयो नास्ति तत्र न भवति सुख लेश, संशयो नास्ति तत्र, इस प्रसंग में जरा भी संशय शंका नहीं है, सुख नहीं हो सकता। फिर किसकी सेवा करें महाराज? अजनिम, अजनिम अमृत रूपम, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो कभी मरता ही नहीं। कौन है महाराज ऐसा इस दुनिया में? अंबया सहितम सांबम, अंबा सहित सांब, ईसम सांब ईसम भजन्ते। जो भगवान शिव की अजन्मा अमृत अविनाशी, अजन्मा अविनाशी भगवान शिव की जो सेवा करता है, भजन्ते भज सेवायाम भजन्ते, यह परम सौख्यम, वह इस श्लोक में परम सुख का अनुभव करता है। परम सौख्यम ते ही धन्या लभन्ते, और वही व्यक्ति इस संसार में धन्य है, और वही व्यक्ति का जीवन धन्य है, और वही व्यक्ति वास्तव में परम सुख आनंद को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह परम सुख परम आनंद तो प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा ही सुंदर यह श्लोक है, इसका भाव हो। एक भगवान शिव हुए हैं भास्कर राय, उन्होंने शिव नामक कल्पलतिका नामक एक स्तोत्र की रचना की। वहां भगवान शिव ही परम भजनीय हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भजनीय सेवनीय भगवान शिव ही है, उसके अलावा और कोई नहीं, इसलिए अन्य का आश्रय नहीं लेना। भगवान शिव परम भजनीय क्यों है, उसके लिए भास्कर राय ने नौ कारण बताया। इन नौ कारणों से प्रमाण सहित उन्होंने प्रस्तुत किया। पहला कारण दिया, क्योंकि भगवान शिव अनंत है, अनंत माने सीमा नहीं है जिनकी, जिसमें देश परिच्छिन्नता नहीं, काल परिच्छिन्नता नहीं, वस्तु परिच्छिन्नता नहीं, इस अनंतता के चलते वही सबसे श्रेष्ठ भजनीय हैं। इसमें प्रमाण कौन है? बोले विष्णु प्रमाण है। अनल स्कंद वपुषा, अनलम परिच्छेत्तम अनलम, पता लगाने के लिए विष्णु चले बराह रूप धारण करके नीचे, पता लगा नहीं पाए, ये विष्णु प्रमाण है कि भगवान शिव अनंत है। भास्कर राय ने ये प्रमाण दिया, एक हेतु तो ये दिया। दूसरा हेतु दिया, भगवान शिव परम उदार हैं, परम उदार होने के कारण ही भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं, उत्तम भजनीय है। इसमें उदारता प्रमाण कौन है? भास्कर राय ने कहा इसमें प्रमाण उपमन्यु है। उपमन्यु भगवान शिव का भक्त हुए हैं उपमन्यु। महाभारत का उपप्रसंग की तरह ही उपमन्यु का जीवन है। अश्वत्थामा ने मामा के घर गए, और मामी ने उनको दूध पिला दिया अश्वत्थामा को। ये कहानी सुना है ना तुम लोगों ने, क्योंकि उनके घर में तो दूध था नहीं, द्रोणाचार्य जी के घर में तो गाय थी नहीं, गरीब थे बेचारे। अष्टावक्रा क्या गए तो दूध पीने को मिल गया उनको। घर में आकर कहने लगे मां, मामी ने जो चीज दिया है वो मुझे पीने को, बहुत बढ़िया था। क्या था भाई? बोले नाम तो मुझे पता नहीं। कैसा था? बोले गिलास में दिया तो सफेद सफेद पानी जैसा था। तो समझ गई अश्वत्थामा की मां, कृपी ने समझ लिया ये जरूर गाय का दूध पिलाया होगा उसने। अब वो मांग रहे हैं मुझे गाय का दूध पिलाने पीने दो, और गाय है नहीं, कहां से लाके दें दूध। कहते अंदर गई और आटा घोल के, और आजकल का हॉर्लिक्स होता तो ठीक था तो गई और गर्म पानी में आटा घोली और लाके दिया। अब कहां गाय का दूध, कहां आटा घोला हुआ, फेंक दिया। ये तो वो चीज नहीं है। रोने लग गए। द्रोणाचार्य को कहा कि अरे बेटा ऐसा कर रहा है, ये गाय तो लाना चाहिए। बोले कहां से लाएगा? बोले तुम्हारा मित्र राजा बन गया है, बचपन का सखा द्रुपद राजा बन गया है, तो उसके पास तो बहुत से गाय है, एक गाय मार के लाओ, जरूर देगा। तो पत्नी के कहने से बेचारे चले गए द्रोणाचार्य मांगने। कहा पहचानने से ही मना कर दिया, मेरा कौन मित्र, कौन सखा, कहां मैं राजा, घमंड देख लो। तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब तेरी बुद्धि को ठिकाना लगाना पड़ेगा। वो प्रसंग अलग था, यहां उपमन्यु का भी वही सेम ऐसे ही प्रसंग है। बहुत जिद्द किया तो उनकी मां ने कहा बेटा तुमको यदि दूध पीनी हो तो भगवान शिव की भक्ति करो, उनकी कृपा होगी तो गाय मिलेगा, फिर दूध मिलेगा तुमको, और नहीं तो हमारे पास गाय ही नहीं है, शिव की कृपा नहीं हुई है, वही दे सकते हैं तुमको गाय का दूध, हम तो नहीं दे सकते बेटा। तो उपमन्यु ने भक्ति की शिव जी की, और भगवान शिव प्रसन्न होकर उपमन्यु से कहा कि बेटा क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे गाय का दूध चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि कैसा भोला है बेचारा, हमारे सामने ये गाय का दूध मांग रहा है। तो भगवान शिव ने सिर में से थोड़ा सा निचोड़ लिया, क्या था, अमृत था ना, सोम चंद्रमा, उसमें से थोड़ा निचोड़ लिया, गिलास में डालकर ले बेटा दूध पी ले। लिया, मांगा था गाय का दूध, पिला दिया अमृत, इससे बढ़कर उदार और कौन हो सकता है? इसलिए शिव ही भजनीय है, दूसरा हेतु नौ हेतु दिया है ऐसा है। तीसरा हेतु भगवान शिव हमेशा सत्य के पक्षपाती हैं, असत्य के पक्षपाती नहीं है, इसलिए भी भगवान शिव भजनीय है। सत्य का पक्ष लेने वाले के प्रति प्रसन्न और असत्य का पक्ष लेने वाले के प्रति दंड, इति शिव सत्यनिष्ठ होने के कारण भगवान शिव ये भजनीय है। प्रमाण क्या है? ब्रह्मा और विष्णु ये प्रमाण है। वह ज्योतिर्लिंग के पता लगाने के प्रसंग में झूठ का आश्रय लिया ब्रह्मा, सिर काट दिया, और सत्य का आश्रय लिया विष्णु ने, तीनों लोक में पूज्य हो गए। चौथा हेतु है मृत्यु से सर्वथा रक्षा करने वाले हैं भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं। प्रमाण क्या है? मार्कंड ऋषि इसमें प्रमाण है। और थोड़ी सी सेवा से बहुत ज्यादा फल देने वाले हैं, इसलिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ पूज्य है, उत्तम है। प्रमाण क्या है? शिवपुराण में शिवरात्रि की कथा तुम लोगों ने सुनी है। एक ब्राह्मण का बालक था, वह बड़ा उठपटंग काम करता था, परिणाम ब्राह्मण धर्म से च्युत होकर चांडाल धर्म अपनाया था, चोरी करना, लूटना, यूं करना त्यूं करना, कोई सच्चरित्रता थी नहीं उसमें, तो जंगलों में रहता था। शिवरात्रि के दिन दिन भर व्रत बैठकर शाम के समय में गांवों का कोई भक्त भगवान शिव मंदिर में प्रथम प्रहार रात्रि को पूजा करने के लिए गया था, तो बहुत से पकवान नैवेद्य फल फूल है मिष्ठान्न लेके गया। अब वो चांडाल बेचारा वही मंदिर के पास में बैठा था, कोई आएगा कोई लूटेंगे, वो अंदर गया भक्त, बत्ती जला ली, पूजा किया, एक प्रहर की पूजा की और सब मिष्टान्न आदि पकवान फल फूल शिव को अर्पण किया और वो चला गया। उसके बाद वो चांडाल आया, वो अंदर घुसते ही बत्ती बुझ गई, तो कहां क्या रखा है उसको क्या पता, अंधकार में इधर टटोलता है उधर टटोलता है। उसके दिमाग में आ गया अपनी जो पुरानी धोती वो पहन रखा था उसको फाड़ा और एक दूसरा पत्थर लेके, क्योंकि वो जंगल में तो आग उसी तरह जलाता था, वो एक पत्थर में दूसरा पत्थर रगड़ो तो चिंगारी आती है चकमक, उससे आग बत्ती जलती, आग जल निकलता है, अग्नि निकलती है। उसने अपने पुरानी धोती का एक छड़ा फाड़ा और एक पत्थर का टुकड़ा कैसे उसको मिल गया और शिवलिंग में मारा, जोर से मारा तो चिंगारी निकली तो कपड़ा में अग्नि तो दिया हो गया, ले जा रोशनी हो गई मंदिर के अंदर। तब फटाफट फल मिठाई सब खोज खास के खाया है। संयोग की बात, वो शिवरात्रि का दिन था, दिन भर कुछ खाया नहीं था, व्रत हो गया और शाम के समय प्रथम प्रहार में उसने दिया जला दी। इतनी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर दूसरे जन्म में कुबेर बना दिया। जाओ, थोड़ी सी सेवा से भी प्रसन्न होकर इतना दे देते हैं कि इतना दे देते हैं कि उसको फिर अब दुनिया में फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भी भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय है। छठे कारण, बड़ा सा बड़ा संकट से निवृत्त करने वाले भगवान शिव है। समुद्र मंथन में जब कालकूट निकला, अकांड ब्रह्मांड अक्षय चकित देव सुर कृपा, बिना समय में प्रलय होने लगा, तो उस कालकूट को समन करने का किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो सब जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्होंने आराम से उसका पान करके संकट मोचन, बड़ा सा बड़ा संकट से निवृत्त कर दिया। इसमें प्रमाण है समुद्र मंथन का। नीलकंठ हो गए वो अपने आप। सातवां हेतु है, यदि उनकी उपेक्षा और तिरस्कार करके शास्त्र मर्यादा का उन्मार्ग करता है तो उसको दंड देकर सन्मार्ग में लगाते हैं। तो बिगड़ने वाले जिंदगी को भी सन्मार्ग में लगाकर सुधार देते हैं। इसमें दक्ष प्रजापति प्रमाण है, है? उनका अपमान किया, उन्हीं का अपमान किया, शिव का ही अपमान किया, वैदिक विधि का तिरस्कार किया, फिर भी उसको दंड देकर उसका उद्धार कर दिया और आगे परम शिव का भक्त भी बन गया दक्ष प्रजापति। हेतु है आठवां हेतु दिया, परम हित का उपदेश करने के कारण भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं, उपासनीय हैं। हेतु क्या है? भगवान राम इसमें प्रमाण है, शिव गीता का उपदेश किया भगवान शिव ने स्वयं राम को और सनत कुमारों को, तत्त्वमसि महावाक्य का ज्ञान मुद्रा से दर्शन उपदेश किया, यो भद्रया मुद्रया। इसलिए भी मोक्ष शास्त्र का उपदेश चिन्ह मुद्रा के द्वारा उपदेश करने के कारण सापूर्वे सामपि गुरु हो, इसलिए शिव सबसे उत्तम भजनीय है। नौवां हेतु दिया, परमात्मा की उत्तमता तो वेद ने सर्वत्र प्रशंसा की है। ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर आदि आदि। तो इन सब कारण से भगवान शिव ही भजनीय हैं और भगवान शिव का भजन करोगे तभी वह नित्य सुख अमृत की प्राप्ति होगी, अन्यथा जनन मरण जन मृतों की सेवा करके लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: इसको पी जाना है, ये मेरा ही खड़ा हुआ किया हुआ संसार है, मेरा ही विष है। पी जाना याने सहनम, इसी को तितिक्षा कहते हैं। सहनम सर्व दुखानाम। ये आप जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु पहले दिन जो पढ़ाता है वो ये है। हाँ, क्या पढ़ाते हैं गुरुजन? भाई तत्वबोध खोलो, अप्रोक्षानुभूति खोलो, विवेक चूड़ामणि, क्या सिखाते हैं हम? साधन चतुष्टय संपत्ति। पहले ही दिन आपके आपके बैंक बैलेंस में हम संपत्ति भर देते हैं, पहले ही दिन। ऐसा तो कोई करेगा? ऐसे तो माता पिता भी नहीं करते। बच्चा मैच्योर होता है तो उसको चेकबुक दी जाती है, और यहाँ मैच्योर इमेच्योर की बात ही नहीं, पहले ही आए और गुरु संपत्ति से भर देते हैं। कितनी संपत्ति? चार चार संपत्ति देते हैं। कौन सी? तो बोले विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। तो ये विष का पी जाना याने उसके लिए कौन सी संपत्ति चाहिए आपको? और गुरु की दी गई संपत्ति होगी, यही ज्ञान होगा, तो ही आप ये विष पी सकेंगे। तो क्या है वो? तितिक्षा है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो सहनम सर्व दुखानाम यानी भगवान शंकराचार्य जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको कुछ दुख आ गया, दुख आ गया और आपने वो दुख के पीछे बहुत ही प्रलप

प्रतिकारी नहीं करना है, यानी ये दुख के तरह इसको नोटी नहीं कर, नोटिस ही नहीं लाना है। क्यों? मेरा ही खड़ा किया गया विष है, मेरा ही विचार है। हा? अपना विष आपको क्या, सांप का जहर खुद को उसको सांप को मारता है क्या? सांप का जहर सांप को नहीं मारता, मेरा विष मुझे कैसे मारेगा? पर मेरा विष मुझे मार सकता है। सांप का जहर निकाल के सांप के ब्लड सर्कुलेशन में डालो तो सांप मर जाएगा उसी के जहर से। हाँ, मेरा जहर अभी बाहर निकला, निकाला तो क्या होगा? राग द्वेषात्मक जहर बाहर निकाला, क्रोधात्मक जहर बाहर निकाला, ईर्ष्या का जहर बाहर निकाला तो क्या होगा? ये जैसे ही जिस क्षण जहर बाहर निकाला, समझ लेना सांप के ब्लड सर्कुलेशन में जहर गया और वो मर गया, ऐसे हमारा ही जहर हमें मार डालेगा। इसीलिए यहाँ ये सांकेतिक भाषा है, पर अभी शंकर प्रभु ने क्या किया कि भाई ये तो व्यष्टि रूपी जहर है, पर समष्टि रूपी ये पूरे विश्व को, समष्टि रूपी जहर यानी अज्ञान रूपी जहर, ये अज्ञान जब बाहर निकलता है तो अज्ञान का जुरुम्बण क्या है? अज्ञान यानी यही माया। नयस्त विद्या मनसोतिरिक्ता मनो य विद्या भवबंद हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभिते स्मिन् सकलम विजृंभिते। क्या है? नहीं अस्ति अविद्या मनसोतिरिक्ता। भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बता रहे हैं ये अविद्या ही क्या है, यही मन है। मेरे पास, मेरी तक बात आ गई। और ये जो मन है, समष्टि जो अविद्या है वो क्या है? वो माया है। यानी परमात्मा की जो उपाधि क्या है? तो भाई मायोपाधि ईश्वर, अविद्योपाधि जीव। वो आपको अभी समझ में आएगा कि जो जीव है उसकी उपाधि क्या है? अविद्या है। पर ये अविद्या क्या है? ये मन है। ये मन क्या है? मन ही माया है। माया की उपाधि किसकी है? तो बोले ईश्वर की है। यानी ये ईश्वर, अविद्या, मन, माया, जीव, समष्टि व्यष्टि को एक करो तो ये अज्ञान रूपी जो विष जो है उसका अपान, ये जो अज्ञान जो है, मेरे खुद के अहम का अज्ञान जो है वो सबको विषैला कर देगा। और ये जो परमात्मा का नाम स्मरण है, परमात्मा का ज्ञान है, अगर ये शिव जी कहते हैं कि ये विष मैं नहीं पी जाऊं तो ये सृष्टि में से, ये ब्रह्मांड में से अज्ञान कभी भी तिरोभूत नहीं होगा। इसीलिए पी के आकंठ यहाँ रख दिया कि बाहर जो शुद्धि हो जाए, ये शुद्ध सत्वगुण ऐसा का ऐसा ही रह जाए, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये सत्वगुण रूपी ज्ञान की जो परंपरा जो है, ज्ञान के आदान प्रदान की परंपरा जो है, ये जो विधि जो है वो ऐसी की ऐसी ही बनी रहे। ऐसे विषपान सहजता से कर लिया, विष कौन सहजता से पी सकता है? जो अपने स्वभाव को जिसने जान लिया है वही विष का सहज रूप से पान कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं, खूब अच्छी बात करते हैं। देखिए, परमात्मा की मात्रा आराधना या स्तुति नहीं करनी है, प्रेम से स्तुति करनी है। वो कोई अपना है ऐसे स्तुति करनी है। देखिए, स्तुति की भी दो प्रकार की होती है। आप किसकी स्तुति करेंगे और आपको उसके लिए प्रेम न हो तो वो स्तुति कैसी की जाएगी? वो सिर्फ ये वो स्वार्थ वाली स्तुति हो जाएगी। भाई आप तो शेठ, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा है ऐसा है। क्यों भाई? कुछ चाहिए? हाँ, कैलकुलेटेड स्तुति है, कैलकुलेटेड प्रेम है, ऐसा नहीं है। यहाँ चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए श्री पुष्पदंत जी को? भाई माफी चाहिए। हाँ, क्षमा चाहिए कि निर्माल्य का उल्लंघन हो गया है तो ये न कहना प्रकरण। फिर क्षमा ही खाली नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? भाई कृपा भी चाहिए कि भाई इस बहाने भी मैं आपके पास आ ही गया हूँ तो अब ये अज्ञान से भी मेरा उद्धरण करने वाले आप ही है। समस्त ब्रह्मांड रूपी अज्ञान का विष जो पी सकता है वो मुझ में अज्ञान कैसे रख सकता, मेरा भी अज्ञान कैसे देख सकता है? इसीलिए गुरु प्रसक्ति का बहुत महात्म्य है। गुरुजन क्या करते हैं? हमारे विष को पी जाते हैं। हाँ, आपको शरण में आना है। आप जैसे ही शरण में आ गए, आपने समर्पण कर दिया, तो क्या करेंगे? आपका अज्ञान रूपी विष और घोल वो पी जाएंगे और रख देंगे। हानि नहीं होती। क्यों नहीं हानि होती? क्योंकि जिसने वो विद्या, वो परम प्रभु को प्राप्त कर लिया है, उसे अब कुछ भी छू नहीं सकता, उसका कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। और इसीलिए हे शिव जी, हे गुरु,
पहले गुरु कौन है? ये शिव जी है। हाँ, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदा

आर्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये जो शिवजी है ये शिवजी प्रतीकात्मक है, हम सब गुरुजन जो है, गुरु की जो उपाधि जो है, गुरु का जो नाम जो स्टेटस है, वो गुरु ही शिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कौन से प्रतीक है? तो बोले परम गुरु के प्रतीक है, ये परंपरा के जो गुरुजन है उनके प्रतीक है, विष पान करने वाले हैं। हे शिव जी, आपके चरण में आ गया हूँ और विष पीने का सामर्थ्य सिर्फ आप में ही है और किसी में भी नहीं है, इसीलिए कुछ पाने के लिए स्वार्थी स्तुति नहीं है, मैं प्रेम से स्तुति कर रहा हूँ। तो ये प्रेम कहाँ दिख रहा है? ये जो अंतिम लाइन है उसमें प्रेम दिख रहा है। कहते हैं विकारोपी श्लाघ्य भुवन भय भंग व्यसनीन। परमात्मा को व्यसनी बोलते हैं। आप किसको व्यसनी बोल सकते हैं? भाई तू तो व्यसनी है, आपके पास कोई आया और आपने बोला तू व्यसनी है, तो किसको बोल सकते हैं? जिसके ऊपर प्रेम हो, जिसके ऊपर श्रद्धा हो कि मेरे उसको व्यसनी बोलने में भी उसे कोई भी कष्ट न हो। हाँ, मेरे ऐसे वाक्य, ऐसे कटु वाक्य भी वो प्रेम के जैसे पी जाएगा, उसे ही आप बोल सकते हैं ना कि तू व्यसनी है। तो यहाँ खूब प्रेम से बोलते हैं कि आप तो व्यसनी है शिवजी। तो शिवजी क्यों व्यसनी है? तो बोले कि जगत के जो अज्ञान रूपी भय है उसे मिटाने के लिए, उसको मिटाने वाला व्यसन आपको चिपक गया है, हे शिवजी। हाँ, जगत के अज्ञान को, जगत का जो नाश है, जगत को जो हानि हो रही है ये विष से, वो विष का बारंबार पान करने के लिए जाने के आपको व्यसन हो गया है, आपको आदत पड़ गई है, आपको स्वाद लग गया है। हाँ, और इसीलिए आप ये जाने विष पान कर रहे हैं। ऐसे आपके जो व्यसन रूप विकार भी है वो भी आराधने योग्य है, वो भी सराहना करने के योग्य है। हाँ, वो भी कैसे हो जाते हैं? वो भी ब्यूटी हो जाती है। ये आपका व्यसन है, यानी क्या कहा है कि ज्ञानी का जो व्यसन जो है, आपको लगता है व्यसन है, ज्ञानी का व्यसन भी सराहनीय हो जाता है। कभी कोई ज्ञानी से न कहना आपको ये व्यसन है, अच्छा नहीं है, आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, आपका ये स्वभाव अच्छा नहीं है, आपको इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। वो सब कुछ रहना ये शिवजी का और शिव समान, आपके गुरु को आप शिवजी मान रहे हैं तो उनकी कोई भी आदतें, कोई भी स्वभाव, उनका कोई भी दिन शुरू होने से रात तक का उनका कोई भी विचार, चहल पहल आपको अखरनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ वो सराहनीय है, ऐसा कहा है। ज्ञानी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, वो जब उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। वो जो खाते हैं वो चीज खाने लायक हो जाती है, वो नहीं खाते वो वर्जित हो जाती है। वो जो नहीं करते वो नहीं करने जैसा हो जाता है, जो करते हैं वो करने जैसा हो जाता है। हाँ, ये आभा है, पूरी प्रकृति उनके साथ चलती है, वो प्रकृति के साथ कैसे चलेगा? हाँ, तो यहाँ ये जो बात है साधक को थोड़ी ध्यान रखनी जरूरी है। इसका गान उच्चारण हो गया है ना, 15 का। हाँ, अब हमारे समस्त जन्मों के जो काम है, क्रोध है, वासनाएं है, और शिवजी विष का पान करते हैं, यानी मेरी वासना का भी पान कर जाएंगे मेरे गुरु? हाँ, कर जाएंगे, पर उसके लिए हमें कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये शिवजी जो है, जो विष पान करने वाले हैं, विष पान करने में सक्षम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मेरे अंतर ही वो शिव है और वो शिव ही वो वासनाओं का पान करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे कैसा होना चाहिए? तो शिवजी कैसे हैं ऐसा समझ लीजिए। तो कहते हैं कि हे ईश्वर, देव और दानव मानव सहित पूरे जगत के ऊपर सिद्धि और विजय हासिल करने वाले कौन है? कौन, किसने सिद्धि हासिल की है? भाई कामदेव ने, काम ने, इच्छा ने, वासना ने, आसक्ति ने, लॉन्गिंग जो कहते हैं ना, डिजायर्स, उन्हें काम कहते हैं। और ये काम का भी जो देव है, वो कामदेव के जो बाण है, वाण है, कामदेव का जो कर्तृत्व है, जिस प्रकार काम प्रवेश करता है, वो सबको लोभ में लगा दे सकता है सिवाय आपके। आपको कामदेव भी प्रभावित नहीं कर सका। हाँ, तो हमें कैसे होने चाहिए? भाई हमारे शिवजी कैसे हैं? मेरा स्वात्मा, मेरा अहम कैसा है? कोई भी प्रकार के प्रलोभन से,
कोई भी प्रकार के विषय से जो लोभान्वित नहीं होता है, जो आकर्षित नहीं होता है, जो पागल नहीं बनता है, वो है शिव। और मुझे ऐसा होना है, ऐसे शिव जी के जो ये प्रशंसा के श्लोक है, इसे अर्थवाद कहते हैं, ये स्तुति है, उससे हमें ऐसे बनने की थोड़ी बनने के लिए हमें उत्सुकता प्रेरक ये सब वाक्य है, हमें ये बनने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। तो कहे वो जो कामदेव जो है वो आपको कुछ भी नहीं कर सके, और हुआ क्या कि जब वो काम आपको पीड़ित करने के लिए आया, बात ऐसी हुई थी, तारकासुर नामक एक राक्षस था, और तारकासुर ने शिवजी को ही आराध्य देव बना के ऐसी उपासना की कि वो अमर होने लगा। और असुर जब अमर हो जाता है, असुर के पास जब शक्ति आ जाती है, तब वो देव को, शुद्ध चित्त अंतकरण वाले व्यक्तियों को ज्यादा परेशान करने लगता है। तो ये जो देवता थे, स्वर्ग आदि देवता थे, मनुष्य लोक में भी, पृथ्वी लोक में भी जो ब्राह्मण आदि देवताएं थे, जो ये ब्राह्मण आदि देवता यानी जो ब्रह्म के वो जानने वाले हैं, वो सभी ही ब्राह्मण हैं, और वो जो सत्व बुद्धि मनुष्य थे, वो सब विष्णु वो भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि तारकासुर जो है वो ज्यादा ही मुझे अभी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसके नाश का कारण अवश्य ढूंढना ही चाहिए। तो कहते हैं कि भाई शिवजी से तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से उसकी शक्ति बढ़ गई है, तो क्या करना है, उनके नाश का कारण क्या है। तो बोले कि शिवजी का जो पुत्र है वो पुत्र से ही ये तारकासुर का नाश होना चाहिए, पर शिवजी के साथ पुत्र की बात ही नहीं की जाती है, बोलेगा कौन। काम की परछाई भी जिसे पहुंच नहीं सकती, उनके लिए पुत्र की विचार करना भी असंभव है। तो अभी क्या किया जाए, तो कहा कि कामदेव जो है, कामदेव को हम प्रार्थना करेंगे कि शिवजी को ये पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करे। और कामदेव ने अपनी विविध चेष्टाओं से शिवजी को प्रेरित करने की कोशिश की, पर तुरंत ही शिवजी को अब ऐसा लगा कि इसको मैं प्रेरित नहीं हो रहा हूं, एक बार दो बार तो इसे पता लग जाना चाहिए कि मैं इसमें उत्सुक नहीं हूं, फिर क्यों ये मुझे परेशान कर रहा है। तीसरा नेत्र खोला और वहीं वो भस्मीभूत हो गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार में भी काम यानी कोई भी प्रकार का यह जो इंद्रिय का विषय है वो काम ही है, और वो प्रलोभन हमारे पास आते हैं। तो वो प्रलोभन जो है क्यों आते हैं, क्यों अखरते हैं, क्यों मुश्किलें हैं, ऐसी बात नहीं है, आ गए तो उसका नाश करना, उसका ध्वंस करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। और ऐसे पुरुषार्थ करने वाले हे प्रभु, वो कामदेव स्मरण शेष हो गया, और अब मैं कह रहा हूं कि हकीकत में इंद्रिय जीत जो पुरुष है वो उसका कोई काल में, कोई भी भुवन में तिरस्कार नहीं हो सकता। जो इंद्रिय ज्योत हो गया, यह निष्कामः अकामः आत्मकामः आप्तकामः नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापेति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते क्योंकि निष्काम है। ये निष्कामत्व इतना हम क्यों कहते हैं आपको, अकामत्व लाना इतना क्यों कहते हैं, तो ही ये जो प्राण जो है वो उत्क्रमण नहीं करेंगे, उत्क्रमण करके कोई गर्भ में संक्रमण भी नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, जैसे वो जल का बिंदु संभाल के रखा तो क्या हुआ, समुद्र में डाला तो समुद्र बन गया। इसी प्रकार ये जो जीव जो है उसको शुद्ध रख के, काम वासनादि से, अशुद्धिया से परे रख के, परब्रह्म के विचार में, परब्रह्म के स्मरण में, सत्संग में डाल दिया, उनकी बातों में डाल दिया, तो क्या होगा, वो ब्रह्म ही अंतिम बन जाता है। अब ऐसे जो परमात्मा थे, ऐसे शिवजी हैं, अब उनके तांडव नृत्य की बात करते हैं।

सत्त सृष्टि। सृष्टि का तांडव याने क्या? देखिए, तांडव याने नृत्य तो कर्तृत्व आ गया, तो यहां क्या बताते हैं? प्रतीकात्मक, सब कुछ प्रतीकात्मक है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है परमात्मा आप ही है। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानी जीवंती। तांडव करते रहे तो करते ही रहे, कि अभी तक तांडव करते हैं? नहीं। हाँ, वो उनकी एक आभा है, एक झलक है। जैसे ये सूर्य है, आप उदयपुर में जाएंगे ऑब्जर्वेटरी में तो आपको दिखाई देगा कि सूर्य जो है वो ज्वालाओं के रूप में है, अनंत ज्वालाएं हैं। और उसमें वो देखने के लिए क्यों जाते हैं? वो टेलीस्कोप से देखते हैं क्या? वो लोग हमें दिखाते हैं, पर उसका इमेज दिखाते हैं। डायरेक्ट तो आप देख नहीं सकते, आंख को नुकसान होता है। तो हर थोड़ी सेकंड में सूर्य में से बहुत बड़ी ज्वाला निकलती है। वो दिखती है इतनी टेलीस्कोप में, पर बहुत बड़ी ज्वालाएं ऐसे निकल के छूट के चली जाती है बाहर निकल। वो गैसेस है, वो निकल के ज्वालाएं छूट के चली जाती है। तो सूर्य में से ज्वाला का निकलना वो सूर्य का कर्म नहीं है, वो सहज तरीके से सूर्य है तो ज्वालाएं का निकलना हो जाता है। ऐसे ये शिवजी है तो तांडव हो जाता है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कार्य अपने आप सहजता से बताया है। देखिए, ये नृत्य की बात ही यहाँ क्यों की? क्योंकि देखिए, यहां से आपको वहां चलना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नृत्य के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है। वो नृत्य, नृत्य एक ऐसी चीज है जो भीतर से उठती है, अपने आप हो जाती है। वो किया गया नृत्य की बात नहीं है, नृत्य यानी हो जाता है। हाँ, भक्ति हो जाती है, भजन गाते हैं हो जाता है, भजन गाने की चेष्टा नहीं करनी है, गाया जाता है, अपने आप निकल जाए। ये क्या है? नृत्य यानी स्वयं स्फुरित है, उसके पहले विचार नहीं करना पड़ता है। हा? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। चैतन्य महाप्रभु भी दौड़ रहे थे। तो ये हो जाता है अपने आप। नृत्य की बात इसलिए की कि ये एक ही ऐसी अवस्था है जो स्वयं स्फुरित है, अपने आप हो जाती है। यानी परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आप करते नहीं है, आपसे हो जाती है। ये एक आपका भाव है, ये आपकी एक भंगिमा है। और वो नृत्य को हम क्या करते हैं? नृत्य को जाना जाता है, उसे जस्ट यू हैव टू एंजॉय दैट। नृत्य का आनंद लिया जाता है। जो नृत्य नहीं करता वो भी नृत्य का आनंद ले सकता है। ऐसे परमात्मा में से ये जो सृष्टि हो गई है उसमें आप जो अस्थि भाति प्रिय रूप अनुस्यूत है, वो आनंद ही हमें प्राप्त करना है। ये भीतर का जो शिव है वो ही भीतर से नाचने लगता है, डोलने लगता है। तो आपका तांडव नृत्य कैसा है? हे भगवान, संधि काल में जगत के भक्षण करने की इच्छा रख के जिस राक्षस ने अपने तांडव नृत्य से, वो राक्षस को अपने संधि काल जो है, देखिए कोई भी स्तोत्र दे, हमारे सुबह उठ के हम क्यों दीप बत्ती जलाते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, और शाम को भी? संधि काल जो है, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र युक्ताम, ये शिव तांडव स्तोत्र में भी लिखा है, प्रदोष समय उसे कहते हैं। यश शंभु पूजति प्रदोष समय। तो प्रदोष समय संधि काल में जो है, इसमें कोई डरने वाली भी बात नहीं है, चिंता भी मत करना, पर सबका अपना अपना एक काल होता है ना। तो संधि काल में ये तमस गुण जो है वो ज्यादा थोड़ा रहता है। हा? तो उसमें जो राक्षस भाव जो है, दानव जो है, वो थोड़े ज्यादा शक्तिवान शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे आपकी सोलर पैनल है, हाँ, अपने टेरेस के ऊपर लगा दी तो वो शक्तिवान कब हो जाएगी? एकदम ज्यादा सूर्य के प्रकाश में। और रात को क्या होगा? उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ऐसे ये जो जीव भाव जो है, हाँ, ये जीव भाव के ऊपर पूरा अज्ञान का लेप हो गया तो उसके ऊपर जब ये प्रभाव पड़ती है ब्रह्म की, तो वो क्या होता है? वो दानव के रूप में कार्यान्वित होते हैं। ये जीव भाव है उसके ऊपर ये ज्ञान आ गया। अगर आपके पास आत्मज्ञान है, ये शिव का नाम एक भी बार, परमात्मा का नाम एक भी बार उच्चारण मुख से कर लिया, तो प्रदोष समय आपको नुकसान नहीं करेगा। यानी अभी उसकी चिंता छोड़ के जो हमें
समझना है वो समझ लीजिए। तो यहाँ कहते हैं कि प्रदोष काल में हे परमात्मा, ये जगत को आपके भक्तों को परेशान करने वाले जो राक्षस हैं, वो राक्षस को आपके तांडव की एक ही थाप हो गई ना, तो पूरा जगत, आपने वो राक्षस को डराने के लिए तांडव शुरू किया, पर ये जो आपकी एक पैर भी के भी जो हलन चलन जो क्रिया हुई, उससे तीनों धरती भी इतनी डर गई, धरती माँ भी डर गए, और तीनों भुवन, तीनों जो ये ब्रह्मांड जो है, ये 14 लोग, ये सब समस्त ब्रह्मांड जो है वो जाने की डर गया, सहमा गया कि पूरे ब्रह्मांड का आपके पादाघातात मही पादाघातात व्रजति सहसा संशय पदम, ऐसे संशय हो गया कि मानो ये सबका नाश होने वाला है, यानी आपका जो नृत्य है वो जगत की रक्षा के लिए है। हमने परमात्मा, हमने गुरु चरण की अगर उसमें शरणागति स्वीकार कर ली, तो अपनी रक्षा जो है वो गुरु ही करते हैं, वो शिव ही करते हैं, वो गुरु की समक्ष, गुरु और शिव एक ही है, ऐसे गुरुजन हमारी रक्षा करते ही हैं, फिर तांडव हमें करने की जरूर नहीं है। वो गुरुजन जो है, ये तांडव यानी कैसे तांडव करते हैं, अपनी आंखों से देख लिया, वाणी से कुछ शब्द बोल दिया और हमारी रक्षा हो जाती है। ऐसे अभी पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ये विष वाले संसार में मुझे अभी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने आपका शरण ले लिया है, और आपके एक तांडव की थाप पूरे ब्रह्मांड को अगर डुला सकती है, भयान्वित कर सकती है, तो मेरा ये जो पाप, मेरे मुझे जो परेशान करने आ रहे हैं, जो कोई भी दानव, दानव यानी ये विचार रूपी दानव, विचार आ जाते हैं, तामसिक विचार यानी प्रमाद रूपी, ये प्रमाद ही दानव है। आत्म साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ न करना, प्रमाद करना, यही दानव है, और ये दानव को भगाने वाले आप हैं, वही तांडव है। आपके पैर के आघात से पृथ्वी अचानक दब गई, ऐसे संदेह में आ गई, और आकाश में ऐसे ऐसे घूम रहे आपके जो हाथ है, वो हाथ से आकाश भी विकंपित होने लगा कि अब मेरा भी नाश निश्चित है। नक्षत्र का समूह जो है वो जाने की टूट पड़ा ऐसा लगता है। आपकी जटा जो है, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र क्षेत्र रति प्रतिक्षण। एक क्षण के लिए ये परमात्मा के अंदर रति हो गई ना, तो काम बन जाएगा। ये जटा आपकी कैसी है, कटाह के समान है, बहुत बड़ी कथरोट होती है ना, उसके समान ये जटा है, उसके अंदर से घुमड़ घुमड़ के गंगा जी आ रही है, और उनका इतना प्रवाह है, वो प्रवाह भी सहन करने योग्य, अभी भी आप जाए तो गंगा जी का प्रवाह वही है, क्योंकि वो जटा में से आ रही है, और उसमें नाद कौन सा है, आपकी जटा जब फिरती है पूरे ब्रह्मांड में, तो धगत धगत धगत ऐसे आवाज ऊपर से आ रही है, हे प्रभुता, हे परमेश्वर। ये प्रभुता जो है वो प्रतिकूल ही है, यानी परमात्मा और गुरुजनों से कुछ भी होता है, उनके तरफ से जो कुछ भी आता है, लगता है कि टूट जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो भी प्रतिकूल है। आपके हे गुरु, गुरु के पास इतनी शरणागति से जाना कि आप बर्बाद भी कर देना तो भी मेरे लिए वो अच्छा है, वो प्रतिकूल है, बस इतना ही समझ लेंगे तो हमारा जीवन जिया हुआ सार्थक हो जाएगा। अभी एक मैं श्लोक लूंगी, उसका भाषांतर, और फिर मैं प्रवचन समाप्त करूंगी।

0: ಪಾರಂ ಜಲಧಿ ವಲಯಂ ತೇನ ಕೃತಮಿತ್ ಅನೇನೇವೋ ನೇಯಂ ಧೃತಮಹಿಮದಿವ್ಯಂ ತವ ವಪುಃ.
1: ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಬತಾ ರಹೆ ಹೈ ये जो शिवजी के ऊपर जो गंगा जी है, हमें लगती है कि गंगा जी का प्रवाह बड़ा है, पर शिवजी के ऊपर मानो एक पानी का एक बिंदु है ना, ऐसे पूरे गंगा जी है. इतना विराट उनका स्वरूप है, आकाश में फैले हुए जो वो गंगा जी का प्रवाह गटा में फिर रहा है, तो बुदबुदे फैन भी होगी ना, फैन और बुदबुद जो होते हैं वो पूरी आकाश की जितने तारा गण है, पूरी आकाश गंगा है, वो कांति, वो आकाश गंगा की कांति को हरण करने वाली आपके जटा के भीतर बैठे हुए गंगा जी का प्रवाह जो है, पूरे आकाश गंगा की जो प्रभा है उसका भी वो हरण कर रहे हैं. यानी सूर्य के पास एक दीपक है, ऐसे ये गंगा जी का प्रवाह जो है ये उतना उत्कट और प्रकाशमय है, क्योंकि आप प्रकाश पुंज है, आपका प्रकाश वो गंगा जी में से निकल रहा है. वो जल का प्रवाह है जो आपके मस्तक के ऊपर है, वो इतना छोटा दिख रहा है. ये जल प्रवाह समुद्र रूप, यानी कि देखिए ये परमात्मा का प्रवाह कैसा है, समुद्र के ऊपर, समुद्र रूप पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो समुद्र है वो जाने के कंदोरा हो आपके लिए. परमात्मा यानी पूरी विराट पृथ्वी, और वो पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसे कंदोरा बांध देते हैं, वो एक प्रकार का एक पहनने की जो सुवर्ण का होता है, चेन जैसा होता है, ये जो कंदोरा जाने के डाल लिया, ऐसे ये प्रवाह में से जो गंगा निकली, ये जो जल की उत्पत्ति जो हुई, ये पूरे समुद्र रूप जैसे कि आपने एक पहन लिया हो कंदोरा, ऐसे ये लग रहा है. यानी कि आप परमात्मा को, आप परमात्मा इतने व्यापक है तो भी आपके पास व्यापक से व्यापक चीज भी जो है वो कम और छोटी ही लगती है. इतने बड़े दिव्य देह के महिमा को तव वपुहु आप धारण किए हुए हैं, उसका अनुमान भी हे परमात्मा नहीं कर सकता. आपका जितना अनुमान करूं, पक्षी आकाश का अनुमान कितना लगा सकता है, उड़ता है तो भी आकाश का अनुमान नहीं लगा सकता, तो हम धरा पे बैठे हुए आकाश का अनुमान नहीं लगा सकते. ऐसे अनंत महिमा वाले हे परमात्मा आपकी मैं स्तुति करता हूँ, आपको रिझा रहा हूँ. याद रखना आज के प्रवचन में एक ही बात याद रखना कि जो शिव निर्माल्य जिस जो समर्पित है, हाँ, उसका हाथ पकड़ के आप तर जाना, उसके लिए कुछ भी काया वाचा मनसा कुछ भी नहीं बोलना. आपको नहीं ठीक लगे तो मुंह फिरा के चले जाना अच्छा है, पर कभी भी ऐसा उल्लंघन नहीं करना. ये स्तुति मुझे और आपको रचनी पड़ी तो क्या होगा, है इतने शब्द अपने पास, है इतना प्रेम शिव के लिए, और अगर जवाब ना में आए तो क्या रास्ता है, वो आपको हमने बता दिया है. इसी प्रकार गुरुजन और शिवजी की कृपा हमारे ऊपर बने रहे, ऐसी ही प्रार्थना के साथ और विराम मैं शांति पाठ करूंगी. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते.

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: ஓம் நமஸ் சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஓர் யோகிக் அர்த்த எதி சோம் கா லியா ஜாய் தோ சோம் கோ கியா கா கயா? உமா சஹேதம் இதி சோம். கியா கா? உமா சஹேதம் இதி சோம. तो बनता तो सोम, लेकिन ह्रस्व कर देते, ग्रामर का नियम है, तो सोम रह जाता. तो सोम शब्द किसका वाचक है? भगवान शिव का भी वाचक है, चंद्रमा का वाचक भी है, रस विशेष का वाचक भी है, विष्णु का भी वाचक संकेत करते हैं. और वही किसका वाचक है? भगवान शिव का भी वाचक, माने परमात्मा का, शक्ति विशिष्ट का. ये नाम तो प्रसंग के अनुसार दे दिए गए, लेकिन वह शक्ति विशिष्ट का वाचक है, अर्थात जो व्यापक शक्ति. तो और श्रुति क्या सृष्टि की प्रक्रिया में संकेत करती है? तो कहने लगे, मायाम तू प्रकृतिम विद्धि. क्या कहती है? मायाम तू प्रकृतिम विद्धि और मायनम तू महेश्वरम. माया क्या है? क्या प्रकृति को ही माया कहते, और जो प्रकृति वाला है उसे क्या कहते हो? माया वाला है उसे क्या कहते? कहा महान ईश्वर. महेश्वर का मतलब महान ईश्वर, केवल शिवई मात्र से मतलब नहीं, महान ईश्वर, महान ईशन करने वाला, महान शासन करने वाला, माने उरुक्रम कह दो, वहां वहां महान शासन करने वाला, महान व्यवस्था देने वाला. और कैसे करता? तो फिर आगे उसका संकेत कर दिया कि जब वो प्रकृति से समन्वित होता है तो क्या है? सत्व रज और तम प्रकृति के धर्मों को लेकर के ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि की सृष्टि करता है, है? लोहित शुक्लाम कृष्णाम वह भी प्रजा सृजमान, और फिर उससे नाना प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति होती. ये भी वहां संकेत किया. तो श्रुति का भी वही तात्पर्य वहां पर भी मिलता है. तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि, और तुलसीदास ने बड़ी सरल भाषा में लिख दिया, उसी सोम को बतलाते, क्या कहा? अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा सम्व अर्धंग निवास. अज है, अनादि है, ऐसी वो शक्ति है, और कहां रहती है? आश्रय किसका लेती है? तो कहने लगे, उसी परमात्मा का. और माया भी कहां रहती? माया भी आश्रय उसी ब्रह्म शब्द में दे देते हैं दार्शनिक, उसी शक्ति का आश्रय जो है माया लेती है. और विषय भी किसी किसको करती है? का उसी को करती है. सब शब्द कर दिया. तो इसलिए यहां संकेत ऋषि कर रहा है. जब इस प्रकार से अंतःकरण शुद्ध होते हुए क्रम से आगे बढ़ता है, तब ऋषि ने संकेत किया कि ऐसी जो व्यापक शक्ति है, ऐसी वह व्यापक शक्ति क्या करे? तो कहने लगी, वह जिसका महान क्रम है वह ही मेरे लिए सम करे, माने मेरे लिए सुख की पूर्ति, मेरी न्यूनता की पूर्ति करे, मुझे पूर्णत्व प्रदान करे. ये जो है प्रार्थना ऋषि कर रहा है. और यही भगवान श्री कृष्ण ने तो विलक्षण कार्य ही किया, शायद ऐसा कोई कर भी नहीं सकता. सारी श्रुतियों के सिद्धांत को निचोड़ करके और एक छोटे से गीता में रख दिया, और उन्होंने इसी बात को कहा. क्या कहा? अंधाद भवंति परजन्य, है ना? परजन्य शब्द का भी अर्थ क्या? पर शब्द है, आगे जन्य शब्द है, है ना? तो परजन्य का मतलब सीधा तो हम वृष्टि अर्थ ले लेते हैं, लेकिन परजन्य शब्द का अर्थ है जो पूर्णता प्रदान करने वाला. क्या करने वाला है? जीवन देने वाला, पूर्णता प्रदान करने वाला. ये भी पर उपसर्ग है, आगे जन्य शब्द है. तो परजन्य अर्थात जो हमारे अंदर पूर्णता प्रदान करे, उसी का नाम भी परजन्य शब्द है. इसलिए सारी औषधियों वनस्पतियों को पूर्ण करने वाला, जीवन देने वाला कौन है? कहा, वही जल है. और वो जल क्या है? इसलिए कहीं कहीं श्रुति में कह दिया, क्या? एको सलिलो दृष्टा. वो क्या है? उसे उपमित किया तो क्या कहा? को जल के समान एक है, सलिल के समान एक, ये संकेत कर दिया. तो इस प्रकार से यहां पर ये बतला रहे हैं. भगवान ने भी कहा कि यदि उसे प्राप्त करना चाहते हो, मुझे मानव जीवन की सार्थकता प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हो, तो तृतीय अध्याय कर्म विषय का अध्याय है, कर्मयोग का लेकर के भी, और इतनी सुंदर चर्चा भगवान ने कर दी। और क्या कहा? कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। और कहा अन्न कहाँ से होता? तो यज्ञ शब्द की कह दी। यज्ञ कहां से होता? तो कर्म कह दिया। कर्म कहां से होता? तो कहा ब्रह्मबोध भवम विद्धि, ब्रह्म से होता। ब्रह्म कहां है? तो कहा अक्षर। और अक्षर कहां है? तो कहा यज्ञ प्रतिष्ठितम। एक चक्र का भगवान ने वहां पर निरूपण कर दिया और यज्ञ रूप से निरूपण किया। और क्या कह दिया? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। लौकिक जितने तक हमारी अभिस्तार और उसके अनुसार प्रयत्न होगा तब तक हम बंधन से छूट सकते नहीं, तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन यज्ञार्थ कर्म जब होगा तो कहने लगे उसका फल अन्यत्र। और फिर फलितार्थ क्या दे दिया? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयती यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स। किसका जन्म व्यर्थ है? ध्यान तुम, शास्त्र वो चीज हमारे लिए मानव के लिए कहते हैं, शास्त्र है ही शासन करने वाला, हमको अनुशिष्ट बनाने वाला। तो माने वह उसका जीवन ही व्यर्थ है। किसका? सब कुछ तो संसार में प्राप्त कर लिया लेकिन क्या नहीं, यज्ञ जीवन में नहीं आया। और ये जब जो जीवन में नहीं आया उस तो कहने लगे ये कैसे आएगा? तो कहा जो परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा ने जो एक चक्र बनाया उस चक्र के अनुसार ही आप भी अनुवर्तन करो। और ये अनुवर्तन यदि करोगे तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। और यदि इसका अनुवर्तन नहीं करते हो तो जीवन सार्थक नहीं। तब तो क्या है? अघायुरिंद्रियाराम, इंद्रिया में को लेकर के ही आप जीवन को समझने वाले हो, तब तक तो जो है आपकी व्यर्थ में आयु गमा रहे हो, तब आपकी आयु की अर्थात आपकी मानवता की सार्थकता नहीं। ये संकेत भगवान ने कर दिया और उसको सरलता से समझाने के लिए कह दिया है, माने जो देवता लोग हमारे लिए प्रदान करते हैं तो हम क्या करें? कहा उन देवताओं के प्रति भावना बना। देवान देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतवा परस्पर भावयंता श्रेय परम। ये संकेत किया। क्यों? पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता है, सूर्यो देवता बोलते, पृथ्वी को भी देवता का। पृथ्वी क्या करती है? विचार करो, पृथ्वी हमें देती है। क्या देती? आश्रय भी देती, भोजन भी देती, तो सब कुछ देने वाली कौन है? पृथ्वी। जो हमें सब कुछ देने वाली है और हम उसे क्या देते? तो हमारी कृतज्ञता तो कम से कम होनी चाहिए, आभार तो व्यक्त होना चाहिए, है ना? तो पृथ्वी हमें सब कुछ दे रही है तो पृथ्वी के प्रति भी हमारी कर्तव्यता है। और बड़ी विलक्षण बात है, हमारे दुर्गुणों को, हमारे दोषों को ग्रहण करने वाली कौन है? पृथ्वी। हम जितनी गंदगी कीचड़ आदि पृथ्वी में डाल देते हैं, गंदा जल गंदा पदार्थ, लेकिन पृथ्वी क्या करती? सबको शोध करके, ध्यान दो, सबको फिल्टर कर देती है और पुनः पवित्र कर देती। ये विशेषता किसमें है? पृथ्वी के अंतर्गत, जिसे हम जड़ कहते हैं। लेकिन वो पृथ्वी सबका शोधन करके और फिर हमें पवित्र रूप में प्रदान कर देती। तो इस प्रकार से जब पृथ्वी इतना सुंदर कार्य कर देती है कि सारी गंदगी को स्वीकार कर लेती है, हमारे दोषों को, हमारे दुर्गुणों को, हमारे दुखों को ग्रहण करके और उन्हें शुद्ध करके हमें प्रदान कर दे। इसलिए ही विशिष्ट देवताओं के लिए यहां कहा गया सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्णिमा, क्योंकि इन देवताओं के अंतर्गत विशेष एक एक गुण लेकर के जो है सामर्थ्य है और अंत में जो है सर्वशक्तिमान जो है उसके प्रति प्रार्थना की गई कि वो हमारे लिए क्या करे? शंकर होती माने शमन करे, अर्थात वो बल हमारे में दे। वो बल हमारे में जब आएगा तो हम जो है प्रयत्न करने में समर्थ होंगे। और बलवी तो इससे पहले बृहस्पति करके ज्ञान कह दिया, ज्ञान हो और ज्ञान में आरूढ़ होने की सामर्थ्य हो, अपने संकल्प में दृढ़ हो। और जब ये दृढ़ता आती है तभी जाकर के हम उसकी प्राप्ति कर पाते हैं और ये नहीं आती है तो वो हमें प्राप्त भी नहीं। इसलिए उस चाहे आप सहनाव वतु ले लें और चाहे यहां जो अंत में कहेंगे हैं कहा करो, कहा उस वक्ता की रक्षा करो और मेरी रक्षा करो। क्यों? वक्ता क्या करेगा? कहने लगे वो चीज हमें बतलाएगा, वो सिखाएगा, उसका जो है संस्कार हमारे में देगा। इसलिए श्रुति भी कहती है आचार्याधीव विद्या प्रतिष्ठिता। विद्या प्रतिष्ठित कब होती है? कहने लगी आचार्य के द्वारा। अब आचार्य का द्वार का मतलब क्या है? केवल शब्द और अर्थ को लेकर के नहीं, आचार्य शब्द का तात्पर्य क्या है तो वहां संकेत किया आचिनोति शास्त्राण इति आचार्य। जिसने शास्त्र को अच्छी तरह से चयन कर लिया है, चुन लिया है, आत्मसात कर लिया और आत्मसात करके वह जब हमें शास्त्र दे तो कैसा करा दे? हमें भी आत्मसात करा दे। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी होता ना, पक्षी, पक्षी क्या करता? किसान खेत काट लेता और खेत काटने पर जब खेत पक जाता है तो उसकी फसल में काटते समय कुछ न कुछ जो है उस अन्न के कण उसमें गिर जाते और जब गिर जाते हैं तो मिट्टी और कचड़े में पत्तों में मिल जाते तो उन्हें किसान उठाता नहीं क्योंकि बहुत समय लगेगा, इतना समय बर्बाद नहीं करना। तो पक्षी जाकर के क्या करते? उस कचड़े में से उस दाने को चुन लेते और चुन के स्वयं भी आत्मसात करते और क्या करते? उसको लाकर के अपने बच्चे को देते क्योंकि उसके प्रति हित की कामना है। ऐसे ही जहां पर श्रोता वक्ता में भी ये स्थिति होती है, इसलिए तुलसीदास ने लिखा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूंज। वो आचार्य क्या? जिस आचार्य ने उन शास्त्र के अंतर्गत कर्म उपासना और नाना प्रकार के व्यवहारिक धर्म आदि सभी चर्चाएं शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होती, लेकिन उसमें जो सिद्धांत है, उसमें जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य को उस शास्त्र में से जिसने चयन कर लिया है और उसमें निष्ठा, आत्मसात का मतलब है तद निष्ठा वाला, और ऐसी निष्ठा वाला हो गया है तो उसकी जब रक्षा होगी तो वो जो है जैसे पक्षी देता है वैसे ही वह वक्ता जो है श्रोता को भी देगा तो श्रोता की भी रक्षा हो जाएगी। ये संकेत किया गया तो आगे संकेत करेंगे इसका। इसलिए ही वहां वक्ता और श्रोता की रक्षा के लिए श्रुति में बार बार संकेत भी किया। तो यहां पर जो ये संकेत कर दिया गया कि वह मने शन्नो विष्णु रुक्रम। अब इसका तात्पर्य हमारी समझ में आना चाहिए कि विष्णु शब्द कह करके व्यापक शक्ति का निर्देशन किया और व्यापक शक्ति का निर्देशन करते हुए कहा कि उसकी महान व्यवस्था है, उस महान व्यवस्था में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो भी सर्दी गर्मी सृष्टि का होना न होना लय करना आदि सब उसी के क्रम में है और वो ये जब सब कर रहा है तो उसकी जब हम शरण लेंगे तो ये जो चक्र चल रहा है इस चक्र से हम निवृत्त हो जाए। संकेत इसी को सरल भाषा में क्या कह दिया? दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुर्गत। क्योंकि प्रकृति को लेकर के तो सृष्टि हुई, चक्र ये कब बना? प्रकृति को लेकर। अब कहने लगे यह जो है कैसी माया है? कहा अन्यत नहीं, ये दैवी, देव से ही होने वाली है, देव के बगैर इस माया की कोई सत्ता नहीं। ठीक है, तो दैवी हेसा यह जो माया है वो कैसी है? कहा दैवी है, दैवी ऐसा है और कैसी है? गुणमयी। ये उस गुण उसके अपने धर्म गुणमयी। और कहने लगे ये किसकी है? कहा मेरी। ये फिर ये भी कह दिया कैसी है? दुरत्तया, बड़ी दुष्कर है, इसको पार करना बड़ा कठिन। लेकिन फिर क्या कह दिया है? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम माम एव, मुझको ही अन्यत्र नहीं, मेरे को ही क्या करते हैं? प्रपद्यते, प्रकृष्ट रूप से हमारे प्रपदों के पास में आ जाते हैं, हमारे प्रपदों को पकड़ लेते हैं तो क्या होता? तो माया में ताम तरंतते, मछुआरा जाल लेके चलता है और जाल लेके चलता है तो जो मछलियां जाल को देख करके आगे उससे बचने के लिए भागती हैं वो जरूर पकड़ में आ जाती, और जो उसके पैरों पर आ जाती तो जाल आगे चला जाता, वो उसके पैरों पर रहती वो सदा बच जाती है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब ऐसी शक्ति का हम जो है पद ग्रहण कर लेते हैं और पद का मतलब ये है पद्यते गम्यते इति पादः। भगवान के चार पैदों की चर्चा की, चार पाद नहीं, पाद का मतलब है जिसके द्वारा वहां तक पहुंचा जाए, ठीक है। इसलिए इसे मात्रा भी कह दिया, मन जिसके द्वारा उसको मापा जाए, जिसके द्वारा उसको अनुमान किया जाए, जिसके द्वारा उसका ज्ञान किया जाए, ये सब संकेत किए गए। तो इस प्रकार से जो हम ग्रहण कर लेते हैं तो उससे जो है क्या होता है कि हमारा कल्याण हो जाता, हमारे दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हो जाती। तो इसलिए यहां संकेत किया कि शनो विष्णु रुक्रम, ऐसे जो विष्णु हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जिनकी जो है माने सारी क्रिया जो है महान है, जिस क्रिया के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति का भी संत लोग व्युत्पत्ति लव्य अर्थ कर देते हैं, प्रकृष्टा कृतिर यस्याः इति प्रकृति, माने श्रेष्ठ है कृति जिसकी, श्रेष्ठ है कार्य जिसका। तो ये संसार चक्र जो है क्या है, उसी का श्रेष्ठ कार्य है, उसी की व्यवस्था है। और ऐसी जो श्रेष्ठ व्यवस्था है, ऐसा जो व्यवस्था वाला है, उसका आश्रय ले लेंगे तो उसकी कृति जो है वो हमें लिपायमान नहीं कर पाए। संकेत, तब जाकर के नम हम कर्माण लिपंती न मे कर्म फले, इस प्रकार ये सारी बात आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर ऐसे उस विष्णु के लिए प्रार्थना की गई, सन्नो विष्णु रुक्रमा, ये शब्द कह दिया, आगे संकेत कर दिया, वायो तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। अब यहां क्या कहा कि वायु तुम जो है वो क्या हो, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आप जानते ही हो, जो हमारी अच्छ शब्द उपलक्षण मात्र है, इंद्रियों के द्वारा होने वाला जितना भी ज्ञान है वो सब ज्ञान क्या कहलाता, प्रत्यक्ष। और जो इंद्रियों से नहीं होता है, शब्द मात्र से होने वाला, उसे अपरोक्ष कह देते। लेकिन अपरोक्ष क्या है, तो अपरोक्ष के लिए कह दिया यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो अपरोक्ष है वही तो ब्रह्म है। जो अपरोक्ष है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वाभावात्, तो उसकी सत्ता से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, तो उसका किस इंद्रिय से संसर्ग होगा, किस इंद्रिय से सहयोग होगा, किस इंद्रिय से जाना जाएगा, वो किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाएगा। शब्द आदि का भी विषय भी नहीं रहता, लेकिन शब्द संकेत करता, लेकिन वो क्या है, स्वयं ही है। तो स्वयं तो सदा अपरोच ही है, उसको लिए जानने की कोई, तो ऐसा जो संकेत, तो वायु जो है वो अपरोच ब्रह्म नहीं है, यह ध्यान रखना। लेकिन कैसा ब्रह्म है, प्रत्यक्ष, क्योंकि सारी गति किससे होती, वायु से होती। इसलिए वायु शब्द का जब अर्थ किया गया तो वायु कैसे बनता है, तो व्याकरण की रीत से वहां बतलाया, वा गंध नयो, धातु से वायु शब्द वात शब्द ये बना, और वहां गंधन शब्द का अर्थ सुगंधी आदि नहीं किया, गंध नयो गंधन शब्द है, उसका अर्थ है प्रतिबंधक की निवृत्ति करने वाला, प्रतिबंधक की निवृत्ति। वायु क्या करता है, यदि आपके अंतर्गत वायु तो जाए और वायु बाहर ना आए तो क्या होगा, अंदर रहने वाला जितना भी माल मसाला है वही रह जाएगा, और वो रह जाएगा तो आपका जीवन जीवन। इसलिए वायु क्या करती, अंदर जाती है और वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि या जो कचरा जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है उसको खींच के लाती और बाहर कर देती, और फिर पुनः शुद्ध वायु भर देती है और पुनः, तो ये वहन करना, ये जीवन का निर्वाह करना, ये कौन कर रहा है, वायु करती। और जो हमारे जीवन के प्रतिबंधक है, जीवनदायिनी शक्ति के प्रतिबंधक है, उनको नाश करती। तो हमारे प्रतिबंधों का जो नाश करे और जो हमारे अनुकूल पदार्थों को हमें दे वो क्या है, वायु। और वो वायु क्या है करती है, ये कार्य देखने में आता, तो ये कैसा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए जीवन देने वाला, गति देने वाला, हमारा प्रवहन करने वाला कौन है, का वायु है। इसलिए वायु क्या है, का वायु ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। इसलिए वायु के ही पर्याय शब्द क्या है, वायु वात हवा ये सब बोलते हो, और हवा शब्द क्या है, तो हवा शब्द भी कैसे बना? तो वहां बतलाते हैं कि बाह शब्द से ही हवा शब्द बन गया, बड़ व्यत्यय कर दिया, उलट दिया, तो वाह से क्या बन गया? का हवा। वही वाह गंध ने धातु से वाह शब्द बना दिया और उसी वाह को उलट दिया तो क्या बन गया? हवा। और हवा क्या करती है? बहाती। हवा क्या करती? माने बहाती। और उसी शब्द से क्या शब्द बना? लोक भाषा के तक हमारे शास्त्रों की गति है। उसी शब्द से एक शब्द आप बोलते हो विवाह। क्या शब्द बना? वाह शब्द से भी उपसर्ग लगा दो क्या बन जाता है? विवाह। तो उसका मतलब क्या हुआ? शादी। अब मतलब हुआ विशेषेण वहत इति विवाह। जो हमारे जीवन को विशेष रूप से प्रवाहित करे उसका नाम क्या हो गया? विवाह। जिसे हम विवाह समझते वो विवाह का अर्थ नहीं है। शास्त्र इन शब्दों के अर्थों को बतलाता है। हमारे जीवन की सरता सुख रूप से प्रवाहित हो, शुद्ध रूप से प्रवाहित हो, तो उसका नाम है विवाह। तो उसी वाह धातु से बनता है, इसलिए वहां संकेत कर दिया गया है विवाहो योगार्थम न तु विलासार्थम। विवाह किसके लिए? योगार्थ के लिए। ये सब संकेत किए लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मूल शब्द ये है कि हवा क्या करती है? हमारे जीवन को गति देती। इसलिए उसे कहा तू ही क्या है? प्रत्यक्ष ब्रह्म है। वायो तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी। तुम हवा, तुम जो है प्रतिबंधकों का नाश करके और एक गति प्रदान करने वाले हो, एक जीवन की सरता को बहाने वाले हो, इसलिए वायु तुम ही क्या हो? प्रत्यक्ष ब्रह्म। लेकिन वायु में गति कहां से आई? तो ये कह चुके हैं तद भयाद वातो पवती। उसका भी मूल कौन है? और इतना ही नहीं, हम जो बोलते हैं ये बोलना कब होता है? तो वाणी के चार रूप बतलाए हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ये वाणी कब उच्चरित होती? वैखरी का मतलब सीधा सा ये है कि जो बाहर आकर के बिखर जाए, फैल जाए, उसी का नाम क्या हो गया? वैखरी। और मध्यमा का मतलब है जिन गले, कंठ कह दो और तालु, दंत, ओष्ठ आदियों के अविघात से, अर्थात इसमें वायु का स्पंदन होता है, तब क्या होता है? वर्ण का उच्चारण, शब्द का उच्चारण होता है ना। जैसे पवर्ण बोलना चाहो तो पवर्ण आप कब बोल पाओगे? जब वायु आपकी अंदर से आकर के ओठों से टकराएगी तभी पका उच्चारण कर सकते हैं, प, फ इत्यादि। और यदि इनसे उच्चारण न हो, इनसे वायु न टकराए तो क्या पका उच्चारण हो जाए? जैसे आ का उच्चारण करते तो आ का तो आपने कंठ खोल दिया के तो उसका आ का उच्चारण हो जाए, का का उच्चारण हो जाए। लेकिन पका उच्चारण जो है बगैर ओठों से वायु टकराए हुए हो सकता। और र बोलना हो, री बोलना हो तो तालु में जाकर के जिह्वा वायु का स्पंदन कराएगी तब उसका उच्चारण होगा, है ना। सब बोलना हो तो दांतों से वायु टकराएगी तब उसका उच्चारण होगा, वरना हो सकता नहीं। तो अब ये जो वायु आकर के ये क्रिया कौन कराने वाली? वायु। और जब वो बाहर शब्द हो गया उच्चरित होकर के, अविघातित होकर के, तो उसको वैखरी वाणी कह दिया। लेकिन जब तक वह कंठ से और नाभि के मध्य तक वह वायु रही तब तक उसे क्या कहा? मध्यम। लेकिन वहीं पर नाभि स्थल में आपने उस शब्द का नक्शा बना लिया, तो उस नक्शा बनाने का मतलब क्या है? माने वो सोच लेना, विचार कर लेना, तो उसी को क्या कहते हो? पश्यंती। पश्यंती नाम क्यों देगा? माने उसे देखा, अर्थात उसका विचार आया तो उसे पश्यंती कही। लेकिन ये पश्यंती भी कब होगी, किसके बल से होगी? तो कहने लगे ये तो नाभि देश से होगी। मूलाधार के अंतर्गत ही जो वायु विद्यमान है, आत्म रूप से विद्यमान है, वह जो है वही है परावाणी, इसलिए उसे कहते हो परावाणी। लेकिन इस सारे वायु का प्रकट रूप कब होता है? जो हम एक दूसरे तक भावों का आदान प्रदान करते, प्रवाह करते हैं, ये कब होता है? का ये तब होता है वहां से जब वायु उसका जो है उस शब्द को, उस विचार को स्पंदित करते हुए और लाती है और बाहर बिखेरती। तो इसलिए वायु क्या करती? प्रवाह करने वाली। सारे प्रतिबंधकों को हटा करके वायु जो है हमको जीवन देती है, हमारे व्यवहार में प्रवाह देती है। इसलिए प्रवाह देने के कारण वायु की विशेषता है, इसलिए वायु को ही क्या कहा गया, वायो तुमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। वायु तुम क्या हो, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, वास्तव में ब्रह्म नहीं है लेकिन फिर भी वायु को क्यों कह दिया, तो ये सारे कार्य वायु के द्वारा होते हैं, इसलिए कहा वायु तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तो वायु तुमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम है, तो तुम ही प्रत्यक्ष हो, इसलिए तुमको क्या कहेंगे, आगे कह दिया ऋत कहेंगे, है ऋतम वदिष्यामि, तो त्वामेव ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्ही को ब्रह्म कहेंगे, और कैसा ब्रह्म कहेंगे, तो ऋत ब्रह्म, तुम ही कैसे ब्रह्म हो, का ऋत ब्रह्म हो। और ऋत का मतलब है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो सत्य अर्थ है उसको ही ऋत शब्द से कहते हैं। और वो शास्त्र का प्रतिपादन कब होगा, जब जीवन होगा, वायु के बगैर होगा नहीं, तो इसलिए उसे कहा कि वह ऋत जो ब्रह्म है शास्त्र के द्वारा उसमें सहयोगी आप हैं, तो इसलिए आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, और शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो सत्य है उसका जो है आपके बल से होने वाला है, इसलिए ऋत भी वही है, उस मने सत्य वह है, उस सत्य को तक पहुंचाने वाले आप हैं सहयोगी, इसलिए ऋतम वदिष्यामि, फिर आगे सत्यम वदिष्यामि, ये सब कहा, तुमको ये सत्य कहूंगा, ये सारी चर्चा की गई। अब आगे चर्चा अपने कल करेंगे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Aur ye char keel hain wahan. Wo Gita mujhe shlok puri yaad nahi ho rahi hai. நச்ச மாம் யோபியசூயதி, நச்ச வாச்சியம், நச்ச சுஸ்ரூ சவே வாச்சியம், நச்ச மாம் யோபியசூயதி. तो वो चार कीलक के बाद गीता पढ़ोगे तभी वह रहस्य प्रकट होगा. तो श्रुति में कभी भी आलस्यता नहीं. तीसरी बात, ईश्वर अनुग्रहणा भी, ईश्वर का अनुग्रह होनी चाहिए. और हम तो जो भी शुभ कर्म करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, नित्य निमित्त आदि कर्म करते हैं, उसमें ईश्वर प्रसन्नता की बात ही नहीं आती है. ईश्वर प्रसन्नता की बात नहीं आती है. वहां पर भी वही विषय की कामना आती है, विषय मन में विषय की ही भावना, वही संसार और सांसारिक पदार्थों की ही चाहना हो. भगवान का दर्शन किया, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मने सुखी राख जो, फलाने ने सुखी राख जो, एम कर दो, तेम कर जो, ले जी, ये संसार की है. अब तुम सुखी कैसे रहना चाहते हो? कोई ये नहीं कहता कि तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं जो हूं जैसा हूं प्रसन्न हो जाओ, ये नहीं कहता है. तो ये जो ईश्वर श्रुति और आचार्य की कृपा जब होती है, तब उस सोए हुए व्यक्ति को ये तीन मिलकर जगा देते हैं. और चौथी बात तो बता दिया, योगाभ्यास है. ये चार व्यक्ति उठाते हो हमको, एक आदमी से उठाने से नहीं उठने वाले हैं हम, इतने जबरे हैं. मुर्दा तो नहीं उठता है, हम जिंदे कैसे उठेंगे भाई? मुर्दा उठता है एक आदमी से? एक आदमी से उठाने पर, एक आदमी उठाने पर मुर्दा उठेगा? मुर्दा तो नहीं उठता एक आदमी से, हम जिंदे कैसे उठेंगे एक आदमी से? हम इतने जबरे हैं कि चार आदमी उठाना पड़ता है, मुर्दे को भी चार आदमी उठाना पड़ता है, तभी वो मुर्दा उठता है. श्रुति, आचार्य, ईश्वर और योग अभ्यास. तो हमने योग का कल संकेत किया ही था, निधिध्यासन ही योग है. निधिध्यासन, एक चित्ता, जो श्रवण किया हुआ है उसमें एक चित्तता, ये अभ्यास, ये योग है यहां राजयोग. और वो तुम्हें उठाने में, जगाने में समर्थ है. तब तुम जगते हो तो तब क्या होता है, जैसे खाने से पहले का भोजन सबको इदम इदम इदम, नाहम नाहम नाहम, कटोरी के सब्जी को पूछो ये तुम हो तो तुम कहोगे स्पष्ट कि नहीं, ये तो सब्जी है, हूं क्या छू, हूं तो अहिया छू, आ कटोरी में हूं क्या, मैं तो ये कटोरी है, सब्जी है, मैं नहीं हूं. रोटी को पूछो कि ये तुम हो तो बोले नहीं नहीं, ये रोटी है, मैं कहां हूं ये. और जब खा लेता है तब क्या कहता है, जो खाया उस रोटी को छोड़कर मैं, ऐसा कोई नहीं कहता है, सबको लेकर मैं गया था, मैं आया था, मैं उठा, मैं बैठा, मैं. सब कुछ कवलित हो जाने के बाद आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, आत्मा भिन्न उसका अस्तित्व नहीं रहता. इसी प्रकार से जगा हुआ व्यक्ति ये सारा का सारा प्रपंच, इदम रूप में भाषित प्रपंच, वह आत्मभाव को होता है, वो कबलित हो जाता है. इस बात को और आगे स्पष्ट करते हैं। अब कोई प्रश्न करे कि आप इतने लंबे समय का ये स्वप्न कह रहे हो, कैसे माना जाए ये स्वप्न? बोले, अरे भाई, ये जो तुम्हारी दृष्टि से जो लंबा समय बता रहे हो, ये समय तो कुछ भी नहीं है बाबा। ये तो रात्रि के समय जिस समय तुम स्वप्न देखते हो, उस समय के भी कम समय है ये। तुम्हारे 100 वर्ष का जो जीवन है, समय है, वो तो रात्रि का जो स्वप्न देख रहे हो वो स्वप्न के समय से भी कम समय है। दृष्टांत दे रहे हैं, बड़ा सुंदर ही मनन करने योग्य दृष्टांत है। ये दिन को दिवा स्वप्न सिद्ध करने के लिए, रात्रि स्वप्न से ये भिन्न नहीं है ये निश्चय करने के लिए दृष्टांत दिया। पहले वही स्वप्न कहीं देख लो, यथा स्वप्ने निरपो भूतवा, कोई व्यक्ति था रात को जब सोया खाना पीना खाकर, तो उसके इंद्रियां सब उपराम को प्राप्त हो गई, विश्रांति को प्राप्त हो गई, उपरत हो गए। तब तुरंत उसके मन यानी अंतकरण अपना काम करने लग गया, तो स्वप्न देखने लग गया। तो स्वप्न क्या देखता है? कहीं राजकुमारों का स्वयंवर का प्रसंग था। महात्मा लोग बहुत दृष्टांत देते हैं। कोई राजकुमारी थी, उसका स्वयंवर का प्रसंग था। यह है कि राजकुमारी जिसके गले में माला पहना दे तो वह राजा बन जाएगा, उसका पति होगा और उसके बाद वह राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो जाएगा। या दूसरी बात समझ लो कि शास्त्रों में ऐसा दृष्टांत है कई बार कि यदि कोई राजा के पुत्र आदि युवराज नहीं है, तब उस राजा के उत्तराधिकारी का छनोट करना हो, चयन करना हो, तो एक हाथी को माला दी जाती थी और हाथी को कह दिया जाता था कि इस गद्दी के योग्य कोई उत्तराधिकारी खोज कर लाओ। तो वह हाथी जिसके गले में माला पहना देता था उसको उस राज्य का राजा माना जाता था, राजगद्दी खाली होने पर। दूसरे राजा चयन के लिए प्रक्रिया थी। ऐसे कई उदाहरण आ गए हैं शास्त्रों में, हैं हमारे शास्त्रों में। रात्रि को वो स्वप्न देख रहा था, कौन? आत्मानंद गिरी। और संयोग से वो स्वप्न में उस राज्य में पैदा हुआ है वो आत्मानंद गिरी, जहां सिंहासन खाली था और मंत्रियों ने निश्चय कर दिया कि उस राजा चयन करने के लिए हाथी को माला देकर भेज देना है और जिसके गले में माला पहना देगा हाथी वही राजा हो जाएगा। राजा होने की वासना तो आत्मानंद की गिरी की भी थी। स्वप्न देख रहा था कि यदि मेरे गले में माला पहना देता हाथी तो क्या मजा आता है। मन में वही वासना लेकर स्वप्न देख रहा है, स्वप्न जैसे अभी आपके वासना है कि नहीं है, वासना है कि नहीं आपके मन में? यदि ऐसा हो जाता, यदि ऐसा हो जाता, ऐसे ऐसा हो जाता, वासना है कि नहीं है? यदि आपने जहां जिस कंपनी का शेयर खरीदा है, यदि 1.4% डिविडेंड मिल जाए, एक शेयर का बराबर 4 शेयर आपको बोनस मिल जाए, इतना तो खैर कोई कोई कंपनी नहीं देगा, है ना? एक शेयर बराबर 4 शेयर बोनस तो आज तक कहीं दिया है किसी कंपनी ने? हैं? दिया है, शाबाश, 10 तक दिया है बोनस, वेरी गुड। हम ही दुर्भाग्य हैं, एक भी शेयर नहीं खरीदे। देख लो, प्रमाण है। अब भी आपके 100 शेयर थे, 1000 शेयर थे और 1 के 10 कर दिया उसने, बोनस दिया, कितने हो गए? 10,000। और एक शेयर बराबर 1,00,000 का था। अरे कल्पना ही तो है क्या, क्यों दरिद्रता करना है, 100 में क्यों लाना है एक शेयर को, 1,00,000 का था, करोड़ के हो गए कि नहीं अब मलिक। तो आपके मन में क्या होती है, यदि ऐसा हो जाए तो आहा, मैं नरीमठ पॉइंट में एक फ्लैट खरीद लिया 10,00,000 में, 1,00,00,000 में क्या मिलने वाला नरीमठ पॉइंट में फ्लैट। कल्पना तो है और क्या, सभी कितने कल्पना करते हैं। ओहो, मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा होता था पहले, अभी भी होता है, कोई बढ़िया घर बन रहा हो कहीं फ्लैट, वो इसके टॉप फ्लोर में एक फ्लैट रखने, लेकिन करें क्या, कल्पना करने से तो होने वाला नहीं था। सभी की जीव का ये अवस्था है, जीव भाव का ये लक्षण है, ये कल्पना करता है वो। सोया हुआ था, स्वप्न देखा, और स्वप्न में वो तो स्वप्न में तो सोएगा नहीं, स्वप्न जो देख रहा है वह स्वप्न में सोएगा नहीं, सोएगा स्वप्न में तो जाग रहा था। तो वह हाथी जब राजमहल से माला लेकर निकला, मन में तो इच्छा हुई कि हाथी मेरे गले में माला पहना देवे, और हाथी जिस गली से निकल रहा था, जिस रास्ते से, तो आत्मानंद उसी में खड़ा होकर गर्दन लंबा कर रहा था, स्वप्न देख रहा है, गर्दन लंबा कर रहा था, तो उस हाथी ने डाल ही दिया माला, कि जन्म का प्रारब्ध था। स्वप्न में हाथी ने आपको राजा बनाने के लिए माला डाल दिया, वो किसी जन्म का प्रारब्ध था कि नहीं, बोलो है? ये प्रारब्ध प्रारब्ध कुछ नहीं था, ये वासना है। वो प्रारब्ध से कोई स्वप्न में कोई राजा नहीं बनता है, प्रारब्ध से, प्रारब्ध से राजा बनना तो ये जागृत में ही है, ये दिवा स्वप्न में है, रात्रि स्वप्न में नहीं। मैं जागृत शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूंगा इस प्रसंग में, क्योंकि शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं ये भी स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है, इसलिए दूसरी शब्द से मैंने कहा ये दिवा स्वप्न है। तो ये भले ही प्रारब्ध से ये प्राप्ति हो, यहां जो कुछ भी प्राप्त हो प्रारब्ध से, लेकिन आपके रात्रि स्वप्न में जो कुछ प्राप्त होगा वो आपके प्रारब्धों से प्राप्त नहीं होगा। फिर भी उस हाथी ने आपके गले में माला डाल दी, आपके साथ और भी तो थे वहां बहुत से स्वप्न में गर्दन लंबे करने वाले, तो आपके गर्दन में डाल दिया, तो राजा बन गया, सब ने घेर लिया, जय जयकार, मंत्री आ गए घेर गए, आत्मानंद जी महाराज की जय, ले गए सिंहासन में रख लिया। अब वो तो सिंहासन में बैठा हुआ है, राजा बना हुआ है, शासन कर रहा है, सेना है, सब सेवक हैं, परिचारक हैं, जयकार हो रहा है। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन, पूरे राजपाट भोग वैभव का अनुभव कर रहा है। कुछ दिन के बाद शत्रु राजा बलवान हो गया और उसने आक्रमण कर ली, तो युद्ध करने के लिए चला गया वो। यथा स्वप्ने निरपो भूत्वा, सुरेश्वराचार्य जी ने इस प्रसंग का संकेत कर दिया है, यथा स्वप्ने निरपो भूत्वा भोंगता भोगान यथेव सीतान। अब उसको तो भोग की कोई कमी होगी राजा को, यथा इप्सितम भोगान भुंगत्वा, भोगा खूब भोग रहा है, चतुरंग बलोपेत शत्रुंजित्वा रणांगणे। उसको तो अब कोई परास्त करने वाला ही नहीं है, चतुरंग सेना है, जिधर जाता है उधर ही सेना का प्रभाव यह है कि वो जीत लेता है। परंतु एक बार की बात है कि वह परात पराजितो भूत्वा, युद्ध में दूसरे राजा ने उसको परास्त कर दिया, परास्त कर दिया तो राजसत्ता खत्म हो गई उसकी। वनम प्राप्य तपश्चरण, वो चला गया जंगल में तपस्या करने के लिए। अब क्या करेंगे, सत्यवान के माता पिता की कहानी महाभारत में सुने है ना, चले गए जंगल में, और सत्यवान उन्हीं को पालन पोषण के लिए क्या करता था। सत्यवान राजपुत्र था, राजकुमार था, और उनके माता पिता राजा थे, लेकिन प्रारब्ध की बात है, एक राज्य भ्रष्ट हो गया तो जंगल में चले गए। सत्यवान जंगल में जा रहा है अपने माता पिता की सेवा करने के, लकड़ी काटता है, बेचता है, उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसी से अपने माता पिता का भरण पोषण करता है, राजा का है। देख लो सत्यवान सावित्री का प्रसंग में ये आता है कि नहीं। तो पराद्भूत पराजितो भूत्वा वनम प्राप्य तपश्चरण मुहूर्त मात्रम आत्मानम। और ये स्वप्न कितना लंबा है, वो स्वप्न देखने वाला कितने समय में ये सारा स्वप्न देख रहा है, मुहूर्त मात्र, एक मुहूर्त के अंदर का ये सब देख रहा है। राजा भी हो गया, राज वैभव की भोग रहा है, कई बार युद्ध किया, कई बार विजयश्री प्राप्त किया, और एक बार परास्त हो गया और जंगल में गया तपस्या करने लग गया। कितना समय उसके लिए, तो पूरी लाइफ है कि नहीं बोलो है। और वो जो स्वप्न क्या इतना दीर्घ समय, इतना लंबा समय तुम्हारे जागृत के अवस्था के हिसाब से करो तो कितना है, तो बोले एक मुहूर्त। जागृत के सामने वह एक मुहूर्त है, वो एक मुहूर्त का अर्थ बराबर आचार्यों ने 42 मिनट बराबर माना है, एक मुहूर्त बराबर 42 मिनट्स। इतने में हो गया वो, 42 मिनट्स में क्या राजा बन सकता है कोई। मुहूर्त मात्र आत्मानम मन्यते कल्पजीविना, वो स्वप्न दृष्टा क्या मानता है, कल्पजीविना। तथैव जागृत काले अपि।

शक्ति उस स्वप्न देखने वाले को भी हुई थी कि स्वप्न में वह अपने सेंचुरी मना रहा था। समझ गए कि नहीं? एक बच्चा सोया, 16-17 साल का युवा है, वो सोया और वो एक मुहूर्त के अंतर्गत स्वप्न क्या देख रहा है, मैंने शादी की, मेरा बच्चा हो गया, मैंने बिजनेस किया, घर है, दुकान है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर ली, बहू आ गई, उसके भी बच्चे हो गए, तो क्या हो गया, पोता हो गया कि नहीं? और ऐसा वो योग करता रहा कपाल भांति रामदेव जी का। क्या कपाल भांति करता रहा, उसके पोते का भी शादी हो गई, उसका प्रपोता भी हो गया, कपाल भांति का फल है वो। परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, वो 100 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया, तो सब नाती पोते प्रपोते सब लोगों ने क्या किया कि पिताजी की सेंचुरी मनानी है, सेंचुरी की तैयारी हो गई है, शताब्दी मनाने की तैयारी हो गई। आप लोग तो षष्ठी पूर्ति में क्या फंक्शन करते हो, करते हो कि नहीं? 60 वर्ष के हो गए तो षष्ठी पूर्ति का फंक्शन करते हो कि नहीं? आप लोग है करते हैं, और 75 वर्ष के हो गए तो क्या करते हो? हाँ डायमंड सिल्वर के जुबली, डायमंड जुबली, और 100 वर्ष के हो गए तो गोल्डन, तो 50 में होता है भाई, हाँ प्लेटिनम जुबली, हाँ क्या प्लेटिनम जुबली की तैयारी हो रही थी, शताब्दी समारोह भव्यता के साथ, और संयोग से वो पैसे वाला भी था, सीसीआई क्लब ही रिजर्व कर लिया उसने, कोई साधारण प्रेमपुरी आश्रम में मनाएगा वो, पैसे वाला होगा तो क्लब या भाईदास हॉल है, क्या भव्य समारोह हो रहा था। आहा, उसी समय में एक प्रपोता आया और जोर से पटका, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए दादा प्रदादा की सेंचुरी मना रहा था और जोर से पटाखा, तो उसकी निद्रा खुल गई। पटाखा तो क्या था, कहां से, उसके पटाखा से तो क्या निद्रा खुलती उसकी, अब जैसे खुल गए, एक मुहूर्त तक के अंतर उसने शताब्दी मना रहा है कि नहीं, बोलिए, वो स्वप्न दृष्टा एक मुहूर्त के अंदर शताब्दी मना रहा है, पोते प्रपोतों का अनुभव कर रहा है, आप भी कर रहे हो कि नहीं बोलो है? आप लोग तो शताब्दी नहीं मना रहे हो, षष्ठी पूर्ति तो मना चुके होंगे, ये कोई लंबा समय मान रहे हो इसको, एक मुहूर्त के अंदर ही हो रहा है सब, है अनंत काल के गर्भ में ये तुम्हारा शताब्दी का क्या मूल्य है, अनादि अनंत काल जो है, काल प्रवाह में ये तुम्हारी शताब्दी का मूल्य क्या है, उस स्वप्न के एक मुहूर्त भी लंबा हो सकता है, ये इतना भी लंबा नहीं होगा उस काल गणना में, उसके गर्भ में, ये तो स्वप्न ही है। यथा स्वप्ने नृपो भूत्वा भुक्त्वा भोगान यथेप्सितान् चतुरंग बलोपेत शत्रुंजित्वा रथांग रणांगणे परात पराजितो भूत्वा वनम प्राप्य तपश्चरन मुहूर्त मात्रम आत्मानम मन्यते कल्पजीविनम तथैव जागृत कालेपि दृष्टांत। ऐसा जैसा ये दृष्टांत वैसे ये जागृत काल भी, तथैव जागृत कालेपि मनोराज्यं करोत्यसौ। इस समय भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वे सब मनोराज्य होने के कारण स्वप्न है, क्योंकि व्यक्ति इसी कल्पना जगत में ही जी रहा है, यथार्थ जगत में नहीं जी रहा है।

0: ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ये कल्पना मनोराज्य है और ये मनोराज्य ही स्वप्न है। मनोराज्यं करोत्यसो काल नध्योग योगेना, काल नदी, काल रूपी नदी के वेग में पड़ा हुआ यह जीव इस तरह प्रवाह में बहता जा रहा है। क्षीण मायूर न पश्यति, अपने 100 वर्ष के जो समय को वह देखता ही नहीं, कहता है कि मैं तो बहुत जी गया, ये 100 वर्ष के आयु काल नदी के सामने एक बूंद है। जैसे नदी के जल के सामने तुम्हारे लोटे का और गिलास का पानी का क्या महत्व है, इसी तरह काल नदी के सामने ये तुम्हारा 100 वर्ष का तो एक बूंद भी नहीं है और उसको ही तुम बहुत मानकर कह रहे हो। तो ये काल प्रवाह नपश्यति, देखता नहीं है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति चयम यौवनम, शंकराचार्य जी ने कहा है। आयुर्नश्यति पश्यति प्रतिदिनम याति चयम यौवनम, प्रतिदिन अपनी यौवन घटता जा रहा है, आयु नष्ट होता जा रहा है। प्रत्यायांति गता पुनर्न जीवनम, कालो जगत भक्षक, जो निकल के चला गया है काल समय वो चला गया, वापस नहीं आने वाला है। जो जवानी चली गई है चली गई, हिंदी में सही शब्द प्रयोग किया है जवानी, अब गुजराती में इसका अनुवाद करो तो सही होता है, गुजराती लोग जवानी, जाने वाले को ही क्या कहते हैं जवानी, गुजराती में सही शब्द कह रहे हैं जवानी, जाने वाला, जाना निश्चित है, रुकने वाला नहीं है, रोकने का कोई उपाय नहीं है, जवानी। प्रत्ययांति गतः पुनर्न दिवस कालो जगत भक्षक, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, जिस लक्ष्मी की हिसाब करते करते रात भर निद्रा नहीं आती वो तो क्या है, चपला है, बिजली की तरह, बिजली बने ये बिजली नहीं, मेघ गर्जना की बिजली की तरह है, विद्युत तरंग है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम, तो जब ये अनुभव होता है तब वो प्रार्थना करता है ईश्वर से, तस्मात माम शरणागतम शरणतः तुम रक्ष रक्षा अधुना। तो ये जो दक्षिणामूर्ति का है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतम, जैसे स्वप्न अपने ही अंदर है इसी तरह ये विश्व भी अपने ही अंदर है। पश्यन मायया बहिव, जैसे स्वप्न के कारण स्वप्न के अपने ही अंदर का दृश्य, स्वप्न दृश्य अपने से बाहर की तरह देखता है, इसी तरह माया के चलते, अनादि माया निद्रा के चलते अपने ही अंदर विद्यमान ये सारा प्रपंच वो बाहर की तरह देखता है, लेकिन बाहर नहीं है, सत्यता यह है, क्योंकि वो अनादि माया सुप्तो। तो जीवो यदा प्रबुद्धते, तब जब जाता है, जब संत जगाते हैं, श्रुति जगाती है, ईश्वर जगाता है, योग साधना अभ्यास तुम्हें जगाता है, तब तुम्हें ये लगेगा कि अरे जिसको मैं इतने वर्षों से सत्य मानता रहा यह तो केवल प्रातिभाषिक मात्र है, प्रतीति मात्र है, और सत्य क्या है, तो इसमें तो बोले उसका साक्षी जो मैं हूं वो सत्य हूं। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Oh.

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Muruga Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi main jo kahani aapko sunane ja raha hu, वो एक ऐसे संत की कहानी है जो कि भगवान के नंदनवन या बगीचे की रक्षा और उनकी देखभाल करते थे। इस कहानी के पूर्व कुछ बातें समझना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने जिन संभावनाओं पर विचार करके मंदिर को सभी सेवाओं का केंद्र बनाया था, उनमें से एक प्रमुख था भगवान के समीक्ष नंदनवन या बगीचों की स्थापना करना। इसके लिए मंदिर के निकट का एक भाग नंदनवन बनाने के लिए अलग रखा जाता था। उसमें फूलों के पौधे लगाए जाते थे, खाद डालने और सिंचाई करने की व्यवस्था होती थी। फूलों की रक्षा भी आवश्यक है। विचार करें तो यह नंदनवन कितने परिवारों की आजीविका का साधन बनता है। भगवान तो मामूली आंख का फूल और धूप चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर फूल मालाएं गूंथ कर उनको अर्पित करने में भावना मात्र से अधिक भी कुछ रहा होगा। भगवान तो किसी विशेष प्रकार की फूलमाला या वस्तु की मांग नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने मंदिर के निकट नंदनवन की व्यवस्था समाज का एक अंग को आजीविका प्रदान करने के लिए ही किया था। इसके साथ ही उनका लक्ष्य प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण, पेड़ पौधे, पुष्पों, जड़ी बूटियों आदि की रक्षा करना भी था। यदि मंदिर सेवा से मिलने वाला काम व्यापारिक बुद्धि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्तिगत लाभ हानि की बात सोच सकता है। 10-12 परिवारों को काम पर लगाने, मजदूरी देने के बाद लाभ न होने पर व्यापारी स्वयं को ऐसी समाज सेवा से अलग भी कर सकता है। इसी कारण हमारे समाज ने इस व्यवस्था को मंदिर सेवा का नाम दिया है। पुष्पों की क्यारियां लगाना, फूलों को चुनकर एकत्र करना, माला गूंथना आदि मंदिर सेवा के माध्यम से कई लोगों की आजीविका का साधन है। अभी मैं कहने जा रहा हूं मुरुगन नायनार की कहानी। मुरुगन नायनार या मुरुगन संत का जन्म तमिलनाडु के चोल राज्य के पूंपगलूर नामक शहर में हुआ था। नियमित रूप से उपवनों से ताजे पुष्प चयन करना, उन्हें रंग बिरंगी मालाओं में गूंथ कर भगवान को चढ़ाना ही उनकी भक्ति का रूप था। पुष्प चयन करते हुए, माला गूंथते हुए और प्रभु को ये मालाएं अर्पित करते हुए हर क्षण उनके मुख से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण चलता रहता था। अन्य समय भी अनाहत उनके मुख से नमः शिवाय से सजी हुई रहती थी। तमिल के प्रख्यात शिव भक्त त्रिज्ञान संबंधर के विवाह के अवसर पर ज्योति में लीन होकर शिव साहित्य प्राप्त करने वाले कई लोगों में से एक थे मुरुगन। सेवा के अनेक रूप हैं। प्रायः हर सेवा जनता के लाभ के लिए होती है। कुछ का लाभ प्रत्यक्ष और कुछ का परोक्ष होता है। सेवा करने वाले व्यक्ति का कभी मन दुखित नहीं होता, वो समाज सेवा में प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रभु को पुष्प आदि हमारे सजाने पर भक्तों को उस शिवलिंग को देखकर जो आनंद मिलता है, इसी से जो सेवा करता है उसका मन भी आनंद प्राप्त करता है। इसी उद्देश्य से मुरुगन ने सदा शिवलिंग या शिव की प्रतिमा को पुष्प या फूलों से हमेशा सजीव करने की कोशिश की है। मुरुगन नायनार उस समय विलीन हो गए या फिर अदृश्य हो गए जब त्रिज्ञान संबंधर, जो कि और एक संत थे, उनके विवाह के समय भगवान ने त्रिज्ञान संबंधर संत और उनके सभी भक्तों, जिनमें मुरुगन भी थे, उन सबको अपने साथ उस शिवलिंग में ही विलीन कर लिया। उन्होंने एक ज्योति के रूप में आए और सारे भक्तों और त्रिज्ञान संबंधर और मुरुगन इन सभी संतों को देखकर एक साथ विलीन हो गए और अपने अंदर समा लिया।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ஓம் நமசிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் saivam.org. The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ब्रह्मार्पणम मंत्र न पढ़े बिना खाने लग जाए वो असुर होता है। हाँ, इसने ये किया, विष्णु के तरफ इशारा किया कि ये कोई छद्म व्यक्ति है, प्रच्छन्न देवता है ये, है? इसने पी लिया तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया विष्णु ने, क्योंकि गले से नीचे उतर चुका था, मरा नहीं, तो दो हो गए, तो सिर राहु हो गया, धड़ केतु। अब जब उधर से असुर लोग सब नहा धो के आए, अमृत पिलाओ, बोले घड़ा तो खाली हो गया, क्या हुआ? बोले पी गए सब देवता। हाँ, तो ये बात भगवान शिव के यहां पहुंच गई, शिव तक पहुंच गई ये बात, भगवान विष्णु ने इस तरह असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाई, मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिव को लगा कि ये मोहिनी रूप कैसा होता है, जरा देखना चाहिए, तो भगवान विष्णु को बुला लिया। तो आपने सुना है मोहिनी रूप धारण करके असुरों को ठक्कर हम देवताओं को अमृत पिलाया, बोले हां महाराज वही किया है, कृपा करके मुझे दिखाओ ना मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं महाराज, आप इस रूप को दर्शन न करो, ये आपके लायक नहीं है वो रूप। शिवजी ने हट किया, नहीं नहीं भाई दिखाओ, एक बार दिखा दो, देखने में क्या हर्जा है। अब जब शिव ने जब आग्रह की तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा भाई दिखा देंगे। प्रसंग बनाकर भगवान विष्णु ने वो रूप दिखा दिया शिव जी को, क्योंकि मोहिनी थी, मोहिनी रूप था तो मोहित तो होना ही जरूरी था, यदि शिव मोहित न होते तो रूप की सार्थकता न होती, मोहिनी ये सार्थक न होता, तो मोहिनी इस रूप को सार्थक करने के लिए भी भगवान शिव को सम्मोहित तो होना ही पड़ा, ऐसे सम्मोहित हो गए कि जब पकड़ने के लिए उठ खड़े हो गए। पुराण में सब प्रसंग है, बड़ा विभत्स अवस्था है भाई, दौड़े आगे आगे मोहिनी भगवान विष्णु मोहिनी, पीछे पीछे भगवान शिव, दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे, पकड़ लिया शिव जी ने, पकड़ लिया। हरी इच्छा थी तो एक बेटा पैदा हुआ, मैंने परसों भी संकेत किया था ना, उस बेटे का नाम है अय्यप्पा, वेद में उसका नाम है शास्ता पुरुष, दक्षिण में उसको अय्यप्पा, दक्षिण भारतीय नाम में अय्यप्पा बोलते हैं, वेद ने उसका नाम रखा शास्ता पुरुष। हम लोग बोलते हैं स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, पूजा करते समय बोलते हैं नहीं, उनमें से जो ग्राम देवताभ्यो नमः है वह शास्ता पुरुष है, वही है हरिहर पुत्र। तो उस समय में मोहिनी रूप फिर शिवजी को दिखाकर भगवान शिव की पत्नी बन गए, यही भार्यात्व। भगवान शिव की इच्छा से ही ना मोहिनी रूप दिखाकर पुत्र पैदा किया, यही तो भार्यात्व है। विष्णु ने बाणत्वम वृषभत्वम अर्ध बपुषा भार्यात्वम आर्यापते, आर्यापते संबोधन है, आर्य माने पार्वती, उनके पति आर्यपति, आर्या आर्य आर्या पार्वती, घोड़ी तुम बराह रूप धारण किया। अभी भगवान विष्णु ने शिव की आज्ञा से पृथ्वी को लाने के लिए बराह का रूप धारण किया। या ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता लगाते समय में बराह रूप धारण करके नीचे चले गए थे, तो वही भोणित्वम सखीता, भगवान शिव सखी बनकर, नहीं विष्णु सखी बनकर शिव के सान्निध्य में रहे। ये सब पुराण में अलग अलग प्रसंग हैं। मृदंग बहता तांडव नृत्य के समय में मृदंग बजाने वाले भगवान विष्णु थे। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे तो वाद्य था नहीं, तो मृदंग बजाया विष्णु ने, तब भगवान शिव नाचने लगे। च इत्यादि रूपम ददौ, ऐसे और भी रूप भगवान विष्णु ने शिव जी के प्रसन्नता के लिए धारण किया है। कितने रूपों का वर्णन करें? तोत्पादे नयनार्पणम च हरिस्ते साहस्रम कमलवलिमाधाय पदयोर यदे कोने तस्मिन् निज मुदाहरण नेत्र कमलम। मैंने स्तोत्र में ये प्रसंग आप लोगों ने बहुत सुना है। उनका नियम था, भगवान शिव का नियमित रूप में अर्चना करना। अर्चना में प्रतिदिन सहस्र कमल की अर्चना भगवान विष्णु करते थे। एक दिन भगवान शिव की इच्छा से एक कमल कम हो गए, तो भगवान विष्णु ने तुरंत अपने नाम का स्मरण किया कि मुझे कमल नयन कहते हैं। इसका मतलब मेरा नयन कमल है, इसलिए तो मुझे कमल नयन बोलते हैं। मेरे आंख गोबर के होते तो मुझे क्या बोलते हैं? गोबर नयन। मेरे आंख वास्तव में कमल है, इसलिए मुझे कमल नयन बोलते हैं। तो एक कमल की कमी है, और मेरे पास तो दो कमल हैं, है? दो नेत्र हैं, एक चढ़ा देता हूं, अर्जा क्या है? मेरी पूजा तो निर्विघ्न होगी ना, पूजा में खंडित नहीं होगी। तो निकाला और वही चढ़ाने लग गए, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए कि तुमको नेत्र निकालने की जरूरत नहीं, पर संकल्प किया कि मुझे प्राप्त हो गया, समझे नहीं? मैं नेत्र भगवान शिव को अर्पण करूं, ये संकल्प किया कि मुझे प्राप्त हो गया। मानस पूजा में यही तो है, पुष्पाणि संतु मम इंद्रियाणि अक्षतान हृदय दीप आदि भावना, शरीर अगरबत्ती, ये तो भावना है। त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान्, त्वद्देह भागो हरि, पूज्यात् पूज्यतरः। आप कैसे हैं? ये सब कर्म करने के कारण भगवान विष्णु सारे संसार में पूज्य हुए। आज सारे संसार के लोग विष्णु की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि विष्णु ने आपकी पूजा की, इसीलिए भगवान विष्णु का महत्व तो बढ़ा, इसलिए सारे संसार के लोग विष्णु की पूजा करते हैं। तो आप क्या हो गए? पूज्यात् पूज्यतर, पूज्यों के द्वारा भी पूज्य। बोलो, पूज्यों का भी पूज्य हो गया कि नहीं। इसलिए तो रामेश्वर, राम का भी ईश्वर रामेश्वर। सारे दुनिया राम की पूजा करते और राम भगवान शिव की पूजा करते, तो शिव क्या हो गए? पूज्यात पूज्य तर सैव हि न चेत को वा तदन्योधिक। और आगे कहते हैं, ये श्लोक बड़ा मार्मिक, यह 83वां श्लोक बड़ा मार्मिक श्लोक है, सामान्य लेकिन बड़ा गंभीर है। जनन मृतियुतानां सेवया देवतानां नवति सुकलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनीमं अमृतरूपं सांबमीशं भजन्ति यहि अपरम सौख्यं तेहि धन्या लवन्ति। इसका सामान्य अर्थ है जनन मृति युतानाम देवतानाम सेवया जनन मृति युतानाम देवतानाम सेवया सुख लेसा न भवति। जन्मने वाले और मरने वालों के जनन मृति युताना, हमेशा जन्मने वाले और मरने वाले, जन्मने वाले मरने वाले, ऐसे स्वभाव वालों का सेवा करके लेस मात्र भी सुख नहीं हो सकता। जनन मृति युतानाम सेवया देवतानाम। बोले ठीक है, जन्मने वाले मरने वाले तो मनुष्य हैं, उनकी सेवा करके रंच मात्र भी सुख नहीं हो सकता, लेस मात्र भी सुख नहीं होता, लेकिन देवता तो जनन मृत्यु वाले नहीं है। बोले देवतानाम, वो भी जनन मृत्यु वाले हैं, वो भी सृष्टि के आदम में पैदा होते हैं और सृष्टि के अंत में मरते हैं। ये हमारे तरह सृष्टि के बीच में हजार बार पैदा और हजार बार मरते नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन पैदा तो होते और मरते भी है। पंचदशी में पढ़ा ना, जागृत के पदार्थ और स्वप्न के पदार्थ में अंत क्या है, तो विद्यारण्य मुनि जी ने बता दिया। स्वप्न के क्षणिक हैं, जागृत के थोड़ा नित्य हैं, नित्य माने लंबा समय के हैं। देवता एक बार जब पैदा होते हैं तो और मरते हैं, उस बीच में हम लाखों करोड़ों बार पैदा होते हैं और करोड़ों बार मरते हैं, ये फर्क इतना ही है। लेकिन देवता अमर नहीं है, कभी पैदा नहीं होने वाले अज नहीं है, कभी न मरने वाले अमर नहीं है। इसलिए इस प्रसंग में वो भी जनन मृत ही है। तो इस संसार में मनुष्यों की सेवा करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता, देवताओं की सेवा करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसकी सेवा तुम करोगे वो खुद अनित्य है, तो तुम्हें नित्य सुख कैसे दे सकता है। जनन मृति युतानाम सेवया देवतानाम न भवति सुख लेश, उनकी सेवा करने वालों को रंच मात्र भी सुख नहीं हो सकता, संशयो नास्ति तत्र। और तुम्हें यदि शंका हो तो अनेक प्रमाण हम देंगे, इसमें शंका नहीं करना। संशयो नास्ति तत्र नवावति सुकलेश, संशयो नास्ति तत्र। इस प्रसंग में जरा भी संशय शंका नहीं है, सुख नहीं हो सकता। फिर किसकी सेवा करें महाराज? अजनिम, अजनिम अमृत रूपम, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो कभी मरता ही नहीं। कौन है महाराज ऐसा इस दुनिया में? अंबया सहितम सांबम, अंबा सहित सांब, ईसम सांब ईसम भजन्ते। जो भगवान शिव की अजन्मा अमृत अविनाशी, अजन्मा अविनाशी भगवान शिव के जो सेवा करता है, भजन्ते भज सेवायाम भजन्ते, यह परम सौख्यम, वह इस श्लोक में परम सुख का अनुभव करता है। परम सौख्यम ते ही धन्या लभन्ते, और वही व्यक्ति इस संसार में धन्य है, और वही व्यक्ति का जीवन धन्य है, और वही व्यक्ति वास्तव में परम सुख आनंद को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह परम सुख परम आनंद तो प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा ही सुंदर यह श्लोक है, इसका भाव हो। एक भगवान शिव हुए हैं भास्कर राय, उन्होंने शिव नामक कल्पलतिका नामक एक स्तोत्र की रचना की। वहां भगवान शिव ही परम भजनीय हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भजनीय सेवनीय भगवान शिव ही है, उसके अलावा और कोई नहीं, इसलिए अन्य का आश्रय नहीं लेना। भगवान शिव परम भजनीय क्यों है, उसके लिए भास्कर राय ने नौ कारण बताया। इन नौ कारणों से प्रमाण सहित उन्होंने प्रस्तुत किया। पहला कारण दिया, क्योंकि भगवान शिव अनंत है, अनंत माने सीमा नहीं है जिनकी, जिसमें देश परिच्छिन्नता नहीं, काल परिच्छिन्नता नहीं, वस्तु परिच्छिन्नता नहीं, इस अनंतता के चलते वही सबसे श्रेष्ठ भजनीय हैं। इसमें प्रमाण कौन है? बोले विष्णु प्रमाण है। अनल स्कंद वपुषा, अनलम परिच्छेत्तम अनलम, पता लगाने के लिए विष्णु चले बराह रूप धारण करके नीचे, पता लगा नहीं पाए, ये विष्णु प्रमाण है कि भगवान शिव अनंत है। भास्कर राय ने ये प्रमाण एक हेतु तो ये दिया। दूसरा हेतु दिया, भगवान शिव परम उदार हैं। परम उदार होने के कारण ही भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं, उत्तम भजनीय है। इसमें उदारता प्रमाण कौन है? भास्कर राय ने कहा इसमें प्रमाण उपमन्यु है। उपमन्यु भगवान शिव का भक्त हुए हैं। उपमन्यु महाभारत का उपप्रसंग की तरह ही उपमन्यु का जीवन है। अश्वत्थामा ने मामा के घर गए और मामी ने उनको दूध पिला दिया अश्वत्थामा को। ये कहानी सुना है ना तुम लोगों ने, क्योंकि उनके घर में तो दूध था नहीं। द्रोणाचार्य जी के घर में तो गाय थी नहीं, गरीब थे बेचारे। अष्टावक्रा के यहां गए तो दूध पीने को मिल गया उनको। घर में आकर कहने लगे मां, मामी ने जो चीज दिया है वो मुझे पीने को, बहुत बढ़िया था। क्या था भाई? बोले नाम तो मुझे पता नहीं। कैसा था? बोले गिलास में दिया था, सफेद सफेद पानी जैसा था। तो समझ गई अश्वत्थामा की मां, कृपी ने समझ लिया ये जरूर गाय का दूध पिलाया होगा उसने। अब वो मांग रहे हैं मुझे गाय का दूध पिलाने पीने दो, और गाय है नहीं, कहां से लाके दें दूध। कहते अंदर गई और आटा घोल के, और आजकल का हॉर्लिक्स होता तो ठीक था तो गई और गर्म पानी में आटा घोली और लाके दिया। अब कहां गाय का दूध, कहां आटा घोला हुआ, फेंक दिया। ये तो वो चीज नहीं है। रोने लग गए। द्रोणाचार्य को कहा कि अरे बेटा ऐसा कर रहा है, ये गाय तो लाना चाहिए। बोले कहां से लाएंगे? बोले तुम्हारा मित्र राजा बन गया है, बचपन का सखा द्रुपद राजा बन गया है, तो उसके पास तो बहुत से गाय है, एक गाय मार के लाओ, जरूर देगा। तो पत्नी के कहने से बेचारे चले गए द्रोणाचार्य मांगने। कहां पहचानने से ही मना कर दिया, मेरा कौन मित्र, कौन सखा, कहां मैं राजा, घमंड देख लो। तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब तेरी बुद्धि को ठिकाना लगाना पड़ेगा। वो प्रसंग अलग था, यहां उपमन्यु का भी वही सेम ऐसे ही प्रसंग है। बहुत जिद्द किया तो उनकी मां ने कहा बेटा तुमको यदि दूध पीनी हो तो भगवान शिव की भक्ति करो, उनकी कृपा होगी तो गाय मिलेगा, फिर दूध मिलेगा तुमको। और नहीं तो हमारे पास गाय ही नहीं है, शिव की कृपा नहीं हुई है, वही दे सकते हैं तुमको गाय का दूध, हम तो नहीं दे सकते बेटा। तो उपमन्यु ने भक्ति की शिव जी की, और भगवान शिव प्रसन्न होकर उपमन्यु से कहा कि बेटा क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे गाय का दूध चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि कैसा भोला है बेचारा, हमारे सामने ये गाय का दूध मांग रहा है। तो भगवान शिव ने सिर में से थोड़ा सा निचोड़ लिया, क्या था, अमृत था ना, सोम चंद्रमा, उसमें से थोड़ा निचोड़ लिया, गिलास में डालकर ले बेटा दूध पी ले। लिया, मांगा था गाय का दूध, पिला दिया अमृत। इससे बढ़कर उदार और कौन हो सकता है? इसलिए शिव ही भजनीय है। दूसरा हेतु, नौ हेतु दिया है ऐसा है। तीसरा हेतु, भगवान शिव हमेशा सत्य के पक्षपाती हैं, असत्य के पक्षपाती नहीं है। इसलिए भी भगवान शिव भजनीय है। सत्य का पक्ष लेने वाले के प्रति प्रसन्न और असत्य का पक्ष लेने वाले के प्रति दंड। इति शिव सत्यनिष्ठा होने के कारण भगवान शिव ये भजनीय है। प्रमाण क्या है? ब्रह्मा और विष्णु ये प्रमाण है। वही ज्योतिर्लिंग के पता लगाने के प्रसंग में झूठ का आश्रय लिया ब्रह्मा, सिर काट दिया, और सत्य का आश्रय लिया विष्णु ने, तीनों लोक में पूज्य हो गए। चौथा हेतु है मृत्यु से सर्वथा रक्षा करने वाले हैं भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं। प्रमाण क्या है? मार्कंड ऋषि इसमें प्रमाण है। और थोड़ी सी सेवा से बहुत ज्यादा फल देने वाले हैं, इसलिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ पूज्य है, उत्तम है। प्रमाण क्या है? शिव पुराण में शिवरात्रि की कथा तुम लोगों ने सुनी है। एक ब्राह्मण का बालक था, वह बड़ा उठपटंग काम करता था, परिणाम ब्राह्मण धर्म से च्युत होकर चांडाल धर्म अपना आया था, चोरी करना, लूटना, यूं करना त्यूं करना, कोई सच्चरित्रता थी नहीं उसमें, तो जंगलों में रहता था। शिवरात्रि के दिन दिन भर व्रत बैठकर शाम के समय में गांवों का कोई भक्त भगवान शिव मंदिर में प्रथम प्रहार रात्रि को पूजा करने के लिए गया था, तो बहुत से पकवान नैवेद्य फल फूल है मिष्ठान्न लेके गया। अब वो चांडाल बेचारा वही मंदिर के पास में बैठा था, कोई आएगा कोई लूटेंगे, वो अंदर गया भक्त, बत्ती जला ली, पूजा किया, एक प्रहर की पूजा की और सब मिष्ठान्न आदि पकवान फल फूल शिव को अर्पण किया और वो चला। उसके बाद वो चांडाल आया, वो अंदर घुसते ही बत्ती बुझ गई। तो कहां क्या रखा है उसको क्या पता, अंधकार में इधर टटोलता है उधर टटोलता है। उसके दिमाग में आ गया अपनी जो पुरानी धोती वो पहन रखा था उसको फाड़ा और एक दूसरा पत्थर लेके, क्योंकि वो जंगल में तो आग उसी तरह जलाता था, वो एक पत्थर में दूसरा पत्थर रगड़ो तो चिंगारी आती है चकमक, उससे आग बत्ती जलती, आग निकलता है, अग्नि निकलती है। उसने अपने पुरानी धोती का एक छड़ा फाड़ा और एक पत्थर का टुकड़ा कैसे उसको मिल गया और शिवलिंग में मारा, जोर से मारा तो चिंगारी निकली, तो कपड़ा में अग्नि तो दिया हो गया, ले जा रोशनी हो गई मंदिर के अंदर। तब फटाफट फल मिठाई सब खोज खास के खाया है। संयोग की बात, वो शिवरात्रि का दिन था, दिन भर कुछ खाया नहीं था, व्रत हो गया और शाम के समय प्रथम प्रहार में उसने दिया जला दी। इतनी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर दूसरे जन्म में कुबेर बना दिया। जाओ, थोड़ी सी सेवा से भी प्रसन्न होकर इतना दे देते हैं कि इतना दे देते हैं कि उसको फिर अब दुनिया में फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भी भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय है। छठे कारण, बड़ा सा बड़ा संकट से निवृत्त करने वाले भगवान शिव है। समुद्र मंथन में जब कालकूट निकला, अकांड ब्रह्मांड अक्षय चकित देव सूर्य कृपा, बिना समय में प्रलय होने लगा, तो उस कालकूट को समन करने का किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो सब जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्होंने आराम से उसका पान करके संकट मोचन, बड़ा सा बड़ा संकट से निवृत्त कर दिया। इसमें प्रमाण है समुद्र मंथन का। नीलकंठ हो गए वो अपने आप। सातवां हेतु है, यदि उनकी उपेक्षा और तिरस्कार करके शास्त्र मर्यादा का उन्मार्ग करता है तो उसको दंड देकर सन्मार्ग में लगाते हैं, तो बिगड़ने वाले जिंदगी को भी सन्मार्ग में लगाकर सुधार देते हैं। इसमें दक्ष प्रजापति प्रमाण है, है? उनका अपमान किया, उन्हीं का अपमान किया, शिव का ही अपमान किया, वैदिक विधि का तिरस्कार किया, फिर भी उसको दंड देकर उसका उद्धार कर दिया और आगे परम शिव का भक्त भी बन गया दक्ष प्रजापति। हेतु है, आठवां हेतु दिया, परम हित का उपदेश करने के कारण भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं, उपासनीय हैं। हेतु क्या है? भगवान राम इसमें प्रमाण है, शिव गीता का उपदेश किया भगवान शिव ने स्वयं राम को और सनत कुमारों को, तत्त्वमसि महावाक्य का ज्ञान मुद्रा से दर्शन उपदेश किया, यो भद्रया मुद्रया, इसलिए भी मोक्ष शास्त्र का उपदेश चिन्ह मुद्रा के द्वारा उपदेश करने के कारण सापूर्वे सामपि गुरु, इसलिए शिव सबसे उत्तम भजनीय है। नौवां हेतु दिया, परमात्मा की उत्तमता तो वेद ने सर्वत्र प्रशंसा की है, ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर आदि आदि। तो इन सब कारण से भगवान शिव ही भजनीय हैं, और भगवान शिव का भजन करोगे तभी वह नित्य सुख अमृत की प्राप्ति होगी, अन्यथा जनन मरण जन मृतों की सेवा करके लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadans Shiva Mahinma Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: इसको पी जाना है, ये मेरा ही खड़ा हुआ किया हुआ संसार है, मेरा ही विष है। पी जाना याने सहनम, इसी को तितिक्षा कहते हैं। सहनम सर्व दुखानाम, ये आप जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु पहले दिन जो पढ़ाता है वो ये है। हाँ, क्या पढ़ाते हैं गुरुजन? भाई तत्वबोध खोलो, अप्रोक्षानुभूति खोलो, विवेक चूड़ामणि। क्या सिखाते हैं हम? साधन चतुष्टय संपत्ति। पहले ही दिन आपके बैंक बैलेंस में हम संपत्ति भर देते हैं, पहले ही दिन। ऐसा तो कोई करेगा? ऐसे तो माता पिता भी नहीं करते। बच्चा मैच्योर होता है तो उसको चेकबुक दी जाती है, और यहाँ मैच्योर इमेच्योर की बात ही नहीं, पहले ही आए और गुरु संपत्ति से भर देते हैं। कितनी संपत्ति? चार चार संपत्ति देते हैं। कौन सी? तो बोले विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। तो ये विष का पी जाना याने उसके लिए कौन सी संपत्ति चाहिए आपको? और गुरु की दी गई संपत्ति होगी, यही ज्ञान होगा, तो ही आप ये विष पी सकेंगे। तो क्या है वो? तितिक्षा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो सहनम सर्व दुखानाम यानी भगवान शंकराचार्य जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको कुछ दुख आ गया, दुख आ गया और आपने वो दुख के पीछे बहुत ही प्रलपन किया, बहुत ही कंप्लेन्स की, और फिर हम क्या बताते हैं कि भाई मैं बहुत सहन कर रही हूं। तो आप दुखी हुए कि नहीं? सहन करने का भाव तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा यानी क्या? कि सहन करने का भाव ही नहीं प्रवेश हो, दुख दुखी ना लगे, वो तितिक्षा की अवधि है, एक्सटेसी है। हाइट ऑफ तितिक्षा इज व्हाट? सहन। आप जिस क्षण आप बोले कि मैंने ये बहुत सहन, मैं इसको बहुत सहन करता हूं, तो तितिक्षा नहीं हुई। आप दुखी तो हो ही गए ना, आपका रिजेक्शन हो ही गया, प्रतिकार हो ही गया, प्रतिक्रिया हो ही गई। और यहाँ अप्रतिकार पूर्वकम कहा है, प्रतिकार ही नहीं करना है, यानी ये दुख के तरह इसको नोटिस ही नहीं लाना है। क्यों? मेरा ही खड़ा किया गया विष है, मेरा ही विचार है। अपना विष आपको क्या? सांप का जहर खुद को, उसको सांप को मारता है क्या? सांप का जहर सांप को नहीं मारता। मेरा विष मुझे कैसे मारेगा? पर मेरा विष मुझे मार सकता है। सांप का जहर निकाल के सांप के ब्लड सर्कुलेशन में डालो तो सांप मर जाएगा उसी के जहर से। मेरा जहर अभी बाहर निकाला तो क्या होगा? राग द्वेषात्मक जहर बाहर निकाला, क्रोधात्मक जहर बाहर निकाला, ईर्ष्या का जहर बाहर निकाला तो क्या होगा? ये जैसे ही जिस क्षण जहर बाहर निकाला, समझ लेना सांप के ब्लड सर्कुलेशन में जहर गया और वो मर गया, ऐसे हमारा ही जहर हमें मार डालेगा। इसीलिए यहाँ ये सांकेतिक भाषा है, पर अभी शंकर प्रभु ने क्या किया कि भाई ये तो व्यष्टि रूपी जहर है, पर समष्टि रूपी ये पूरे विश्व को, समष्टि रूपी जहर याने अज्ञान रूपी जहर, ये अज्ञान जब बाहर निकलता है तो अज्ञान का जुरुम्बण क्या है? अज्ञान याने यही माया। नयस्त विद्या मनसोतिरिक्ता मनो य विद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभितेस्मिन् सकलम विजृंभिते। क्या है? नहीं अस्ति अविद्या मनसोतिरिक्ता। भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बता रहे हैं ये अविद्या ही क्या है? यही मन है। मेरे पास, मेरी तक बात आ गई। और ये जो मन है, समष्टि जो अविद्या है, वो क्या है? वो माया है। यानी परमात्मा की जो उपाधि क्या है? तो भाई मायोपाधि ईश्वर, अविद्योपाधि जीव। वो आपको अभी समझ में आएगा कि जो जीव है उसकी उपाधि क्या है? अविद्या है। पर ये अविद्या क्या है? ये मन है। ये मन क्या है? मन ही माया है। माया की उपाधि किसकी है? तो बोले ईश्वर की है। यानी ये ईश्वर, अविद्या, मन, माया, जीव, समष्टि व्यष्टि को एक करो तो ये अज्ञान रूपी जो विष जो है उसका पान, ये जो अज्ञान जो है, मेरे खुद के अहम का अज्ञान जो है, वो सबको विषैला कर देगा। और ये जो परमात्मा का नाम स्मरण है, परमात्मा का ज्ञान है, अगर ये शिव जी कहते हैं कि ये विष मैं नहीं पी जाऊं तो ये सृष्टि में से, ये ब्रह्मांड में से अज्ञान कभी भी तिरोभूत नहीं होगा। इसीलिए पी के आकंठ यहां रख दिया कि बाहर जो शुद्धि हो जाए ये शुद्ध सत्व गुण ऐसा का ऐसा ही रह जाए, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये सत्व गुण रूपी ज्ञान की जो परंपरा जो है, ज्ञान के आदान प्रदान की परंपरा जो है, ये जो विधि जो है वो ऐसी की ऐसी ही बनी रहे। ऐसे विषपान सहजता से कर लिया, विष कौन सहजता से पी सकता है, जो अपने स्वभाव को जिसने जान लिया है वही विष का सहज रूप से पान कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं, खूब अच्छी बात करते हैं, देखिए परमात्मा की मात्रा आराधना या स्तुति नहीं करनी है, प्रेम से स्तुति करनी है, वो कोई अपना है ऐसे स्तुति करनी है। देखिए स्तुति की भी दो प्रकार की होती है, आप किसकी स्तुति करेंगे और आपको उसके लिए प्रेम न हो तो वो स्तुति कैसी की जाएगी, वो सिर्फ ये वो स्वार्थ वाली स्तुति हो जाएगी, भाई आप तो शेठ, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा है ऐसा है, क्यों भाई कुछ चाहिए, हाँ कैलकुलेटेड स्तुति है, कैलकुलेटेड प्रेम है, ऐसा नहीं है। यहाँ चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए श्री पुष्पदंत जी को, भाई माफी चाहिए, हाँ क्षमा चाहिए कि निर्माल्य का उल्लंघन हो गया है, तो ये न कहना प्रकरण, फिर क्षमा ही खाली नहीं चाहिए और क्या चाहिए, भाई कृपा भी चाहिए कि भाई इस बहाने भी मैं आपके पास आ ही गया हूँ तो अब ये अज्ञान से भी मेरा उद्धरण करने वाले आप ही है, समस्त ब्रह्मांड रूपी अज्ञान का विष जो पी सकता है वो मुझमें अज्ञान कैसे रख सकता, मेरा भी अज्ञान कैसे देख सकता है। इसीलिए गुरुपशक्ति का बहुत महात्म्य है, गुरुजन क्या करते हैं हमारे विष को पी जाते हैं। हाँ आपको शरण में आना है, आप जैसे ही शरण में आ गए, आपने समर्पण कर दिया तो क्या करेंगे, आपका अज्ञान रूपी विष और घोल वो पी जाएंगे और रख देंगे। हानि नहीं होती, क्यों नहीं हानि होती, क्योंकि जिसने वो विद्या वो परम प्रभु को प्राप्त कर लिया है उसे अब कुछ भी छू नहीं सकता, उसका कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। और इसीलिए हे शिव जी, हे गुरु, पहले गुरु कौन है, ये शिव जी है, हाँ सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, तो ये जो शिव जी है ये शिव जी प्रतीकात्मक है, हम सब गुरुजन जो है, गुरु की जो उपाधि जो है, गुरु का जो नाम जो स्टेटस है, वो गुरु ही शिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कौन से प्रतीक है, तो बोले परम गुरु के प्रतीक है, ये परंपरा के जो गुरुजन है उनके प्रतीक है, विष पान करने वाले हैं, हे शिव जी आपके चरण में आ गया हूँ और विष पीने का सामर्थ्य सिर्फ आप में ही है और किसी में भी नहीं है, इसीलिए कुछ पाने के लिए स्वार्थी स्तुति नहीं है, मैं प्रेम से स्तुति कर रहा हूँ, तो ये प्रेम कहाँ दिख रहा है, ये जो अंतिम लाइन है उसमें प्रेम दिख रहा है, कहते हैं विकारोपि श्लाघ्यः भुवन भय भंग व्यसनिनः, परमात्मा को व्यसनी बोलते हैं, आप किसको व्यसनी बोल सकते हैं, भाई तू तो व्यसनी है, आपके पास कोई आया और आपने बोला तू व्यसनी है तो किसको बोल सकते हैं, जिसके ऊपर प्रेम हो, जिसके ऊपर श्रद्धा हो कि मेरे उसको व्यसनी बोलने में भी उसे कोई भी कष्ट न हो, हाँ मेरे ऐसे वाक्य ऐसे कटु वाक्य भी वो प्रेम के जैसे पी जाएगा, उसे ही आप बोल सकते हैं ना कि तू व्यसनी है, तो यहाँ खूब प्रेम से बोलते हैं कि आप तो व्यसनी है शिव जी, तो शिव जी क्यों व्यसनी है, तो बोले कि जगत के जो अज्ञान रूपी भय है उसे मिटाने के लिए उसको मिटाने वाला व्यसन आपको चिपक गया है, हे शिव जी, हाँ जगत के अज्ञान को, जगत का जो नाश है, जगत को जो हानि हो रही है ये विष से, वो विष का बारंबार पान करने के लिए जाने के आपको व्यसन हो गया है, आपको आदत पड़ गई है, आपको स्वाद लग गया है, हाँ और इसीलिए आप ये जाने विष पान कर रहे हैं, ऐसे आपके जो व्यसन रूप विकार भी है वो भी आराधने योग्य है, वो भी सराहना करने के योग्य है, हाँ वो भी कैसे हो जाते हैं, वो भी ब्यूटी हो जाती है, ये आपका व्यसन है, यानी क्या कहा है कि ज्ञानी का जो व्यसन जो है आपको लगता है व्यसन है, ज्ञानी का व्यसन भी सराहनीय हो जाता है, कभी कोई ज्ञानी से न कहना आपको ये व्यसन है अच्छा नहीं है, आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, आपका ये स्वभाव अच्छा नहीं है, आपको इस प्रकार नहीं रहना चाहिए, वो सब कुछ रहना ये शिव जी का और शिव समान, आपके गुरु को आप शिव जी मान रहे हैं तो उनकी कोई भी आदतें, कोई भी स्वभाव, उनका कोई भी दिन शुरू होने से रात तक का उनका कोई भी विचार चहल पहल आपको अखरनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वो सराहनीय है ऐसा।

हमारे समस्त जन्मों के जो काम है, क्रोध है, वासनाएं है, और शिवजी विष का पान करते हैं, यानी मेरी वासना का भी पान कर जाएंगे मेरे गुरु? हाँ, कर जाएंगे, पर उसके लिए हमें कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये शिवजी जो है, जो विष पान करने वाले हैं, विष पान करने में सक्षम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मेरे अंतर ही वो शिव है, और वो शिव ही वो वासनाओं का पान करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे कैसा होना चाहिए? तो शिवजी कैसे हैं ऐसा समझ लीजिए। तो कहते हैं कि हे ईश्वर, देव और दानव मानव सहित पूरे जगत के ऊपर सिद्धि और विजय हासिल करने वाले कौन है? कौन, किसने सिद्धि हासिल की है? भाई कामदेव ने, काम ने, इच्छा ने, वासना ने, आसक्ति ने, लॉन्गिंग जो कहते हैं ना, डिजायर्स, उन्हें काम कहते हैं। और ये काम का भी जो देव है, वो कामदेव के जो बाण है, वाण है, कामदेव का जो कर्तृत्व है, जिस प्रकार काम प्रवेश करता है, वो सबको लोभ में लगा दे सकता है, सिवाय आपके। आपको कामदेव भी प्रभावित नहीं कर सका। हाँ, तो हमें कैसे होने चाहिए भाई? हमारे शिवजी कैसे हैं? मेरा स्वात्मा, मेरा अहम कैसा है? कोई भी प्रकार के प्रलोभन से, कोई भी प्रकार के विषय से जो लोभान्वित नहीं होता है, जो आकर्षित नहीं होता है, जो पागल नहीं बनता है, वो है शिव। और मुझे ऐसा होना है, ऐसे शिवजी के जो ये प्रशंसा के श्लोक है, इसे अर्थवाद कहते हैं, ये स्तुति है, उससे हमें ऐसे बनने की थोड़ी बनने के लिए हमें उत्सुकता प्रेरक ये सब वाक्य है, हमें ये बनने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। तो कहे, वो जो कामदेव जो है, वो आपको कुछ भी नहीं कर सके। और हुआ क्या कि जब वो काम आपको पीड़ित करने के लिए आया, बात ऐसी हुई थी, तारकासुर नामक एक राक्षस था, और तारकासुर ने शिवजी को ही आराध्य देव बना के ऐसी उपासना की कि वो अमर होने लगा। और असुर जब अमर हो जाता है, असुर के पास जब शक्ति आ जाती है, तब वो देव को, शुद्ध चित्त अंतकरण वाले व्यक्तियों को ज्यादा परेशान करने लगता है। तो ये जो देवता थे, स्वर्ग आदि देवता थे, मनुष्य लोक में भी, पृथ्वी लोक में भी जो ब्राह्मण आदि देवताएं थे, जो ये ब्राह्मण आदि देवता है, यानी जो ब्रह्म के वो जानने वाले हैं, वो सभी ही ब्राह्मण हैं। और वो जो सत्व बुद्धि मनुष्य थे, वो सब विष्णु वो भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि तारकासुर जो है, वो ज्यादा ही मुझे अभी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसके नाश का कारण अवश्य ढूंढना ही चाहिए। तो कहते हैं कि भाई शिवजी से तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से उसकी शक्ति बढ़ गई है, तो क्या करना है, उनके नाश का कारण क्या है? तो बोले कि शिवजी का जो पुत्र है, वो पुत्र से ही ये तारकासुर का नाश होना चाहिए। पर शिवजी के साथ पुत्र की बात ही नहीं की जाती है, बोलेगा कौन? काम की परछाई भी जिसे पहुंच नहीं सकती, उनके लिए पुत्र की विचार करना भी असंभव है। तो अभी क्या किया जाए? तो कहा कि कामदेव जो है, कामदेव को हम प्रार्थना करेंगे कि शिवजी को ये पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करें। और कामदेव ने अपनी विविध चेष्टाओं से शिवजी को प्रेरित करने की कोशिश की, पर तुरंत ही शिवजी को अब ऐसा लगा कि इसको मैं प्रेरित नहीं हो रहा हूं, एक बार दो बार तो इसे पता लग जाना चाहिए कि मैं इसमें उत्सुक नहीं हूं, फिर क्यों ये मुझे परेशान कर रहा है। तीसरा नेत्र खोला और वहीं वो भस्मीभूत हो गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार में भी काम यानी कोई भी प्रकार का यह जो इंद्रिय का विषय है, वो काम ही है, और वो प्रलोभन हमारे पास आते हैं। तो वो प्रलोभन जो है, क्यों आते हैं, क्यों अखरते हैं, क्यों मुश्किलें हैं, ऐसी बात नहीं है। आ गए तो उसका नाश करना, उसका ध्वंस करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। और ऐसे पुरुषार्थ करने वाले हे प्रभु, वो कामदेव स्मरण शेष हो गया, और अब मैं कह रहा हूं कि हकीकत में इंद्रियजीत जो पुरुष है, वो उसका कोई काल में

कोई भी भुवन में तिरस्कार नहीं हो सकता, जो इंद्रिय ज्योत हो गया यह निष्कामः अकामः आत्मकामः आप्तकामः नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापेति। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते क्योंकि निष्काम है। ये निष्कामत्व इतना हम क्यों कहते हैं आपको, अकामत्व लाना इतना क्यों कहते हैं, तो ही ये जो प्राण जो है वो उत्क्रमण नहीं करेंगे। उत्क्रमण करके कोई गर्भ में संक्रमण भी नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, जैसे वो जल का बिंदु संभाल के रखा तो क्या हुआ, समुद्र में डाला तो समुद्र बन गया। इसी प्रकार ये जो जीव जो है उसको शुद्ध रख के काम वासनादि से अशुद्धिया से परे रख के परब्रह्म के विचार में, परब्रह्म के स्मरण में, सत्संग में डाल दिया, उनकी बातों में डाल दिया, तो क्या होगा, वो ब्रह्म ही अंतिम बन जाता है। अब ऐसे जो परमात्मा थे, ऐसे शिव जी है, अब उनके तांडव नृत्य की बात करते हैं।

सत्य सृष्टि। सृष्टि का तांडव याने क्या, देखिए तांडव याने नृत्य तो कर्तृत्व आ गया, तो यहां क्या बताते हैं, प्रतीकात्मक, सब कुछ प्रतीकात्मक है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है परमात्मा आप ही है। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानी जीवंती। तांडव करते रहे तो करते ही रहे क्या, अभी तक तांडव करते हैं नहीं, हाँ वो उनकी एक आभा है, एक झलक है। जैसे ये सूर्य है, आप उदयपुर में जाएंगे ऑब्जर्वेटरी में तो आपको दिखाई देगा कि सूर्य जो है वो ज्वालाओं के रूप में है, अनंत ज्वालाएं हैं। और उसमें वो देखने के लिए क्यों जाते हैं, वो टेलीस्कोप से देखते हैं क्या, वो लोग हमें दिखाते हैं पर उसका इमेज दिखाते हैं, डायरेक्ट तो आप देख नहीं सकते, आंख को नुकसान होता है। तो हर थोड़ी सेकंड में सूर्य में से बहुत बड़ी ज्वाला निकलती है, वो दिखती है इतनी टेलीस्कोप में पर बहुत बड़ी ज्वालाएं ऐसे निकल के छूट के चली जाती है बाहर निकल, वो गैसेस है, वो निकल के ज्वालाएं छूट के चली जाती है। तो सूर्य में से ज्वाला का निकलना वो सूर्य का कर्म नहीं है, वो सहज तरीके से सूर्य है तो ज्वालाएं का निकलना हो जाता है। ऐसे ये शिवजी है तो तांडव हो जाता है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कार्य अपने आप सहजता से बताया है। देखिए ये नृत्य की बात ही यहाँ क्यों की, क्योंकि देखिए यहां से आपको वहां चलना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नृत्य के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है। वो नृत्य, नृत्य एक ऐसी चीज है जो भीतर से उठती है, अपने आप हो जाती है। वो किया गया नृत्य की बात नहीं है, नृत्य यानी हो जाता है, हाँ भक्ति हो जाती है, भजन गाते हैं हो जाता है, भजन गाने की चेष्टा नहीं करनी है, गाया जाता है अपने आप निकल जाए। ये क्या है, नृत्य यानि स्वयं स्फुरित है, उसके पहले विचार नहीं करना पड़ता है। हा? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, चैतन्य महाप्रभु भी दौड़ रहे थे। तो ये हो जाता है अपने आप। नृत्य की बात इसलिए की कि ये एक ही ऐसी अवस्था है जो स्वयं स्फुरित है, अपने आप हो जाती है, यानि परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आप करते नहीं है, आपसे हो जाती है। ये एक आपका भाव है, ये आपकी एक भंगिमा है, और वो नृत्य को हम क्या करते हैं, नृत्य को जाना जाता है, उसे जस्ट यू हैव टू एंजॉय दैट, नृत्य का आनंद लिया जाता है। जो नृत्य नहीं करता वो भी नृत्य का आनंद ले सकता है। ऐसे परमात्मा में से ये जो सृष्टि हो गई है उसमें आप जो अस्थि भाति प्रिय रूप अनुस्यूत है वो आनंद ही हमें प्राप्त करना है। ये भीतर का जो शिव है वो ही भीतर से नाचने लगता है, डोलने लगता है। तो आपका तांडव नृत्य कैसा है, हे भगवान संधि काल में जगत के भक्षण करने की इच्छा रख के जिस राक्षस ने अपने तांडव नृत्य से, वो राक्षस को अपने संधि काल जो है, देखिए कोई भी स्तोत्र दे, हमारे सुबह उठ के हम क्यों दीप बत्ती जलाते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, और शाम को भी संधि काल जो है तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र युक्ताम, ये शिव तांडव स्तोत्र में भी लिखा है, प्रदोष समय उसे कहते हैं, यश शंभु पूजति प्रदोष समय। तो प्रदोष समय संधि काल में जो है, इसमें कोई डरने वाली भी बात नहीं है, चिंता भी मत करना, पर सबका अपना अपना एक काल होता है ना, तो संधि काल में ये तमस गुण जो है वो ज्यादा थोड़ा रहता है। हाँ तो उसमें जो राक्षस भाव जो है, दानव जो है, वो थोड़े ज्यादा शक्तिवान शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे आपकी सोलर पैनल है, हाँ अपने टेरेस के ऊपर लगा दी तो वो शक्तिवान कब हो जाएगी, एकदम ज्यादा सूर्य के प्रकाश में, और रात को क्या होगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ऐसे ये जो जीव भाव जो है, हाँ ये जीव भाव के ऊपर पूरा अज्ञान का लेप हो गया तो उसके ऊपर जब ये प्रभाव पड़ती है ब्रह्म की, तो वो क्या होता है, वो दानव के रूप में कार्यान्वित होते हैं। ये जीव भाव है उसके ऊपर ये ज्ञान आ गया, अगर आपके पास आत्मज्ञान है, ये शिव का नाम एक भी बार, परमात्मा का नाम एक भी बार उच्चारण मुख से कर लिया, तो प्रदोष समय आपको नुकसान नहीं करेगा। यानी अभी उसकी चिंता छोड़ के जो हमें
समझना है वो समझ लीजिए। तो यहाँ कहते हैं कि प्रदोष काल में हे परमात्मा, ये जगत को, आपके भक्तों को परेशान करने वाले जो राक्षस है, वो राक्षस को आपके तांडव की एक ही थाप हो गई ना, तो पूरा जगत, आपने वो राक्षस को डराने के लिए तांडव शुरू किया, पर ये जो आपकी एक पैर भी के भी जो हलन चलन जो क्रिया हुई, उससे तीनों धरती भी इतनी डर गई, धरती माँ भी डर गए, और तीनों भुवन, तीनों जो ये ब्रह्मांड जो है, ये 14 लोग, ये सब समस्त ब्रह्मांड जो है वो जाने की डर गया, सहमा गया कि पूरे ब्रह्मांड का आपके पादाघातात, मही पादाघातात व्रजति सहसा संशय पदम, ऐसे संशय हो गया कि मानो ये सबका नाश होने वाला है, यानी आपका जो नृत्य है वो जगत की रक्षा के लिए है। हमने परमात्मा, हमने गुरु चरण की अगर उसमें शरणागति स्वीकार कर ली, तो अपनी रक्षा जो है वो गुरु ही करते हैं, वो शिव ही करते हैं, वो गुरु की समक्ष, गुरु और शिव एक ही है, ऐसे गुरुजन हमारी रक्षा करते ही है, फिर तांडव हमें करने की जरूर नहीं है। वो गुरुजन जो है, ये तांडव यानी कैसे तांडव करते हैं, अपनी आंखों से देख लिया, वाणी से कुछ शब्द बोल दिया और हमारी रक्षा हो जाती है। ऐसे अभी पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ये विश्व वाले संसार में मुझे अभी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने आपका शरण ले लिया है, और आपके एक तांडव की थाप पूरे ब्रह्मांड को अगर डुला सकती है, भयान्वित कर सकती है, तो मेरा ये जो पाप, मेरे मुझे जो परेशान करने आ रहे हैं, जो कोई भी दानव, दानव यानी ये विचार रूपी दानव, विचार आ जाते हैं, तामसिक विचार यानी प्रमाद रूपी, ये प्रमाद ही दानव है। आत्म साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ न करना, प्रमाद करना, यही दानव है, और ये दानव को भगाने वाले आप है, वही तांडव है। आपके पैर के आघात से पृथ्वी अचानक दब गई, ऐसे संदेह में आ गई, और आकाश में ऐसे ऐसे घूम रहे आपके जो हाथ है, वो हाथ से आकाश भी विकंपित होने लगा कि अब मेरा भी नाश निश्चित है। नक्षत्र का समूह जो है वो जाने की टूट पड़ा ऐसा लगता है। आपकी जटा जो है, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र क्षे करे रति प्रतिक्षण, एक क्षण के लिए ये परमात्मा के अंदर रति हो गई ना, तो काम बन जाएगा। ये जटा आपकी कैसी है, कटाह के समान है, बहुत बड़ी कथरोट होती है ना, उसके समान ये जटा है, उसके अंदर से घुमड़ घुमड़ के गंगा जी आ रही है, और उनका इतना प्रवाह है, वो प्रवाह भी सहन करने योग्य, अभी भी आप जाए तो गंगा जी का प्रवाह वही है, क्योंकि वो जटा में से आ रही है, और उसमें नाद कौन सा है, आपकी जटा जब फिरती है पूरे ब्रह्मांड में, तो धगत धगत धगत ऐसे आवाज ऊपर से आ रही है, हे प्रभुता, हे परमेश्वर। ये प्रभुता जो है वो प्रतिकूल ही है, यानी परमात्मा और गुरुजनों से कुछ भी होता है, उनके तरफ से जो कुछ भी आता है, लगता है कि टूट जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो भी प्रतिकूल है आपके। हे गुरु, गुरु के पास इतनी शरणागति से जाना कि आप बर्बाद भी कर देना तो भी मेरे लिए वो अच्छा है, वो प्रतिकूल है, बस इतना ही समझ लेंगे तो हमारा जीवन जिया हुआ सार्थक हो जाएगा। अभी एक मैं श्लोक लूंगी, उसका भाषांतर, और फिर मैं प्रवचन समाप्त करूंगी।

ಸ್ವಾಹ. ಜಲಧಿ ವಲಯಂ ತೇನ ಕೃತಮಿತ್ ಅನೇನೇವೋ ನೇಯಂ ಧೃತಮಹಿಮದಿವ್ಯಂ ತವ ವಪುಃ. ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಬತಾ ರಹೆ ಹೈ ये जो शिवजी के ऊपर जो गंगा जी है, हमें लगती है कि गंगा जी का प्रवाह बड़ा है, पर शिवजी के ऊपर मानो एक पानी का एक बिंदु है ना, ऐसे पूरे गंगा जी है. इतना विराट उनका स्वरूप है, आकाश में फैले हुए जो वो गंगा जी का प्रवाह गटा में फिर रहा है, तो बुदबुदे फैन भी होगी ना, फैन और बुदबुद जो होते हैं वो पूरी आकाश की जितने तारा गण है, पूरी आकाश गंगा है, वो कांति, वो आकाश गंगा की कांति को हरण करने वाली आपके जटा के भीतर बैठे हुए गंगा जी का प्रवाह जो है, पूरे आकाश गंगा की जो प्रभा है उसका भी वो हरण कर रहे हैं. यानी सूर्य के पास एक दीपक है, ऐसे ये गंगा जी का प्रवाह जो है ये उतना उत्कट और प्रकाशमय है, क्योंकि आप प्रकाश पुंज है, आपका प्रकाश वो गंगा जी में से निकल रहा है. वो जल का प्रवाह है जो आपके मस्तक के ऊपर है, वो इतना छोटा दिख रहा है. ये जल प्रवाह समुद्र रूप, यानी कि देखिए ये परमात्मा का प्रवाह कैसा है, समुद्र के ऊपर, समुद्र रूप पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो समुद्र है वो जाने के कंदोरा हो आपके लिए. परमात्मा यानी पूरी विराट पृथ्वी, और वो पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसे कंदोरा बांध देते हैं, वो एक प्रकार का एक पहनने की जो सुवर्ण का होता है, चेन जैसा होता है, ये जो कंदोरा जाने के डाल लिया, ऐसे ये प्रवाह में से जो गंगा निकली, ये जो जल की उत्पत्ति जो हुई, ये पूरे समुद्र रूप जैसे कि आपने एक पहन लिया हो कंदोरा, ऐसे ये लग रहा है. यानी कि आप परमात्मा को, आप परमात्मा इतने व्यापक है तो भी आपके पास व्यापक से व्यापक चीज भी जो है वो कम और छोटी ही लगती है. इतने बड़े दिव्य देह के महिमा को तव वपुहु आप धारण किए हुए हैं, उसका अनुमान भी हे परमात्मा नहीं कर सकता. आपका जितना अनुमान करूं, पक्षी आकाश का अनुमान कितना लगा सकता है, उड़ता है तो भी आकाश का अनुमान नहीं लगा सकता, तो हम धरा पे बैठे हुए आकाश का अनुमान नहीं लगा सकते. ऐसे अनंत महिमा वाले हे परमात्मा आपकी मैं स्तुति करता हूँ, आपको रिझा रहा हूँ. याद रखना आज के प्रवचन में एक ही बात याद रखना कि जो शिव निर्माल्य जिस जो समर्पित है, हाँ, उसका हाथ पकड़ के आप तर जाना, उसके लिए कुछ भी काया वाचा मनसा कुछ भी नहीं बोलना. आपको नहीं ठीक लगे तो मुंह फिरा के चले जाना अच्छा है, पर कभी भी ऐसा उल्लंघन नहीं करना. ये स्तुति मुझे और आपको रचनी पड़ी तो क्या होगा, है इतने शब्द अपने पास, है इतना प्रेम शिव के लिए, और अगर जवाब ना में आए तो क्या रास्ता है वो आपको हमने बता दिया है. इसी प्रकार गुरुजन और शिवजी की कृपा हमारे ऊपर बने रहे, ऐसी ही प्रार्थना के साथ और विराम मैं शांति पाठ करूंगी. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஓர் யோகிக் அர்த்த யதி சோம் கா லியா ஜாய் தோ சோம் கோ க்யா கா கயா? உமா சஹேதம் இதி சோம். க்யா கஹா? உமா சஹேதம் இதி சோம. तो बनता तो सोमा, लेकिन हिरसु कर देते ग्रामर क्या नियम है, तो सोम रह जाता. तो सोम शब्द किसका वाचक है? भगवान शिव का भी वाचक है, चंद्रमा का वाचक भी है, रस विशेष का वाचक भी है, विष्णु का भी वाचक संकेत करते हैं. और वही किसका वाचक है? भगवान शिव का भी वाचक, माने परमात्मा का, शक्ति विशिष्ट का. ये नाम तो प्रसंग के अनुसार दे दिए गए, लेकिन वह शक्ति विशिष्ट का वाचक है, अर्थात जो व्यापक शक्ति. तो और श्रुति क्या सृष्टि की प्रक्रिया में संकेत करती है? तो कहने लगे मायाम तू प्रकृतिम विद्धि. क्या कहती है? मायाम तू प्रकृतिम विद्धि और मायनम तू महेश्वरम. माया क्या है? क्या प्रकृति को ही माया कहते, और जो प्रकृति वाला है उसे क्या कहते हो? माया वाला है उसे क्या कहते? कहा महान ईश्वर. महेश्वर का मतलब महान ईश्वर, केवल शिवई मात्र से मतलब नहीं, महान ईश्वर, महान ईशन करने वाला, महान शासन करने वाला. माने उरुक्रम कह दो, वहां वहां महान शासन करने वाला, महान व्यवस्था देने वाला. और कैसे करता? तो फिर आगे उसका संकेत कर दिया कि जब वो प्रकृति से समन्वित होता है तो क्या है? सत्व रज और तम प्रकृति के धर्मों को लेकर के ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि की सृष्टि करता है. है? लोहित शुक्लाम कृष्णाम वहवी प्रजा सृजमान, और फिर उससे नाना प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति होती. ये भी वहां संकेत किया. तो श्रुति का भी वही तात्पर्य वहां पर भी मिलता है. तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि और तुलसीदास ने बड़ी सरल भाषा में लिख दिया, उसी सोम को बतलाते क्या कहा? अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा सम्व अर्धंग निवास. अज है, अनादि है, ऐसी वो शक्ति है, और कहां रहती है? आश्रय किसका लेती है? तो कहने लगे उसी परमात्मा का. और माया भी कहां रहती? माया भी आश्रय उसी ब्रह्म शब्द में दे देते हैं दार्शनिक, उसी शक्ति का आश्रय जो है माया लेती है. और विषय भी किसी किसको करती है? का उसी को करती है. सब शब्द कर दिया. तो इसलिए यहां संकेत ऋषि कर रहा है. जब इस प्रकार से अंतःकरण शुद्ध होते हुए क्रम से आगे बढ़ता है, तब ऋषि ने संकेत किया कि ऐसी जो व्यापक शक्ति है, ऐसी वह व्यापक शक्ति क्या करे? तो कहने लगे वह जिसका महान क्रम है वह ही मेरे लिए सम करे, माने मेरे लिए सुख की पूर्ति, मेरी न्यूनता की पूर्ति करे, मुझे पूर्णत्व प्रदान करे. ये जो है प्रार्थना ऋषि कर रहा है. और यही भगवान श्री कृष्ण ने तो विलक्षण कार्य ही किया, शायद ऐसा कोई कर भी नहीं सकता. सारी श्रुतियों के सिद्धांत को निचोड़ करके और एक छोटे से गीता में रख दिया, और उन्होंने इसी बात को कहा. क्या कहा? अन्नाद भवंति पर्जन्य, है ना? पर्जन्य शब्द का भी अर्थ क्या? पर शब्द है, आगे जन्य शब्द है, है ना? तो पर्जन्य का मतलब सीधा तो हम वृष्टि अर्थ ले लेते हैं, लेकिन पर्जन्य शब्द का अर्थ है जो पूर्णता प्रदान करने वाला. क्या करने वाला है? जीवन देने वाला, पूर्णता प्रदान करने वाला. ये भी पर उपसर्ग है, आगे जन्य शब्द है. तो परजन्य अर्थात जो हमारे अंदर पूर्णता प्रदान करे, उसी का नाम भी परजन्य शब्द है. इसलिए सारी औषधियों वनस्पतियों को पूर्ण करने वाला, जीवन देने वाला कौन है? कहा वही जल है. और वो जल क्या है? इसलिए कहीं कहीं श्रुति में कह दिया क्या? एको सलिलो दृष्टा. वो क्या है? उसे उपमित किया तो क्या कहा? को जल के समान एक है, सलिल के समान एक, संकेत कर दिया. तो इस प्रकार से यहां पर यह बतला रहे हैं. भगवान ने भी कहा कि यदि उसे प्राप्त करना चाहते हो, मुझे मानव जीवन की सार्थकता प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हो, तो तृतीय अध्याय कर्म विषय का अध्याय है, कर्मयोग का लेकर के भी, और इतनी सुंदर चर्चा भगवान ने कर दी। और क्या कहा? कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। और कहा अन्न कहां से होता? तो यज्ञ शब्द की कह दी। यज्ञ कहां से होता? तो कर्म कह दिया। कर्म कहां से होता? तो कहा ब्रह्मबोध भवम विद्धि, ब्रह्म से होता। ब्रह्म कहां है? तो कहा अक्षर। और अक्षर कहां है? तो कहा यज्ञ प्रतिष्ठितम। एक चक्र का भगवान ने वहां पर निरूपण कर दिया और यज्ञ रूप से निरूपण किया। और क्या कह दिया? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। लौकिक जित तक हमारी अभिस्तार और उसके अनुसार प्रयत्न होगा तब तक हम बंधन से छूट सकते नहीं, तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन यज्ञार्थ कर्म जब होगा तो कहने लगे उसका फल अन्यत्र। और फिर फलितार्थ क्या दे दिया? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायु रिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स। किसका जन्म व्यर्थ है? ध्यान तुम, शास्त्र वो चीज हमारे लिए मानव के लिए कहते हैं। शास्त्र है ही शासन करने वाला, हमको अनुशिष्ट बनाने वाला। तो माने वह उसका जीवन ही व्यर्थ है। किसका? सब कुछ तो संसार में प्राप्त कर लिया लेकिन क्या नहीं, यज्ञ जीवन में नहीं आया। और ये जब जो जीवन नहीं आया उस तो कहने लगे ये कैसे आएगा? तो कहा जो परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा ने जो एक चक्र बनाया उस चक्र के अनुसार ही आप भी अनुवर्तन करो। और ये अनुवर्तन यदि करोगे तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। और यदि इसका अनुवर्तन नहीं करते हो तो जीवन सार्थक नहीं। तब तो क्या है? अघायु इंद्रिया राम, इंद्रिया में को लेकर के ही आप जीवन को समझने वाले हो। तब तक तो जो है आपकी व्यर्थ में आयु गमा रहे हो, तब आपकी आयु की अर्थात आपकी मानवता की सार्थकता नहीं। ये संकेत भगवान ने कर दिया और उसको सरलता से समझाने के लिए कह दिया है माने जो देवता लोग हमारे लिए प्रदान करते हैं तो हम क्या करें? कहा उन देवताओं के प्रति भावना बना। देवान देवान भावयता लेन ते देवा भावयंत वा परस्पर भावयंता श्रेय परम। ये संकेत किया। क्यों? पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता है, सूर्यो देवता बोलते, पृथ्वी को भी देवता का। पृथ्वी क्या करती है? विचार करो, पृथ्वी हमें देती है। क्या देती? आश्रय भी देती, भोजन भी देती। तो सब कुछ देने वाली कौन है? पृथ्वी। जो हमें सब कुछ देने वाली है और हम उसे क्या देते? तो हमारी कृतज्ञता तो कम से कम होनी चाहिए, आभार तो व्यक्त होना चाहिए, है ना? तो पृथ्वी हमें सब कुछ दे रही है तो पृथ्वी के पृथ्वी हमारी कर्तव्यता है। और बड़ी विलक्षण बात है, हमारे दुर्गुणों को, हमारे दोषों को ग्रहण करने वाली कौन है? पृथ्वी। हम जितनी गंदगी कीचड़ आदि पृथ्वी में डाल देते, गंदा जल गंदा पदार्थ, लेकिन पृथ्वी क्या करती? सबको शोध करके, ध्यान दो, सबको फिल्टर कर देती है और पुनः पवित्र कर देती है। ये विशेषता किसमें है? पृथ्वी के अंतर्गत, जिसे हम जड़ कहते हैं। लेकिन वो पृथ्वी सबका शोधन करके और फिर हमें पवित्र रूप में प्रदान कर देती। तो इस प्रकार से जब पृथ्वी इतना सुंदर कार्य कर देती है कि सारी गंदगी को स्वीकार कर लेती है, हमारे दोषों को, हमारे दुर्गुणों को, हमारे दुखों को ग्रहण करके और उन्हें शुद्ध करके हमें प्रदान कर दे। इसलिए ही विशिष्ट देवताओं के लिए यहां कहा गया सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमः, क्योंकि इन देवताओं के अंतर्गत विशेष एक एक गुण लेकर के जो है सामर्थ्य है और अंत में जो है सर्वशक्तिमान जो है उसके प्रति प्रार्थना की गई कि वो हमारे लिए क्या करे? शंकर होती माने शमन करे, अर्थात वो बल हमारे में दे। वो बल हमारे में जब आएगा तो हम जो है प्रयत्न करने में समर्थ होंगे। और बलवी तो इससे पहले बृहस्पति करके ज्ञान कह दिया, ज्ञान हो और ज्ञान में आरूढ़ होने की सामर्थ्य हो, अपने संकल्प में दृढ़ हो। और जब ये दृढ़ता आती है तभी जाकर के हम उसकी प्राप्ति कर पाते हैं और ये नहीं आती है तो वो हमें प्राप्त भी नहीं। इसलिए उस चाहे आप सहना वतु ले लें और चाहे यहां जो अंत में कहेंगे हैं, कहा करो, कहा उस वक्ता की रक्षा करो और मेरी रक्षा करो। क्यों? वक्ता क्या करेगा? कहने लगे वो चीज हमें बतलाएगा, वो सिखाएगा, उसका जो है संस्कार हमारे में देगा। इसलिए श्रुति भी कहती है आचार्याधीव विद्या प्रतिष्ठिता। विद्या प्रतिष्ठित कब होती है? कहने लगी आचार्य के द्वारा। अब आचार्य का द्वारा का मतलब क्या है? केवल शब्द और अर्थ को लेकर के नहीं, आचार्य शब्द का तात्पर्य क्या है तो वहां संकेत किया आचिनोति शास्त्राणि इति आचार्य। जिसने शास्त्र को अच्छी तरह से चयन कर लिया है, चुन लिया है, आत्मसात कर लिया, और आत्मसात करके वह जब हमें शास्त्र दे तो कैसा करा दे? हमें भी आत्मसात करा दे। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी होता ना, पक्षी, पक्षी क्या करता? किसान खेत काट लेता, और खेत काटने पर जब खेत पक जाता है तो उसकी फसल में काटते समय कुछ न कुछ जो है उस अन्न के कण उसमें गिर जाते, और जब गिर जाते हैं तो मिट्टी और कचड़े में पत्तों में मिल जाते, तो उन्हें किसान उठाता नहीं क्योंकि बहुत समय लगेगा, इतना समय बर्बाद नहीं करना। तो पक्षी जाकर के क्या करते? उस कचड़े में से उस दाने को चुन लेते और चुन के स्वयं भी आत्मसात करते, और क्या करते? उसको लाकर के अपने बच्चे को देते, क्योंकि उसके प्रति हित की कामना है। ऐसे ही जहां पर श्रोता वक्ता में भी ये स्थिति होती, इसलिए तुलसीदास ने लिखा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूंज। वो आचार्य क्या? जिस आचार्य ने उन शास्त्र के अंतर्गत कर्म उपासना और नाना प्रकार के व्यवहारिक धर्म आदि सभी चर्चाएं शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होती, लेकिन उसमें जो सिद्धांत है, उसमें जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य को उस शास्त्र में से जिसने चयन कर लिया है और उसमें निष्ठा, आत्मसात का मतलब है तद निष्ठा वाला, और ऐसी निष्ठा वाला हो गया है तो उसकी जब रक्षा होगी तो वो जो है जैसे पक्षी देता है वैसे ही वह वक्ता जो है श्रोता को भी देगा, तो श्रोता की भी रक्षा हो जाए। ये संकेत किया गया, तो आगे संकेत करेंगे इसका। इसलिए ही वहां वक्ता और श्रोता की रक्षा के लिए श्रुति में बार बार संकेत भी किया। तो यहां पर जो ये संकेत कर दिया गया कि वह मने शन्नो विष्णु रुरुक क्रम। अब इसका तात्पर्य हमारी समझ में आना चाहिए कि विष्णु शब्द कह करके व्यापक शक्ति का निर्देशन किया, और व्यापक शक्ति का निर्देशन करते हुए कहा कि उसकी महान व्यवस्था है, उस महान व्यवस्था में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो भी सर्दी गर्मी सृष्टि का होना न होना, लय करना आदि सब उसी के क्रम में है, और वो ये जब सब कर रहा है तो उसकी जब हम शरण लेंगे तो ये जो चक्र चल रहा है इस चक्र से हम निवृत हो जाए। संकेत इसी को सरल भाषा में क्या कह दिया? दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुर्त। क्योंकि प्रकृति को लेकर के तो सृष्टि हुई, चक्रीय कब बना? प्रकृति को लेकर। अब कहने लगे यह जो है कैसी माया है? कहा अन्यत्र नहीं, ये दैवी, देव से ही होने वाली है, देव के बगैर इस माया की कोई सत्ता नहीं। ठीक है, तो दैवी हेसा यह जो माया है वो कैसी है? कहा दैवी है, दैवी ऐसा है।